इच्छा हो तो आप खुशी महसूस कर सकते हैं। तो आज अपने मन की सुनिए और एक छोटी सी खुशी चुनिए और उसे पूरे दिल से जी लीजिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही है जिसे हम मुस्कुराकर जी लेते हैं।

FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की।

0: उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी दिल्ली से किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं, आइए आरंभ करते हैं आज की आराधना।

नमन इस देश को जिसने हमें अनेकता के साथ एकता से रहना सिखाया। हमारा जुड़ाव न सिर्फ ईश्वर से है बल्कि मानवीय मूल्यों से भी है। आइए अब सुनते हैं ओम व्यास को।

हमारा जीवन सार्थक हो, यही कामना हम अपने ईश से करते हैं। हमारे जीवन के प्रति लगाव बढ़े और आसपास की जो काली बदरिया है वो हमेशा छटती रहे और शुभ का सामना हमारे साथ हमेशा रहे, साथ रहे।

0: हमारे आसपास मनुष्यता का मर्म का वो घेरा है जो हमें हमेशा बचाए रखता है। लेकिन यदि हम फिर भी किसी और खोज में हैं तो वो उसी तरह है जैसे मानो पानी में मछली प्यासी महसूस करे।
1: कबीरदास कहते हैं कि ये तो हंसने की बात है ही कि पानी में रहते हुए मछली अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी को ढूंढे। अपने ऊपर सोचो, तुम ब्रह्म को ढूंढ रहे हो और रह रहे हो ब्रह्मांड में जो कि ब्रह्म द्वारा ही रचा हुआ है। ब्रह्मांड में रहते हुए ब्रह्म को ढूंढो, ये क्या हंसने की बात नहीं है? विचार करो कि ब्रह्म तुमसे और तुम ब्रह्म से क्या अलग हो सकते हो। ये तो वही बात हुई कि पानी में मीन प्यासी मुहे देखत आवे हंसी। पा

मनुष्यता, प्रेम, सद्भाव, इन सब का सम्मिश्रण ही हमारा आस्थिक होना है और ईश्वर के जुड़ाव का रास्ता बस इसी सद्भावना के

0: रास्ते हमसे है, ईश्वर से है। तो यही कामना आराधना संपन्न करने के साथ कि हमारी आस्था ईश्वर के प्रति के साथ तो हो ही, साथ ही साथ हम मानवीय मूल्यों के साथ उतने ही आस्थिक बने रहें। आपने सुना कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं, आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बात। आज जानकारी का विषय है धनिया के खेती। जानकारी का वाचन हमारे लिए किया है नंद कुमार यादव ने।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। किसान भाई हो, आज खेती की बात मा लेके पहुंचे हवन धनिया के उन्नत खेती के बारे में जानकारी। संगवारी हो, धनिया हर वार्षिक जड़ी बूटी वाला पौधा होते, जेला हमन रसोई मा मसाला के रूप में उपयोग करथन। धनिया हर ऐसे आए एकर बीजा, तना और पत्ता के उपयोग हमन पकवान ल सजाए बर और सेवाद ल बढ़ाए बर करथन। धनिया के पत्ता मा विटामिन सी के ज्यादा मात्रा पाए जाते और अब्बड़ कन एहर घरेलू नुस्खा मा घलौ काम आते। जेकर ले पेट के बीमारी होगे, मौसमी बुखार है, उल्टी है, खांसी है, चमड़ी के रोग रही है, ओला ठीक करे मा एहर उपयोग करे जाते। एकर खेती जौन है तेन हर राजस्थान मा मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़ इति बर बढ़िया होते। तो अवाओ कौन प्रकार के विधि लचेत करीन और हमू मन बढ़िया एकर उपज ल लिहीन। तो संगवारी हो, एकर बार 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आवश्यकता होते। माटी ल हमन देखिन तो कई प्रकार के माटी के किस्म होते, जेमा हमन पानी निकासी वाला व्यवस्था वाला दोमट माटी में लगाथन तो बनी रही थी। माटी के जौन पीएच मान है तेन हर 8 से 10 रहना चाहिए। संगवारी हो, धनिया के अब्बड़ कन किसम आते, जेला लगा के किसान भाई मन उपज क्षमता ल बढ़ा सकत है। एमा लोकल धनिया है पंजाब सुगंध, GC1, GC2, CO1, CO2, ए नाव के किसम हर बढ़िया होती। चेत रखे बर पढ़ी संगवारी हो, भुइया की तैयारी बर 2-3 पैत नांगर ले चाहे ट्रैक्टर ले हमन जोताई फंदाई के काम बूता ल कर लिहीन। ओकर बाद जौन ढेला पखरा हर बड़का बड़का है, तेला पाटा लगा के बरोबर रखे जाते। 40 कुंटल जौन सरहा गलह गोबर के खातु है, तेला आखिरी जोताई की घानी देहे बर लगते। धनिया के बुआई के जौन बेरा है संगवारी हो, तेन हर अभी के बेरा हर बढ़िया माने जाते। एकर बर चेत रखना है कि कतार ले कतार के जौन दूरिया होते तेन हर 30 सेंटीमीटर के, पौधा ले पौधा के फासला हर 15 सेंटीमीटर के रहना चाहिए और बीजा के जौन गहिला है तेन हर 30 सेंटीमीटर ले ज्यादा झन हुए। एला हमन पूरा विधि द्वारा घलौ लगा सकत हन। बीजा के मात्रा के बात करें तो 1 एकड़ के धनिया के बुआई करत हन तो 8 से 10 किलोग्राम बीजा प्रति एकड़ के दर ले उपयोग में लाए बर पड़ते। बुआई करे के पहले बीजा ला उपचारित कर लेथन तो ज्यादा जाम ही उपज हर ज्यादा होही। जेकर बर 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा बिराइड के उपयोग करत हन हमन प्रति किलोग्राम बीजा के दर ले तो बने होते। संगवारी हो, खातू माटी के घलौ चेत रखे बर पड़ते। सरहा गलहा गोबर के खातू के संग मा नाइट्रोजन 40 किलोग्राम ला प्रति एकड़ के दर ले 3 भाग मा बांट के उपयोग करे ले बढ़िया होते। खरपतवार के घलौ बात आते, जेमा हमन निंदाई गुड़ाई ला बढ़िया ले कर लिहीन। पहलैया निंदाई गुड़ाई जौन है तेला 4 हफ्ता के बाद और दूसरैया ला 5 से 6 हफ्ता के बाद बुआई के करना चाहिए। ऐसने चेत रखे बर पढ़ी जौन सिंचाई हित एकर तो माटी में नमी हर बढ़िया ले बने रहते। बुआई करे के बाद हमन तुरते कोह पहलैया सिंचाई ल करत हन तो बढ़िया रही। ओकर बाद 10 से 12 दिन के अंतराल में लगातार सिंचाई के काम बूता ल करते रहे। अभी के बेरा में हमन आवश्यकता अनुसार पौधा ल पानी देथन तो बढ़िया माने जाते। संगवारी हो, ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेना जरूरी रहते, जेकर ले उपज क्षमता हर और आमदनी हर ज्यादा मिलही। एकरे संग जय जोहार, राम राम।
0: धनिया की खेती।

इस विषय पर जानकारी अभी हमने सुनी कार्यक्रम खेती की बात में, वाचन स्वर नंद कुमार यादव का था। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज मुख्य स्वर वाणी जयराम का है और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहां से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत वन गांव और ठौर जहां ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

श्री रामचरितमानस गान अभी हमने सुना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर, और अब समय हुआ है आपको नव विहान कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी देने का। नव विहान में आज विषय है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक क्रांतिकारी स्वास्थ्य बीमा पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर को वित्तीय सुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। यह योजना 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करती है और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का अस्पताल में भर्ती कवरेज प्रदान करती है, जिससे देश भर में 7,000 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस इलाज सुनिश्चित होता है। इसके लाभ के संदर्भ में इस योजना के विषय की यह जानकारी है कि प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज द्वितीयक और तृतीयक अस्पतालों में भर्ती खर्चों को कवर करता है, पूर्व मौजूदा बीमारियों पर कोई सीमा नहीं, निशुल्क पूर्व और पश्चात अस्पताल सेवाएं भी है। पात्रता के संदर्भ में जो जानकारी है वो इस योजना के अंतर्गत ये है, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति गणना डेटाबेस के माध्यम से की जाती है, गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल वर्ग के परिवार पात्र हैं, भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक होने चाहिए, जिन परिवारों के पास पहले से व्यापक स्वास्थ्य कवरेज नहीं है वे भी, सरकार द्वारा निर्धारित आय एवं मासिक आर्थिक मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। इसमें यदि हमको यदि आवेदन करना है तो वो ये है, आधिकारिक वेबसाइट या विशेष पीएमजीवाई पोर्टल पर जाएं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टूल का उपयोग करके

यह है, आधिकारिक वेबसाइट या विशेष PMGY पोर्टल पर जाएं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टूल का उपयोग करके अपने पात्रता जांच लें। तीसरा चरण यह है कि सही व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण के साथ हम आवेदन भरें। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज उसमें अपलोड कर दें, आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ में स्वीकृत संख्या नोट करें। संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन और अनुमोदन की प्रतीक्षा की जाए। इसमें जो प्रपत्र हैं आवश्यक वो हैं आधार कार्ड या कोई मान्य सरकारी द्वारा ID, निवास प्रमाण पत्र जैसे कि वोटर ID, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, सामाजिक आर्थिक जाति गणना का प्रमाण पत्र, हालिया पासपोर्ट साइज का फोटो, केंद्र अथवा राज्य द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज यदि लागू हो रहे हो तो इन तमाम प्रपत्रों के साथ हम इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और अपने इस बीमा पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। निशुल्क स्वास्थ्य लाभ का हम फायदा ले सकते हैं।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए, आइए अब आपको कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी हम सुनेंगे आज दिन में 11 बजे। कार्यक्रम आपकी पसंद सुना जा सकेगा 10:30 पर और गूंजे स्वर गांव के। ये कार्यक्रम होगा 10:00। इसमें हम सुनेंगे ढोला मारू का किस्सा, कलाकार होंगी सूरजबाई खांडे और साथी। दीवार गीत की प्रस्तुति भी हम सुनेंगे, प्रसंग होगा नागेश्वर कन्या के विवाह की कथा और स्वर होगा राधेश्याम मनहर साथी का। यादों के झरोखे से ये कार्यक्रम 7:30 हम आपको सुनवाएंगे। आज शुक्रवार है, होगी गांधी चर्चा, समय होगा 7:20 और आज सुबह अपने नियमित समय यानी कि 7:05 से।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे आज शाम 7 बजे। ग्राम सभा के अंतर्गत बेरा के गोठ का विषय होगा किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण संबंधी सुविधा। साथ ही होगा स्वतंत्र भारत में आत्मनिर्भर किसान। फोन इन कार्यक्रम होगा इसी के अंतर्गत दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान से सेवा कैसे प्राप्त करें। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अजय अग्रवाल और संचालन करेंगे महंगू भैया। आज हम 8:15 पर एक विशेष रूपक सुनेंगे, लहरे तिरंग ध्वज अपना। आलेख वाचन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी, संगीत संयोजन मनीष दत्त जी का, गायक कलाकार होंगे काव्य भारती कला संगीत मंडल। 8:30 पर होगा कार्यक्रम रजनीगंधा और 10:00 संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। ईमेल करें, गीत सुनें, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 6:20 पर। युवा जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बात का विषय होगा महर्षि अरविंद और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान। साथ ही होगा क्रम स्वास्थ्य पत्रिका, ये कार्यक्रम होगा शाम 5:35 पर। और शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट हम सुनेंगे।

कार्यक्रमों की जानकारी अभी हमने आपको दी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम समाचारों के लिए आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ेंगे। पहले सुनेंगे संस्कृत में समाचार और उसके बाद 7 बजे हिंदी में समाचार। तो आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: राष्ट्रस्य एकताम् अखण्डताम् सामाजिक सौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः चतुर्वादनतः एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सुगमगमनागमनाय गृहीतः। नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे चतुर्दिनानि यावत् आयोजितायां राष्ट्रमण्डल प्रतिस्पर्धायाम् अत्युज्ज्वल प्रदर्शनेन सह भारतं 35 पदकानि स्वायत्तीकृतवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर

0: कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी दिल्ली से किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं, जब भी हमारी बात करने की बारी आती है, जब भी हम दो तरह की बातें किसी से कहने का मन करता है कि जो एक शुभ हो और एक अशुभ हो, तो हमारे ऑप्शन में सबसे पहले ये होता है कि पहले अशुभ बात कर ली जाए, फिर शुभ का आनंद लिया जाए। तो ठीक उसी तरह जब हम अभी स्वाधीनता का उत्सव मनाने जा रहे हैं, उसके पहले आज का दिन पूरा देश याद कर रहा है। जिसे भारत सरकार ने विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में माना है। जी हां, विभाजन का दर्द आज हम सभी महसूस कर सकते हैं।

आज का दिन विभाजन का दिन रहा है। विभिन्नता की समृद्ध परंपरा के साथ आज ही हमने धरती का एक टुकड़ा टुकड़ा नहीं बल्कि बहुत से अपनों को दूर होते देखा है। अंग्रेजों की वो तरकीब जिसे हम फूट डालो राज करो के नाम से जानते हैं, उसका आखिरी हथियार हम पर तब उपयोग किया गया जब हमारा स्वाधीन होने का समय आया। विभाजन का दर्द आज भी कुछ चेहरों पर देखा जा सकता है। चेहरे की लकीरों और झुर्रियों के बीच विभाजन की लकीरें साफ दिखाई पड़ती है। आंखों का पानी बता जाता है कि बहुत कुछ है कहने को।

विभाजन और उसके दर्द के से यही सीख है कि जो कुछ हमारे पास बचा है, इन बीते सालों में हमने बहुत कुछ भुलाकर फिर से जोड़ा है। इतने वर्षों में पीढ़ियां बीती है, तिनका तिनका फिर जोड़ा है, और उसे जोड़ने के लिए कितनी मेहनत लगी है। सद्भावना, प्रेम, दया, एकता, समग्रता के लिए समन्वय के साथ समावेशी होना हमारी स्वाधीनता की सीख रही है। इसके भीतर हम हमेशा सब कुछ बचाकर रखते रहे हैं, तो बस इसी विभिन्नता को, इसी सद्भावना को हमें हमेशा हमेशा बचाकर रखना है।

श्रोताओं, आज 14 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस के पहले का एक दिन। कल कार्यक्रमों की तैयारी, आयोजन, विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी कार्यक्रमों का उत्साह है। हवा में स्वतंत्रता के इस उत्सव की तरंगे हम महसूस कर सकते हैं। चेहरे पर अलग तरह का भाव हम सभी के एक दूसरे के चेहरे पर पढ़ सकते हैं और उसे दिल तक महसूस करते हैं। हमारे लिए दिन उत्सव है, लेकिन 1947 के 15 अगस्त के पहले का 14 अगस्त कैसा रहा होगा? स्वतंत्रता की वो पहली आहट कैसी रही होगी? हम अब स्वतंत्र होंगे, आजादी हमारी अपनी, खुलकर जी सकने की आहट के साथ, छोटे छोटे अंदेशों के साथ अपने देश की स्वतंत्र पहली सुबह का इंतजार। कठिन दौर से गुजरने के बाद हमें आजादी मिली, जिस बात का हम आज पूरी पूरी तरह से कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हमें कितनी कुर्बानियों के साथ मिली, अपनी आजादी के साथ, अपने अधिकार और देश समाज के प्रति हमारे कर्तव्य भी मिले। वाकई इस आखिरी रात की कल्पना के साथ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अधिकारों के साथ जो हमें कर्तव्य बोध मिला है वो हमेशा कायम रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ये तो अधिकार हैं, पर हर एक को शिक्षा, सबके स्वास्थ्य का ख्याल और सबको व्यापार करने की आजादी। हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। यही विविधता हमें और देशों से अलग बनाती है, अलग ही नहीं बेहतर साबित भी करती है। हमारी आस्था, हमारे पर्यावरण का जो हरित रिश्ता है वो जीने के कर्तव्य बोध से बंधा है। हम मानव कल्याण के प्रतीक हैं और यही प्रतीक हमारे आजादी का मूल है, हमारी स्वतंत्रता का जयघोष है। उसी उल्लास और एकता का प्रतीक है हमारा तिरंगा। हमारे शौर्य, शांति, सद्भावना का प्रतीक है हर घर तिरंगा। ये वही उत्सव है जो हमारी हर छत को, हर देहरी को, आजादी के आसमान को तीन रंगों से भर देता है। उसके तले हम महसूस करते हैं आपस का प्रेम और भाईचारा।

0: और कार्यक्रम आज सुबह में अब बारी है ट्रैफिक अपडेट की।
1: अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था, मैं हूँ उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के निर्देशानुसार जिले के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आज प्रातः 7:30 बजे स्वतंत्रता दौड़ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह स्वतंत्रता दौड़ नेहरू चौक से प्रारंभ होगी, जो देवकी नंदन चौक, सिंह चौक, सदर बाजार, गोल बाजार, कोतवाली चौक होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण पहुंचकर संपन्न होगी। स्वतंत्रता दिवस के उत्साह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। दौड़ के दौरान सुगम और सुरक्षित यातायात के आशय से आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं क्षणिक यातायात की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। दौड़ में शामिल सभी सदस्यों से अपील है, पूरी सड़क में फैल कर ना चलते हुए सड़क के एक किनारे चले। मित्रों, आज ही शाम 4 बजे नूतन चौक के पास सत्संग भवन के पास से युवाओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाले जाने की योजना है। तय कार्यक्रम के अनुसार यह तिरंगा यात्रा बाइक रैली शाम 4 बजे प्रारंभ होगी, जो सीपर चौक, इंदिरा सेतु, नेहरू चौक, राजीव गांधी चौक, इंदू चौक, अंबेडकर चौक, सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड, शिवटाकी चौक, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार, देवकी नंदन चौक, राम सेतु होते हुए पुनः सत्संग भवन पहुंचकर संपन्न होगी। बाइक रैली में चल रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है, एक बाइक में 3 सवारी न चले तथा सभी हेलमेट पहनकर शहर में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें और सड़क के एक भाग में चले। इसके साथ ही शहर सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों, प्रायः देखा गया है कार, बस आदि वाहन में यात्रा करते समय कुछ लापरवाह लोग केला, भुट्टा आदि खाकर चलते वाहन से सड़क में फेंक देते हैं। केले के छिलके से फिसलकर पैदल चल रहे व्यक्ति तो गिरते ही हैं, इससे दो पहिया वाहन चालक भी फिसलकर गिर सकते हैं। कल्पना कीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी सड़क में हवा से बातें करते भारी वाहनों

0: बीच यदि दो पहिया चालक गिरेगा तो हश्र क्या होगा। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, न ही ये गलती बच्चों को करने दें। उन्हें समझाएं, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: सड़क हमारा अधिकार है, सड़क पर चलने की हमारी आज़ादी है, लेकिन सड़क पर हमारे कर्तव्य भी हैं, उसे ध्यान रखें। इसी नोट के साथ नमस्ते।

आज सुबह ये कार्यक्रम अभी हमने प्रस्तुत किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, 5 जुलाई 1894 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रगण्य नेता श्री दादाभाई नौरोजी को एक पत्र में गांधी जी ने लिखा था और अंत में अपने बारे में कुछ शब्द कह मैं ये पत्र समाप्त करता हूं। मैं युवक हूं, अनुभवहीन हूं और इसलिए मुझसे गलतियां भी हो सकती हैं। मेरी योग्यता थोड़ी और उसके अनुपात में उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि अपनी योग्यता के मुकाबले बहुत भारी पड़ने वाले इस काम को हाथ में लेने में मेरा उद्देश्य भारतीयों के हितों को हानि पहुंचाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं है। असल बात यह है कि यहां इस तरह का काम करने वाला मैं ही अकेला व्यक्ति हूं। अपने को हीन समझने की भावना भी सापेक्ष होती है। भारतीय समुदाय को नेतृत्व के लिए अपनी ओर आशा से निहारते देखकर गांधी जी अपनी अयोग्यता और हीन भाव को भूल गए। दूसरी जगह जिस काम के वो शायद पास भी न फटकते, उसी को पूरा करने का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने उस समय इस काम को कर सकने वाले अकेले व्यक्ति थे। गांधी जी 1893 में एक वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तब वो ये भी सोच नहीं सकते थे कि उन्हें करीब 2 दशक का समय वहां बिताना पड़ेगा। प्राथमिक नागरिक अधिकारों के लिए भारतीय प्रवासियों का संघर्ष दीर्घ अवधि तक चलने वाला और प्रचंड रूप ग्रहण करने वाला था। नेटाल की राजनीति में गांधी जी के हस्तक्षेप का तात्कालिक कारण भारतीयों को मताधिकार से वंचित किया जाना था, लेकिन ये तो जाति भेद के रोग का एक लक्षण मात्र था जो उस अंधियारे महाद्वीप को सता रहा था। लॉर्ड मिलनर ने लिखा है कि प्रवासी एशियाई दक्षिण अफ्रीका में ऐसे अजनबी हैं जो यूरोपीय समुदाय की मर्जी के खिलाफ अपने को उस पर थोप रहे हैं, लेकिन सच कुछ और ही था। 1860 और उसके बाद के वर्षों में भारतीय प्रवासियों ने वहां के गोरे उपनिवेशियों के आग्रह और निमंत्रण पर ही दक्षिण अफ्रीका में जाना शुरू किया था। इन गोरे आदिवासियों के पास चाय, कॉफी और गन्ने के बागानों के लिए बड़े बड़े भूखंड थे जिन पर तब तक खेती नहीं हुई थी। इन पर काम करने के लिए मजदूरों की भारी कमी थी। दास प्रथा का अंत हो जाने से निग्रो लोगों को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। बागान के गोरे मालिकों के भारतीय एजेंटों ने भारत के कुछ सबसे गरीब और घनी आबादी वाले जिलों का दौरा किया और वहां के दुखी लोगों को सब्ज बाग दिखाए कि उन्हें नेटाल में जाकर अच्छा काम मिलेगा, मार्ग व्यय, खाना और मकान मुफ्त। पहले साल 10 शिलिंग माहवार वेतन और हर साल 1 शिलिंग की वृद्धि।

पांच साल काम करने का एग्रीमेंट या इकरारनामा, जिसे गिरमिट प्रथा कहते हैं और जिसके अंतर्गत मजदूर गिरमिटिया कहलाता है, और इकरार पूरा होने पर मुफ्त भारत लौट आने का अधिकार, या अगर चाहे तो वहीं बस जाने का विकल्प। हजारों गरीब और अनपढ़ भारतीय दूर देश नेटाल की ओर चल पड़े। यूरोपीय बागान मालिक और सौदागर इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि भारतीय मजदूर इकरारनामे में पांच साल खत्म होने के बाद स्वतंत्र नागरिक होकर कहीं बस जाए। इसीलिए यद्यपि नेटाल में बसने के अधिकार का उपयोग इकरारनामे की शर्तों के अनुकूल ही था, फिर भी इस अधिकार का उपयोग करने वाले मजदूर के परिवार के प्रत्येक सदस्य पर 3 पाउंड का कर लगा दिया गया। उन गरीब अभागे लोगों को, जिनका वेतन महीने में केवल 10 से 12 शिलिंग के बीच था, इस कर ने मानो अपंग कर दिया था। मजदूरों के बाद जो भारतीय व्यापारी नेटाल पहुंचे, उनकी अपनी कठिनाइयां थी। बिना लाइसेंस के कोई व्यापार कर ही नहीं सकता था। यूरोपियों को तो लाइसेंस बड़ी आसानी से मांगते ही मिल जाते थे, लेकिन भारतीयों को या तो मिलते ही न थे या बहुत कोशिश और खर्च के बाद। हर प्रवासी के लिए किसी एक यूरोपियन भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपनी इच्छा से आने वालों के लिए दक्षिण अफ्रीका के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन इकरारनामे के अंतर्गत लाए जाने वाले अर्ध गुलाम गिरमिटियों के लिए ऐसी कोई शर्त और रोक नहीं थी, फलतः उनका लाया जाना जारी रहा। भारतीयों की कानूनी स्थिति तो बुरी थी ही, लेकिन उन्हें रोज रोज गोरों के हाथों अपमान सहने पड़ते थे, ये और भी कष्टदायी थे। भारतीयों को लेख आमतौर पर गंदगी और दुष्टता से भरपूर, भात और गंदे कीड़े मकोड़े खाने वाले गाली गलौज के पात्र एशियाई के रूप में किया जाता था। उन्हें राजमार्गों पर चलने की मनाही थी। पहले और दूसरे दर्जे के यात्रा टिकट उन्हें नहीं दिए जाते थे। गोरे यात्री की आपत्ति करने पर उन्हें बिना कहे सुने रेलगाड़ी के डिब्बे से बाहर धकेल दिया जाता था। कभी कभी तो उन्हें रेलगाड़ी के फुटबोर्ड पर खड़े होकर सफर करना पड़ता था। यूरोपीय होटलों में वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने अनुभव किया कि सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के हितों की रक्षा करने वाला एक स्थायी संगठन तुरंत बनाया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1893 के अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने नए संगठन का नाम नेटाल इंडियन कांग्रेस रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान, कर्तव्य और कार्य प्रणाली की गांधी जी को कोई जानकारी नहीं थी। ये उनके लिए अच्छा ही हुआ। वो नेटाल इंडियन कांग्रेस को अपनी प्रतिभा से वहां के भारतीयों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक जीवंत संगठन बना सके, जो पूरे साल कार्यशील रहता और जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक चौकसी न होकर सदस्यों का सामाजिक और नैतिक उत्थान भी था। उस जमाने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बुद्धिजीवियों का मंच थी, जहां वे साल में केवल एक बार जमा होकर भाषण देते, याचिकाएं तैयार करते या विरोध प्रदर्शन भी करते। फिर साल भर तक उनका कहीं नाम भी सुनाई नहीं पड़ता था। उनके हितों के लिए ये संगठन बना था और उनका राजनैतिक अनुभव और ज्ञान नहीं के बराबर था। फिर भी उस संस्था पर किसी व्यक्ति विशेष की इजारेदारी नहीं थी। उसके अथक परिश्रमी सचिव गांधी हर कदम पर सभी का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। इससे काम में सार्वजनिक उत्साह और रुचि बराबर बनी रहे। सदस्य बनाने और चंदा जमा करने जैसे साधारण कार्य को भी उन्होंने महत्व दे रखा था। आधे मन से सहयोग देने वालों के साथ वो नैतिक दबाव का विनम्र परंतु साथ ही दृढ़ ढंग अपनाते थे। एक बार एक छोटे कस्बे के भारतीय व्यापारी के घर पर वो सारी रात भूखे बैठे रहे, क्योंकि व्यापारी नेटाल कांग्रेस का अपना चंदा नहीं बढ़ा रहा था। आखिर सवेरा होते होते उन्होंने उसे अपना चंदा 3 से बढ़ाकर 6 पाउंड तक कर देने को राजी कर ही दिया। राजनीतिक प्रशिक्षण के शुरू के सालों में गांधी जी ने एक स्वतंत्र राजनीतिक आचार संहिता बना ली। वो इस प्रचलित धारणा का विरोध करते थे कि राजनीति में अपने दल के लिए संघर्ष करना ही चाहिए, चाहे उसका पक्ष सही हो या गलत। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना उनके स्वभाव में था ही नहीं। अपने सहयोगियों को भी वो ऐसा करने से रोकते थे। नेटाल इंडियन कांग्रेस भारतीय अल्पसंख्यकों के राजनीतिक और

आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा का माध्यम ही नहीं, उनमें सुधार और एकता लाने का साधन भी थी। गलतियों और कमजोरियों के लिए वो अपने देशवासियों को भी माफ नहीं करते थे और उनकी कड़ी आलोचना करते थे। नेटाल के प्रवासी भारतीयों के वो न केवल प्रबलतम समर्थक थे, वरन उग्रतम आलोचक भी थे। गांधी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं उनका एक प्रिय भजन।

बापू के इस प्रिय भजन के साथ ही आज की गांधी चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

गांधी चर्चा अभी हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

जंगली फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत और शंकर जयकिशन का संगीत। श्रोताओं, आज शम्मी कपूर को नमन करने का दिन है। जी हाँ, उनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हें याद करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पर फिल्माए गीत आपको सुना सकें। अगला गीत हम फिल्म ब्रह्मचारी से आपको सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत और शंकर जयकिशन का संगीत है।

शमी कपूर साहब की अदायगी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, इन दोनों का मेल कुछ इस तरह से था कि पर्दों पर सबका मनोरंजन किया, सबके दिलों तक पहुँचे।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी का गीत था। फिल्म थी राजकुमार। अगली फिल्म तुमसे अच्छा कौन है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत का गीत शंकर जयकिशन का संगीत और यादें वही शम्मी कपूर साहब की।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए। आपकी रक्षा में पूरी।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
2: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: आपकी रक्षा में पूरी।
3: इस अंतराल के बाद फिर से लौटते हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से। यादों के उन झरोके से हम याद कर रहे हैं आज शम्मी कपूर को, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।

0: स्मृति शेष है शम्मी कपूर साहब की, वाकई हम आपको भुला ना पाएंगे। ये था कार्यक्रम यादों के झरोखे से। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं, 8 बजे हैं, जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
5: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।

0: भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर

0: बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निम्बुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी GST से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज

0: in under construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand, and Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. For details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: समाचार हमने आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 बजे हैं। कार्यक्रम इनसे मिलिए के लिए आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए में छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री IS उबोवेजा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है दीपक हटवार।

0: इनसे मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र या राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभाग कार्यरत होते हैं और उन विभागों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ उन विभागों को देखने वाले जन प्रतिनिधियों की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र में हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, इस बात की सदैव अपेक्षा की जाती है कि कोई भी कार्य भ्रष्टाचार से मुक्त हो और किसी भी कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता न हो, पूर्ण रूप से पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन समय समय पर कई बार इस तरह की शिकायतें आने पर उसके निवारण के लिए जो संस्था हमारे राज्य में कार्य कर रही है, उसे हम सभी छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग के क्या कार्य हैं और इन कार्यों का निष्पादन किस तरह से होता है, इस संबंध में विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा साहब को। आप छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोकायुक्त हैं। उबोवेजा साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, आपने मुझे आमंत्रित किया।
0: उबोवेजा साहब, जिस तरह से नाम से ही ये पता चलता है कि लोकायुक्त की जो जवाबदारी है वो लोक के लिए है, सबके लिए है, देश और प्रदेश के हर नागरिक के लिए है। तो इस संस्था के बारे में विस्तार से जानकारी के पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है।
1: मेरा जन्म महासमुंद जिले के ग्राम सरायपाली में 1 जून 1954 को हुआ, और मेरा मैट्रिकुलेशन एजुकेशन जो है वो सरायपाली के शिक्षण संस्थानों में ही हुआ, और 1971 से लेके 1977 तक मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है दुर्गा कॉलेज और SKT दापके महाविद्यालय का स्टूडेंट रहा, जहाँ से मैंने MA LLB की शिक्षा प्राप्त की। और इसके बाद मैं वकालत के प्रोफेशन में जिला न्यायालय रायपुर में मैं कार्यरत रहा, और न्यायिक सेवा में मेरा प्रवेश हुआ, और मैं उसके बाद से लेके 2016 तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, और मैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पद से सेवानिवृत्त हुआ था।
0: 2016 में आपकी सेवानिवृत्ति के साथ बहुत सारी उपलब्धियां भी आपके साथ जुड़ी रही हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: मैं इस दौरान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेट्रोलियम केमिकल डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर भोपाल में पदस्थ रहा। इसके साथ ही मुझे छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे आयोगों का मुझे चेयरमैन बनाया, जिसमें मैंने उनको जांच करके मैंने अपनी रिपोर्टें दी। एक नक्सलाइट मूवमेंट से रिलेटेड जो है एक

0: टीएमटीसी आयोग जो है वो बना था, टीएमटीडी, जिसका मैं चेयरमैन रहा। इसके अलावा पामगढ़ तहसील से अंतर्गत मुलमुला कांड हुआ था, जिसके भी जांच कमीशन का मैं चेयरमैन रहा। इसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो एमपी के ज़माने में ग्वालियर में होता था और छत्तीसगढ़ में रायपुर में उसका ऑफिस रहा, उसका भी मैं अपना चेयरपर्सन रहा। इसके साथ ही मैं पुलिस अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी का चेयरमैन 2016 से लेकर 2021 तक रहा और वर्ष 2024 से मैं छत्तीसगढ़ लोक आयोग का प्रमुख लोकायुक्त के पद पर पदासीन हूँ और वर्तमान में भी उसमें कार्य कर रहा हूँ।
1: बबेजा साहब, आपकी जीवन यात्रा से जुड़ी इन उपलब्धियों के साथ वर्तमान में भी आप पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और लोक आयोग जैसी संस्था के प्रमुख के रूप में प्रदेश के उन तमाम लोगों की उम्मीदों के केंद्र बिंदु हैं। और ये उम्मीद इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इस संस्था का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया कि हमारे प्रदेश का कोई भी विभाग अपना कार्य पारदर्शिता के साथ कर सके। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोक आयोग संस्था क्या है?
0: आम लोगों के दिल दिमाग में यह धारणा रहती है कि शासन के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा जो अवैध कार्य किए जाते हैं, भ्रष्टाचार के कार्य किए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं और भाई भतीजावाद और कई तरह के अनमित्ता वाले कार्य करते हैं, उनकी शिकायत अगर शासन को ही की जाती है तो शासन अच्छे से उसकी जांच नहीं करती है। और उनकी ये धारणा भी रहती है कि अपना शिकायत को या तो दबा दिया जाता है या शासन जो है अपने कर्मचारी अधिकारियों को बचाने की कोशिश करती है और शिकायत पे सही जांच नहीं करती है। इस धारणा को दूर करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका के किसी स्वतंत्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उससे ऊपर के पद के पदाधिकारी के लिए एक लोक आयोग की पदस्थापना जो है वो काफ़ी समय से हो रही है और हुई भी है। मध्य प्रदेश में 1982 से ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के पद और विभाग रहा है। और चूंकि सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य एक नवीन राज्य के रूप में आया तो इस राज्य में भी वर्ष 2002 में प्रमुख लोकायुक्त का पद सृजित किया गया और लोक आयोग अधिनियम 2002 यहाँ बनाया गया और 2 नवंबर 2002 से इसे लागू भी किया गया, जिसका काम है कि राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले जो शासकीय सेवक हैं जिनमें किसी भी विभाग का कोई भी प्यून हो, जो सबसे नीचे लेवल एक का कर्मचारी होता है और लेवल 18 या 17 जो भी कह लीजिए, वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो स्टेट के सबसे उच्च पद के पदाधिकारी होते हैं, इन सब के खिलाफ किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की, पद के दुरुपयोग की, भ्रष्ट आचरण की, भाई भतीजावाद की अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो वो लोक आयोग में कर सकता है और लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ इसकी जांच करते हैं और इसके परिणाम से अपना माननीय राज्यपाल को सूचित करते हैं और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की प्रस्तावना करते हैं।
1: उबेजा साहब, लोक आयोग में महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं?
0: लोक आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार एक प्रमुख लोकायुक्त का पद यहाँ पे सृजित है। इसके अलावा एक लोकायुक्त का पद सृजित है जिसमें रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की पदस्थापना यहाँ पे की जा सकती है। इसके साथ ही आईएएस श्रेणी का एक सचिव का पद इस लोक आयोग में है। साथ ही दो जिला न्यायाधीश स्तर के पद हैं जिसमें एक विधिक सलाहकार का पद है, दूसरा उप सचिव का पद है। इसके अलावा बाकी सब मिनिस्ट्रियल स्टाफ यहाँ पे रहते हैं।
1: सर, इसमें कौन कौन से पदाधिकारी जो हैं

0: उनके कार्य कौन कौन से होते हैं?
1: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को लोक आयोग में किसी भी लोक सेवक और शासकीय सेवक के खिलाफ शिकायत करनी हो तो उसके लिए दो प्रोफार्मा बने हुए हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, लोक सेवक से आशय ये है कि इस राज्य से संबंधित कोई भी एमएलए और इस राज्य से संबंधित कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य और इस राज्य से संबंधित किसी भी हायर श्रेणी का अधिकारी, जो आईएएस भी हो, चाहे वो आईएफएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, इन और इसके अलावा ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हैं, उनकी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ जो आयोग हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जो जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जितने स्टेट के नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, जनपद पंचायतें हैं, इन सभी के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी करप्शन का की शिकायत करनी हो या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए बिना ये इनके सदस्य जो हैं वो उनको बाईपास करके किसी को अनुचित लाभ पहुंचाते हैं या खुद अनुचित लाभ लेते हैं और किसी को अनुचित नुकसान पहुंचाते हैं या अपने पद का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करते हैं, तो इन सब के खिलाफ जो है वो नियत दो प्रोफार्मा जो है उसके भर के वो शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उनको ₹250 जो है वो न्याय शुल्क जो है वो उसकी टिकट जो है वो लगानी पड़ती है। ये चूंकि अधिनियम में इसका प्रावधान है और इसका पालन उनका करना जरूरी है। इसके साथ ही जो घटना जिसकी शिकायत वो करना चाहते हैं वो अपना शिकायत करने से 5 वर्ष के अंदर उसे शिकायत करनी होती है, उसका लिमिटेशन जो है 5 ईयर्स है।
0: उबेजा साहब, आमतौर पर यह होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी शासकीय प्रक्रिया से उसे नुकसान पहुंचता है या प्रताड़ित होता है या उसका काम नहीं होता है, तो वो सबसे पहले तो उसे थाना ही नजर आता है कि वो थाने में जाए और शिकायत दर्ज करे। तो थाने में जाकर शिकायत दर्ज करना और लोक आयोग के कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करना, इन दोनों में किस किस तरह का अंतर हो सकता है?
1: लोक आयोग में वो जो है डाक के मार्फत से शिकायत प्रेषित कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी वो पेश कर सकता है। इसके अलावा इसके सारे डिटेल्स जो हैं वो नेट पे डाले हुए हैं, ऑनलाइन जो है वो इसकी शिकायत जो है लोक आयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
0: अच्छा, इसमें शिकायत करने के बाद में उस शिकायत का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता शिकायतकर्ता को कैसे चलता है?
1: जो शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पे जो जांच या कार्रवाई होती है उसके परिणाम से उस शिकायतकर्ता को एक प्रति जो है फैसले की भेजी जाती है। इसके साथ ही जो औपचारी कर्मचारी अधिकारी है जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उसको भी आदेश की प्रति दी जाती है, और इसके साथ ही शासन को भी अपना जो कार्रवाई जो है प्रस्तावित की जाती है उसकी प्रति भेजी जाती है।
0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोक आयुक्त न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा साहब को। उबोवेजा साहब, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं इस बातचीत के माध्यम से। आगे भी हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। अब मन कर रहा है कि इस बातचीत को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर मोड़ें और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
1: हाँ, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आनंद फिल्म का जिंदगी कैसी है पहेली, ये गाना मुझे अच्छा लगता
0: तो
1: है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का, मन्ना डे जी का गाया हुआ ये गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: इनसे मिले कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोकायुक्त श्री इंदर सिंह ओबुवेजा साहब। ओबुवेजा साहब, इस गीत से पहले आपने लोक आयोग के कार्य पद्धति के बारे में हमें बताया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोक आयोग की जो जांच प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद इसमें दंडित करने का जो प्रावधान है, ये किस तरह का होता है?
2: लोक आयोग को सिर्फ यहाँ पे शिकायतों की जांच का अधिकार दिया गया है और दंड क्या दिया जाना है ये हम उस जो जांच के परिणाम के आधार पे प्रस्तावित करते हैं, और ये हम राज्य शासन को प्रेषित करते हैं कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ जो है वो 3 माह के अंदर संपूर्ण कार्रवाई करके हमें सूचित करे। अगर वो 3 माह के अंदर हमें संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो हम फिर उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तावना जो है माननीय राज्यपाल महोदय की ओर प्रेषित करते हैं और उसके बाद फिर परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं।
1: ओबुवेजा साहब, जब कोई व्यक्ति लोक आयोग में अपनी कोई शिकायत लेकर आता है, तब जिसके खिलाफ वो शिकायत कर रहा है वो कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी भी हो सकता है और बहुत सामान्य सा एक शासकीय कर्मचारी भी हो सकता है, जैसा कि आपने बताया कि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है।
2: जी।
1: एक वृत्त से लेकर प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव तक की शिकायत इसमें की जा सकती है।
2: वास्तव में पूरे स्टेट के सारे कर्मचारी अधिकारी जो हैं और सारे जनसेवक, जो चाहे वो पंच हो किसी पंचायत का, चाहे वो किसी नगर निगम का मेयर हो, चाहे वो नगर निगम का पार्षद हो, ये सारे लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट ग्रांट से जो इंस्टीट्यूशंस चलते हैं उसके भी पदाधिकारी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, ताकि अपना जो है गवर्नमेंट मनी का मिसयूज कोई

0: ना कर सके।
1: शिकायतकर्ता जब लोक आयोग में शिकायत के लिए आना चाहता है तो
0: जी
1: उसके पास किस-किस तरह के दस्तावेज होने चाहिए?
0: ये जरूरी है कि शिकायतकर्ता जिन तथ्यों के बारे में शिकायत करने आया है उससे संबंधित उसको अपनी शिकायत के तथ्यों की पुष्टि के लिए दस्तावेजी प्रमाण जो है उसे पेश करने होते हैं, जिसे वो आरटीआई एक्ट के तहत जो है वो अपना संबंधित विभागों से प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा वो शिकायत के तथ्यों की पुष्टि के लिए एक नोटराइज एफिडेविट जो है वो भी लोक आयोग को पेश कर सकता है। और ये अपेक्षा शिकायतकर्ता से नहीं की जाती है कि वो 100% जो है शिकायत की पुष्टि के लिए प्रमाण पेश करे, जैसे कि आम अदालतों में होता है। हमारे यहाँ अगर हमको थोड़ा सब्सटेंस लगता है, सार लगता है उसमें, और हमको तथ्य लगते हैं कि अपना ये शिकायत की बातें जो हैं प्राथमिक रूप से कहीं पे पुष्टि

0: दोषी के लिए प्रमाण पेश करे, जैसे कि आम अदालतों में होता है। हमारे यहाँ अगर हमको थोड़ा सब्सटेंस लगता है, सार लगता है उसमें, और हमको तथ्य लगते हैं कि अपना ये शिकायत की बातें जो हैं प्राथमिक रूप से कहीं पे पुष्टिकारक लग रही हैं, तो हम ये स्टेट गवर्नमेंट के बड़े से बड़े उच्चाधिकारी को निर्देश दे के उनसे हम जांच करा के हम रिपोर्ट लेते हैं, और उसके बाद जो है अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित करने के लिए हम राज्य शासन को प्रस्तावित कर देते हैं।
1: उबैया साहब, आपके अनुभव के आधार पर अभी तक बहुत सारी शिकायतें आपके पास आई होंगी,
0: जी
1: उनके निराकरण के लिए आपके मार्गदर्शन में बहुत से प्रयास भी किए गए
0: जी
1: होंगे, बहुत से परिणाम भी सामने आए होंगे।
0: जी
1: अगर हम लोक आयोग को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाने की बात करें, तो अभी फिलहाल इसमें आपको क्या कोई कमी नज़र आती है, या आपका अपना कोई ऐसा सुझाव है, या आप कुछ
0: जी
1: सोचते हैं कि इसे और भी बेहतर किया जाए?
0: हाँ, मैं आपकी जानकारी के ला दूं कि हमने जो शिकायतें हमें मिलती रही हैं उसके आधार पे हमने छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सबसे सर्वोच्च अधिकारी गण जो हैं आईएएस लेवल के अधिकारी, उनके खिलाफ भी हमने बहुत सारे आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई करने हेतु, उनको दंडित किए जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजे हुए हैं। और बाकी कुछ राज्यों में ये व्यवस्था भी है कि अपना जो ईओडब्ल्यू, जिसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कहते हैं, और एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो राज्य शासन अपने नियंत्रण में रखी हुई है कई राज्यों में। तो हमने राज्य शासन को लगातार इस बात के लिए प्रस्तावना भेजी है कि वो ईओडब्ल्यू और एसीबी जो है वो ये छत्तीसगढ़ लोक आयोग के नियंत्रण में दे, और हमारे निर्देशन में वो अधिकारी जो और वो विभाग वो काम करेगा, तो इससे जन आस्था जो है और ज़्यादा भी लोगों में बढ़ेगी।
1: उबैया साहब, जब लोक आयोग के पास में कोई शिकायत आती है और उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लोक आयोग जब कार्रवाई करता है, तो उस कार्रवाई में जब ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ, फला अधिकारी के खिलाफ जो शिकायत की गई वो सही पाई गई है और उस अधिकारी को दंडित किया जाए, दंडित करने की अनुशंसा आपकी तरफ से होने के बावजूद भी अगर वैसा नहीं होता है, तब उस शिकायतकर्ता के लिए कौन सी राह बाकी रहती है?
0: छत्तीसगढ़ लोक आयोग जो है शिकायत की जब जांच करता है और जहां यह शिकायत के तथ्यों को सिद्ध पाता है, तो उस स्थिति में जो अपचारी अधिकारी कर्मचारी है उसको एक मौका अपनी सफाई का देता है। वो उसके बाद फिर अंतिम निर्णय जो है वो लोक आयोग लेता है, और राज्य शासन को उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए सिफारिश करता है, और राज्य शासन अगर 3 माह के अंदर उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेता है, तो फिर राज्य शासन के द्वारा जो है ठोस कार्रवाई न करने के संबंध में लोक आयोग माननीय गवर्नर साहब को जो है वो रिपोर्ट भेजता है, और राज्य शासन से आगे एक्शन लेने के लिए प्रार्थना करता है।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये बातचीत हमारे बहुत सारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, जो श्रोता स्थानीय हैं या बाहर के हैं। तो ऐसे श्रोताओं तक इस प्रसारण के पहुंचने के बाद उनके भीतर भी एक जागरूकता की शुरुआत हो सकती है, और वे भी अगर किसी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ या अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहें लोक आयोग में, तो हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आपके श्रोता लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ लगता है कि आपके क्षेत्र के एमएलए और आपके क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आपके क्षेत्र के अधिकारीगण कर्मचारीगण और आपके जो छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रीगण हैं, ये किसी भी तरह का अवैधानिक कार्य करते हैं या किसी भी तरह का कोई भ्रष्ट आचरण जो है अपनाते हैं, तो आप बिल्कुल अपना चुप मत रहिए और अपनी शिकायत बेखौफ होकर छत्तीसगढ़ लोक आयोग में कीजिए। आप अगर चाहेंगे तो आपका नाम जो है गोपनीय भी रखा जाएगा, और आप जो है इस संस्था पे पूर्ण आस्था रख सकते हैं, क्योंकि ये एक पूर्णतः स्वतंत्र संस्था है

0: जिस पर किसी भी शासन का कोई नियंत्रण नहीं है और पूर्णतः आप इस पे विश्वास करके कार्रवाई की अपेक्षा कर सकते हैं।
1: आदरणीय उपभोजा साहब, आज आपने छत्तीसगढ़ राज्य लोक आयोग के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और हमारे प्रदेश के प्रत्येक विभाग का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ बेहतर से बेहतर ढंग से चले, इसी कामना के संग हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में लोगों को न्याय मिले, सच्चाई की जीत हो और ऐसा कोई भी कार्य जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता है तो उसके खिलाफ लोग आवाज़ अवश्य उठाएं और लोक आयोग का सहयोग प्राप्त करें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: इसके साथ ही इनसे मिलिए के इस अंक से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री I.S. उबोवेजा से ली गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता थे दीपक हटवार। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम हमने आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9 बजने को हैं, चंद पलों में जुड़ेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बर्फी फिल्म का गाना आइए सुनते हैं, पेपोन और सुनिधि चौहान की आवाजों में, नीलेश मिश्रा के बोल और संगीत है प्रीतम का।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
3: आज अभिनेता जॉनी लीवर का जन्मदिन है, उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। मिमिक्री करने में उन्हें महारत हासिल है और इसी की वजह से उन्हें स्टेज शो करने का मौका मिला और स्टेज शो की वजह से उनकी फिल्मों में एंट्री हुई और ज्यादातर फिल्मों में हमने देखा कि हास्य अभिनेता के रोल में वो देखे गए हैं। तो जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और चित्रलोक कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ फिल्म का गाना उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल है, संगीत है अजय अतुल का।

ब्रेक के बाद लीजिए, अब सुनिए यमला पगला दीवाना 2। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, कुमार के बोल हैं शरीफ दोषी का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुद्ध देसी रोमांस, इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की आवाजों में, जयदीप साहनी के बोल, सचिन जिगर का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर हाजिर हूं आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में आज मस्ती ही मस्ती।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे,

0: नहीं देखा।
1: शम्मी कपूर इस मामले में दुनिया से निराले हैं। उन्होंने अभिनय के तमाम सीमित दायरे में बंद रहने से इनकार किया और अपने अभिनय का ऐसा जलवा बिखेरा कि नौजवानों की तूफानी भावनाओं को आंधी की सी गति मिली। अपने समय के विद्रोही सितारे कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने अभिनय, नृत्य, मनोरंजन, पूर्ण भाव प्रदर्शन की सीमाओं को बेफिक्री दी थी। अंग संचालन में कैद अदाओं और अंदाजों के दोहराव से मुक्ति दिलाई थी।

0: दोस्तों, शम्मी कपूर का जन्म 1931 में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और शोमैन राज कपूर के भाई थे। बड़े भाई पहले ही फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे और शम्मी कपूर के लिए अपनी खास जगह बनाना बड़ी चुनौती थी।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान, तमन्ना किधर जा रही हो।

पिता पृथ्वीराज कपूर के नाटक पठान में शम्मी को अभिनय करते हुए जब महेश कौल ने देखा तो उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति के लिए नायक चुन लिया और ये किरदार बड़ा ही गंभीर था। जीवन ज्योति, शमा परवाना, लैला मजनू, मिर्जा साहिबा जैसे कॉस्ट्यूम ड्रामे वाली फिल्में करने के बाद फिल्मिस्तान की फिल्म तुमसा नहीं देखा के जरिए शम्मी कपूर नए लटके छटके के साथ चुलबुले और निरारे अंदाज में आए। इस फिल्म के निर्देशक थे नासिर हुसैन।

तुमसा ने देखा हिट हुई और उनके अभिनय की एक निराली स्टाइल चल पड़ी, जो सन 1961 में फिल्म जंगली तक आते आते खूब परवान चढ़ी। फिल्म जंगली से शम्मी कपूर को मिली नई पहचान, शोहरत, पैसा और लोगों का प्यार। इस फिल्म ने शम्मी के फिल्मी करियर में सफलता का नया रंग भर दिया।

1961 से सन 1964 तक शम्मी कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इस दौरान आई फिल्मों पर आइए एक नजर डालते हैं। फिल्म प्रोफेसर, फिल्म कश्मीर की कली, जिसने एक बार फिर शम्मी की सफलता के बल्ले बल्ले

यूँ कहना मुनासिब होगा कि जमाना शम्मी की धुन पर उन्हीं की ताल पर झूम रहा था, नाच रहा था और गा रहा था। फिल्म जानवर इसी दौर की फिल्मों में होती है शुमार। राजकुमार

0: वो संगीतकार थी उषा खन्ना। फिल्म थी दिल दे के देखो। दिल दे के देखो युवा पीढ़ी की एक लटके झटके वाली फिल्म थी। युवा निर्देशक नासिर हुसैन अपने नए नए फॉर्मूलों को आजमाकर मजबूत बना रहे थे। शम्मी कपूर अपनी नई स्टाइल को फिल्मी दुनिया की खास स्टाइल बना रहे थे।
1: यार चुलबुला है, हसीन दिलरुबा है,

सन 1965 शम्मी कपूर के लिए गम का पहाड़ लेकर आया। उनकी जीवन संगिनी गीता दुनिया से अलविदा कह गईं। उस गमजदा दिन शम्मी इस गाने की शूटिंग कर रहे थे।

उनकी निजी जिंदगी में खलिश और व्यावसायिक जिंदगी में कामयाबी का परचम लहरा रहा था।

0: विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार के लिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विभाजन विभीषिका दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 1,96,00,000 रुपए कीमत का विदेशी सोना बरामद किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। अब समाचार विस्तार से। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के मुक्ताकाशी मंच में दोपहर

0: 12 बजे आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। प्रख्यात फिल्मकार और अभिनेता चंद्रप्रकाश द्विवेदी समारोह के मुख्य वक्ता होंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने राज्यभर की सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में तिरंगा फहराने की अपील की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने कहा कि 15 अगस्त का पर्व देशभक्ति, आपसी एकता, भाईचारे और संविधान के प्रति सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीआरपीएफ की 111वीं वाहिनी ने कल नया रायपुर, अभनपुर, राजिम, फिंगेश्वर और जामगांव सहित कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली। कमांडेंट डॉक्टर विनोद कुमार टंडन के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत नया रायपुर स्थित 111वीं वाहिनी मुख्यालय से हुई। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा थामे लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा सरगुजा जिले के करजी गांव में आज से नशा मुक्ति पर केंद्रित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अंबिकापुर के विधायक प्रबोध मिंज करेंगे। प्रदर्शनी में नशीले पदार्थों की पहचान, उनके शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति के कारण, शुरुआती संकेत तथा मिथक बनाम तथ्य के माध्यम से नशे से जुड़ी भ्रांतियों की जानकारी दी जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम ब्रांच रायपुर और नागपुर की टीम ने हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 1,96,00,000 रुपए कीमत का विदेशी सोना बरामद किया है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच नागपुर को मिली सूचना के आधार पर रायपुर और नागपुर की टीम ने डीआरआई के साथ मिलकर ट्रेन में जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने भंडारा और नागपुर के बीच ट्रेन के B12 कोच में 2 संदिग्ध यात्रियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 1,242,000 विदेशी सोना बरामद हुआ। इसमें 7 सोने के बिस्किट और 1 सोने की छड़ शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को प्रदेश में सभी देशी विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानों के साथ ही मध्य भंडारण, भंडारगार और FL3 पर्यटन बार को बंद रखने शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र जगदलपुर द्वारा आज निर्यात जागरूकता कैंप और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट समिट का आयोजन किया जाएगा। और दुर्ग जिले में ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर रजिस्ट्रेशन कर उन्हें QR कोड जारी किया जाएगा। पंजीयन की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभाजन विभिषिका दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 1,96,00,000 रुपए कीमत का विदेशी सोना बरामद किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हमने आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के इस कार्यक्रम में पहले हम सुनेंगे सूरजबाई खांडे और साथियों को, और किस्सा है ढोला मारू का।

0: ढोला मारू का किस्सा, कलाकार सूरजबाई खांडे और साथी। गूंजे स्वर गांव के में हम अभी सुन रहे थे। आइए अगली कड़ी में अब सुनते हैं देवार गीत। प्रसंग है नागेश्वर कन्या के विवाह की कथा। स्वर है राधेश्याम मनहर और साथियों के।
1: देसी बखाना हो रातनपुर संगी ही आई।

कुदत बड़े होवेगा हर रतनपुर राजकुमार, यह रतनपुर राजकुमार सुघर नामे है सीताराम नायक, करे गैल शिकार यह करे गैल शिकार, यह करत शैल शिकार, यद करत शैल शिकार, यह करत शैल।

बाजा रूंजी और गाजा बाजा के संग मा ऐसे बारात सजा थे कि देखे वर्णन नहीं किए जा सके। जेकर जैसन सवारी बना थे वो वही मजा थे और बारात के उत्साह

अतक ऐसे सामान ले जाते हैं कि हफ्ता महीना 15 दिन भी अगर लग जाए तो कोनो बात कमी झन पड़े। घोड़ा लदावत है घोड़े चना या वो

मल्हार राज के तरिया मा किसिम किसिम के तंबू तना हे और बाजा के नंगारा के आवाज हा बड़ दुरिया दुरिया जात सुनाते। चर चर कोस के आदमी मगन होके नाचत हैं, घूमत हैं, गावत बजावत मल्हार के तला।

नंगेसर कैना अपन महतारी और सातो भौजीला कहते कि मोर दादा बाबा मन तरिया कोड़ा हैं, मैं है देखे नहीं आऊं। दाई हो भौजी हो मोर डोकरी दाई तह मोला जाए के मौका तो दे दे, कैसन कैसन तरिया कोड़ा है, कैसन बाग बगीचा कर वहाँ है मोर दाई दादा मोर काका बाबा मोर चाचा बाबा मोर पुरखा हा, मैं देखे नहीं हो दाई, कभी मोला जाए के मौका तो दे दे दाई, तोर पहिया लागत हूँ दाई, मोला कभी जाए के मौका।

0: अपना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: गुंजेश्वर गांव के में आज हमने सुना ढोला मारू का किस्सा। कलाकार थी सूरजबाई खांडे और साथी। देवार गीत में प्रसंग था नागेश्वर कन्या के विवाह की कथा और कलाकार थे राधेश्याम मनहर और साथी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

कार्यक्रम आपकी पसंद का पहला गीत आप तक पहुंचा फिल्म दिल दे के देखो से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरू का लिखा हुआ गीत और उषा खन्ना का संगीत। और हम तक जो फरमाइशें पहुंची हैं वो ये हैं, बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम, सूरज पारेकर, नारायण यदु और राधेश्याम, लेखराम, सियाराम, अश्विनी पांडे, ये हैं भाटापारा से। बुड़गहन से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकुमार, चंद्रकला, शशिकांता और

दसी बार से हैं शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, कुमारी आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार कंवर। शांतिनगर से इनके साथ हैं संतोषी कोरम कुमारी, पूर्वा, आरती, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार। दतरंगी से है प्रेमा साहू, लक्ष्मी मीना, रीना, विश्राम, पार्वती साहू हैं। नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसवणी, पुष्पेंद्र मणि वर्मा हैं भाटापारा से। महारानी चौक से हैं, महारानी चौक भाटापारा से परसराम, परस शर्मा, श्रीमती निधि शर्मा, रुचि शर्मा, नित्या शर्मा हैं। कामता यादव, सोनमत यादव, मुन्नू कुमारी, निकिता यादव, सिद्ध बाबा भाटापारा से हैं। भाटापारा से ही श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, रावण भाटा भाटापारा से, बाबला यादव, ऋषि राम यादव, कमलेश्वरी यादव। अकलतरा बालौद से हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। आइए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं। फिल्म चाइना टाउन से आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़, मजरू का गीत और रवि का संगीत।

चाइना टाउन के इस गीत के लिए जो फरमाइशें हम तक पहुंची वो ये है। मिली जुली फरमाइशें हम आज शामिल कर रहे हैं शम्मी कपूर के गीतों के साथ। मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया मोती गार्डन भाटापारा से हैं। भाटापारा का ही एक और खत है राम कुमार राउत, अमेरिका राउत, गणेश कार्तिक, युवराज का है। और महावीर बाट भाटापारा का है श्रीमती अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी, लक्ष्मी, प्रेरणा, डिम्पी यादव का है, दुलारी यादव, प्रियंका, प्रीति, उमरेश्वरी, सुनती इनके साथ हैं हथबंध निविधा से। और पट पर भाटापारा से मोतीलाल भटपरिया, संतोष कुमार यादव, मडुल यादव हैं। सुरेंद्र कुमार, प्रीति कुमार, मोक्ष कुमार यादव सूरजपुरा से हैं। और श्रृंगी ऋषि महानदी से हैं, सिहावा पर्वत अंचल का ये खत है। मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन का। एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमिन यादव, गिरीश करण, युवान ढाबेश यादव हैं सुभाष वार्ड भाटापारा से। अगला गीत आपको सुनवाया उसके पहले छोटा सा विराम और फिर लौटते हैं कार्यक्रम में।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म प्रोफेसर के गीत के साथ अगली फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। मोहम्मद रफी की आवाज के साथ, शैलेंद्र के गीत के साथ और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ, और इन खतों के साथ ये हैं। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ, शौर्य और शुभम हैं। बाटा सपारा से दान सिंह रावत, दानु, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ और नीरज। बेलगहना शक्ति बेहरा से हैं श्याम, शंकर मिस्त्री, बाबा विजय पायलट, रागिनी गीता देवी, कैलाश चंद्रावती, कुसुम कासी और राधा पडवार। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, ये हैं गणेश धाम मरसुली से हैं। इंद्रानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल्ला सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम रजा, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, लूत्रा खमरिया से हमें ये खत भेजते हैं और आपकी पसंद पर हम ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।

कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी मंजिल से। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें, मजरू का गीत, आर डी बर्मन का संगीत है।

0: तीसरी मंजिल का ये गीत था और फरमाइश करने वालों में हैं ग्राम रसीड़ा, अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु डोली, पूर्वेश साहू हैं। सुशील देवांगन है जोना बिलासपुर से और डगेसर राम साहू, नूतन साहू, गौरव साहू, घनश्याम साहू है रोहासील से। हटौत बाजार लोहात से है, लाहौत से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल, दिनेश वर्मा, करणा वर्मा हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद का एक हिस्सा होता है ट्रैफिक अपडेट का। तो अब वो बारी है जब हम आपको दे दें ट्रैफिक अपडेट। तो हमारी गुजारिश है कि सड़क पर एक दूसरे का ध्यान रखें और सुने ये ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, प्रस्तुत है ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। मैं हूं उमाशंकर पांडे, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के निर्देशानुसार जिले के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आज प्रातः 7:30 बजे स्वतंत्रता दौड़ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह स्वतंत्रता दौड़ नेहरू चौक से प्रारंभ होगी, जो देवकी नंदन चौक, सिंह चौक, सदर बाजार, गोल बाजार, कोतवाली चौक होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण पहुंचकर संपन्न होगी। स्वतंत्रता दिवस के उत्साह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। दौड़ के दौरान सुगम और सुरक्षित यातायात के आशय से आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं क्षणिक यातायात की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। दौड़ में शामिल सभी सदस्यों से अपील है पूरी सड़क में फैल कर ना चलते हुए सड़क के एक किनारे चले। मित्रों, आज ही शाम 4 बजे नूतन चौक के पास सत्संग भवन के पास से युवाओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाले जाने की योजना है। तय कार्यक्रम के अनुसार यह तिरंगा यात्रा बाइक रैली शाम 4 बजे प्रारंभ होगी, जो सीपर चौक, इंदिरा सेतु, नेहरू चौक, राजीव गांधी चौक, इंदू चौक, अंबेडकर चौक, सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड, शिवटाकी चौक, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार, देवकी नंदन चौक, राम सेतु होते हुए पुनः सत्संग भवन पहुंचकर संपन्न होगी। बाइक रैली में चल रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है एक बाइक में 3 सवारी न चले तथा सभी हेलमेट पहनकर शहर में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें और सड़क के एक भाग में चलें। इसके साथ ही शहर सहित संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों, प्रायः देखा गया है कार, बस आदि वाहन में यात्रा करते समय कुछ लापरवाह लोग केला, भुट्टा आदि खाकर चलते वाहन से सड़क में फेंक देते हैं। केले के छिलके से फिसलकर पैदल चल रहे व्यक्ति तो गिरते ही हैं, इससे दो पहिया वाहन चालक भी फिसलकर गिर सकते हैं। कल्पना कीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी सड़क में हवा से बातें करते भारी वाहनों के बीच यदि दो पहिया चालक गिरेगा तो हश्र क्या होगा। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, न ही ये गलती बच्चों को करने दें। उन्हें समझाएं, हमेशा यात्रा नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।

श्रोताओं, यह था आज का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपके पत्रों के माध्यम से सजा आज का ये कार्यक्रम।

आपको याद दिला दें, आज शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

कार्यक्रम युवा जगत में शाम 6:35 पर आप सुनेंगे आज की बात, महर्षि अरविंद और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान। साथ ही कार्यक्रम युवा जगत में होगी स्वास्थ्य पत्रिका। हमारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुनिएगा आज शाम 5:00।

ग्राम सभा के फोन इन कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अजय अग्रवाल और संचालन करेंगे महंगू भैया। और बातचीत होगी कृत्रिम गर्भाधान के विषय में। लहरे तिरंग ध्वज अपना, ये विशेष रूपक आज हम सुनेंगे रात 8:15 पर। आलेख वाचन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। संगीत संयोजन श्री मनीष दत्त और गायक कलाकार होंगे काव्य भारती कला संगीत मंडल के कलाकार।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: नंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश

0: हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
1: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
1: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन,
0: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
1: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
1: श्रोताओं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
0: श्रोताओं ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
1: जी,
0: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
1: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
0: तो श्रोताओं एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
1: जी,
0: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
1: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
0: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
1: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं ऐसा बिल्कुल नहीं है
0: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था, और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
1: श्रोताओं एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
0: तो श्रोताओं ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
1: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। चार

0: वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में दो स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
1: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर रहे हो।
2: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
1: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
2: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी मां और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं।
1: जैसे तुम्हारी मर्जी।
0: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
3: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
2: जी, मैं दादा भाई हूँ।
4: दादा भाई,
2: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
4: अरे लड़कियां पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है।
3: अरे लड़कियां घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
5: अरे जा, कुछ और काम करो।
2: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
0: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर

0: कर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
1: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
0: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
1: मेरे साथियों साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
2: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
1: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
3: लेकिन वो कैसे?
1: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
3: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
4: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
3: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
1: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
0: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरोजी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। वो विद्वान

0: लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी, इसलिए भी मैं कम बोलता।
1: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
2: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
3: वल्लभ वल्लभ।
4: हाँ।
3: अरे तुमने कुछ सुना?
4: क्या क्या हुआ घनश्याम?
3: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
4: हाँ?
3: उन्होंने रामजी को क्लास से निकाल दिया।
4: क्लास से निकाल दिया?
3: हाँ।
4: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
3: रामजी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने रामजी पर 4 आना फाइन कर दिया।
4: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
3: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
5: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
3: तो बेचारे राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
5: निकल जाओ मेरी क्लास से और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
4: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
3: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
4: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहां से लाएंगे भाई?
3: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
4: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिख सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
3: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
4: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
3: ठीक है,
4: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
3: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
4: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
3: क्या?
4: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करें।
3: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
4: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
3: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
1: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
2: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में

0: वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
1: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
2: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
3: हाँ भाई, इरादा तो पक्का है।
2: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
3: हाँ, काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी, और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
2: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
3: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
4: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
3: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
4: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
3: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
4: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयंसेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं
3: जी,
4: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयंसेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
3: उससे क्या होगा
4: भाई, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयंसेवक चाहिए या नहीं, ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
1: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
0: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
5: मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई

0: करनी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
1: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
0: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
1: नहीं।
0: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
1: नहीं।
0: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
1: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
2: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
3: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
2: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। 11:30 हुए हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों से।

ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा. स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी.

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये कार्यक्रम है रंग तरंग। कलाम गुलजार का, मौसिकार भूपिंदर सिंह, आवाज मिताली सिंह की, एल्बम है चांद परोसा है।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाए हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा,
0: रंग तरंग।

विविध भारती के कार्यक्रम हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11:55 हुए हैं। अब जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार के लिए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विभाजन विभीषिका दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 141 अधिकारियों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। अब समाचार विस्तार से। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के मुक्ताकाशी मंच में अब से कुछ देर बाद आयोजित होने जा रहे समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। प्रख्यात फिल्मकार और अभिनेता चंद्रप्रकाश द्विवेदी समारोह के मुख्य वक्ता होंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वह क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि यह दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 141 अधिकारियों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए इन जवानों द्वारा प्रदर्शित किए गए साहस के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष देश में सबसे अधिक गैलेंट्री अवार्ड छत्तीसगढ़ पुलिस को मिल रहे हैं। इसके अलावा सहायक उप निरीक्षक राम अवतार

0: अरसे राजपूत को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। साथ ही राज्य के 11 पुलिस अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। देश कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्री, सांसद और विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। सभी मुख्य अतिथि इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन मायापुर पीपल कोटी टनल में गुरुवार शाम को अचानक पानी भर जाने से छत्तीसगढ़ और झारखंड के 7 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं टनल से 22 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे में 11 श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं। इसमें झारखंड के 5, बिहार के 2, छत्तीसगढ़ के 2 और पंजाब और हिमाचल के एक एक मजदूर शामिल हैं। 6 मजदूर अब भी लापता हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभाजन विभीषिका दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 141 अधिकारियों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हमने आकाशवाणी रायपुर से सुने। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। आइए जुड़ते हैं विविध भारती से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृत दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में याद शम्मी कपूर की, आज है उनकी याद का दिन।

राजकुमार फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। एक बार फिर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर। फिल्म का नाम ब्रह्मचारी था।

महफिल शमी कपूर की यादों की, और ये तमाम गाने जिनमें है मस्ती बेफिक्री। रेबेल शमी कपूर, मस्ती की बौछार। हसर जयपुरी, शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफी। फिल्म का नाम है प्रिंस।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

विविध भारती पर यादों की महफिल, शम्मी कपूर के गाने, जानवर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। ये गाना फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है।

और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश वो फिल्म जिसे खुद शमी कपूर ने डायरेक्ट किया था, मनोरंजन। आवाजें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल आर डी बर्मन की तर्ज।

0: इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। शमी कपूर को हमारा विनम्र नमन। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत में होते हैं गानों के क्लूज और साथ में ये भी कि आज के इस कार्यक्रम में कौन से गाने बज सकते हैं, ये बातें आपको अंदाजा लगानी पड़ती हैं। तो आज की इबारत शुरू करते हैं। ये दो लोगों की बातचीत है। मुझे बारिश पसंद है, तुम्हें? मुझे फुहार उतनी पसंद नहीं है। मुझे जग

जीत सिंह पसंद हैं तुम्हें, खट्टी मीठी आंखों की नशीली बोलियां। मुझे बादलों में तस्वीरें खोजना पसंद है, तुम्हें। तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। पूछो, अपने पसंदीदा गाने की कोई लाइन बताओ। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, अब तुम बताओ। उस पल मौसम पे मेहंदी रच जाए। एक और बोलूं, कभी ये मेरा मन चाहे फूलों की जहां होश आए। अच्छा तो हम चलते हैं, जाता कहां है दीवाने, बादल बिजली चंदन पानी की दुनिया में। ओ साथी चल, बताओ ना कब मिलोगे, जब तुम पुकारो। भाई ये आज की इबारत है और इस इबारत में बहुत सारे गाने छिपे हैं। आप जानते हैं कि इन गानों के जरिए ही आज का ये कार्यक्रम सजेगा। तो चलिए श्रोताओं के कुछ कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि लगातार श्रोताओं के कमेंट्स चले आ रहे हैं और वो अंदाजा लगा रहे हैं कि आज क्या होने वाला है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि अब मजा आने वाला है, टेक्स्ट पढ़ते ही कई गीत कानों में बजने लगे हैं और आपका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता, हर पल सवालों से घेरे लेकिन वो कौन सा गीत सुनाऊं जो पिया बस जाए तुम्हारे तन मन में। इसके अलावा एक और श्रोता है, ये इस नोक झोंक भरी इबारत से पता चल रहा है। और भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़ेंगे लेकिन अभी गानों की इस फुहार की शुरुआत इस के साथ।

पल सवालों से घेरे, लेकिन वो कौन सा गीत सुनाऊं जो पिया बस जाए तुम्हारे तन मन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज प्यारे गीतों की बारिश होने वाली है, ये इस नोक झोंक भरी इबारत से पता चल रहा है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी गानों की इस फुहार की शुरुआत इस गाने के साथ। आपको बताना है इस गाने के गीतकार कौन हैं, और साथ में ये भी, क्या आपके शहर में बरस रही है फुहार।

क्या शानदार गाना है ये, गुलजार के बोल, आशा भोसले की आवाज, खयाम की तर्ज, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब इस बारे में आए हैं और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे पता था कि ये गाना तो आज जरूरी तौर पर बजेगा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ये गीत प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ सावन के मौसम में अकेलेपन और दिल की तड़प को दिखाता है। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि भाई मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और आज मैं कुछ पंक्तियां लिखकर भेज रही हूं जिसे आप कार्यक्रम में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ये पंक्तियां हैं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी एक दास्तान हूं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई सूरत गुजरात में रिमझिम बारिश बरस रही है, कल शाम से फिर छाए हैं बादल और मौसम सुहावना हो गया है। एक श्रोता ये बता रही है कि वो एलेक्सा पर विविध भारती सुनती हैं। हमने एक प्रोमो में भी आप सभी को ये बताया है कि एलेक्सा के जरिए कैसे विविध भारती सुनी जा सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि नगमा तलाशी की जद्दोजहमत से आजाद हैं आज, ईजाद इबारत ना खुदा ने खुद ही इसे आसान बना दिया भाई, शुक्रिया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें, एक श्रोता ये लिखते हैं कि यादों की महफिल कार्यक्रम में शम्मी कपूर के शानदार गाने सुनवाए गए और ये गाने हम सभी को बहुत अच्छे लगे हैं। ये हमारे एक नहीं कई श्रोताओं की बातें हैं। एक और श्रोता का कहना है कि ये बातचीत शायद दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो धुनों के बीच हुई है। सवाल बारिश का था, जवाब किसी पुराने गाने ने दिया, बादलों में तस्वीर ढूंढते ढूंढते बात दिल तक उतर आई, कुछ बोल याद आए, कुछ लम्हे और जाते जाते उसने कहा जब तुम पुकारो, बस फिर क्या था, मुलाकात कहीं खत्म नहीं हुई, एक गीत की तरह बजती रही। इस गाने को जिस गायक ने गाया है वो एक साज बजाने के लिए मशहूर थे, तो बताइए कि ये गायक कौन है और वो कौन सा साज बजाया करते थे।

भूपिंदर की आवाज में ये गाना आपने सुना, और ये जो गाना है ये सत्या फिल्म का है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि उन्होंने ये गाना पहली बार सुना है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के जानकार हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भूपिंदर सिंह इलेक्ट्रिक स्पेनिश गिटार ज्यादातर बजाते रहे हैं, इससे पहले वो इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार भी बजाया करते थे, पर भानु गुप्ता जी ने उन्हें स्पेनिश गिटार की तरफ मोड़ा है। विशाल भारद्वाज का संगीत था ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में जब सफेद बादल को देखता था तो सोचता था कि ये रजाई में जो रुई भरी जाती है शायद यहीं से आती है। एक और श्रोता है जो कहती है कि जब मैं शाम को छत पर वॉक करती हूँ आसमां खुला अच्छा लगता है, मैं उनमें बादलों में तस्वीर की कल्पना करती हूँ, कभी सागर जैसे कभी पहाड़ों जैसे, मुझे बादलों में कभी कभी तो गणपति भी नजर आए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भूपेंद्र जी अलग अलग तरह की उनकी आवाज़ के टोनेशन अलग अलग हैं और दिल को सुकून पहुंचाते हैं, गिटारिस्ट के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि बादल बहुत डराते हैं, उसमें डरावने चेहरे नजर आते हैं। एक और श्रोता ये लिखते हैं कि बादलों में तस्वीर ढूंढते हैं किसकी ये नहीं बता सकते, इसे राज ही रहने देते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बादलों में आकृति ढूंढने में बड़ा मजा आता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे तो हर शाम आसमान पर छाए बादलों में कोई ना कोई तस्वीर नजर आती है, कई बार बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। अच्छा भाई, जब आसमान और बादलों की बात हो रही है तो क्यों ना इस बात को शेयर किया जाए कि बचपन में जब गर्मियों के दिनों में छत पर सोते थे तो क्या आप भी आसमान में तारों को गिनते थे, तारों के बिंदुओं को जोड़कर कोई तस्वीर बनाते थे? तारों से जुड़ी हुई अपनी यादें बताइए, गर्मियों के आसमान के तारे और वो छत वाला मौसम। बहुत सारे श्रोताओं के और भी कमेंट हैं। एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि एलेक्सा में डिफॉल्ट लाइव आता है और कार्यक्रम के साथ ताल मिलाकर नहीं चल पाते, दो तीन बार

करवाया था। इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स में ये बात जरूर आपकी सही नजर आती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि इन दिनों जब आप सुरीला सफर में आते हैं तो मैं आपका पोस्ट किया हुआ टेक्स्ट पढ़ने से बचती हूं और इस बात का इंतजार करती हूं कि कार्यक्रम शुरू हो आप पढ़ें, क्योंकि आपके पढ़ने का अंदाज अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि इतने कठिन सवाल के हम सब फेल हो जाएं। नहीं नहीं जी, बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है। एक और श्रोता है जो कहती है कि जीवन की सुंदरता छोटे पल में है, एक बारिश वाला दिन, एक फुहार वाली शाम, जीवन में ये चीजें कुछ बिछड़े हुए लोगों की यादें दिलाती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है, लखनऊ से हैं, श्याम वर्ण बदरी ने संपूर्ण आकाश पर अपना अधिकार जमा रखा है, कल रात्रि तो झमाझम वर्षा हुई लेकिन आज सुबह से कांच की बूंदों की फुहार बरस रही है, ये उनका कहना है। कितनी सजीली भाषा में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा और भी श्रोताओं के कमेंट में धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश करूंगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर की स्क्रीन पर धड़ाधड़ कमेंट आते हैं और कमेंट एकदम ऊपर की तरफ स्क्रॉल होते चले जाते हैं, तो कमेंट के साथ ताल मिलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक श्रोता का कमेंट बिल्कुल इसी वक्त स्क्रीन पर झलका है। वो लिखती हैं कि बिल्कुल सही, जब फ्लाइट का सफर होता है तो बादल ऐसे लगने लगता है जैसे बहुत सारा दही किसी ने उड़ेल दिया है, कभी सिंह, कभी कान्हा जी, कभी बड़ा सा भालू, कभी डायनासोर वगैरह की आकृति नजर आती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि पैदल चलकर स्कूल जाना होता था बचपन में, मैं और मेरी दीदी बादलों में कोई आकार देखते थे तो बड़ा मजा आता था। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि बादलों को देखकर मुझे महाकवि कालिदास का मेघदूत याद आता है। क्या बात है। चलिए अब एक गाने की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार गाना है नीरज जी का ये गाना, और इस गाने से जुड़ी एक जो बात है वो ये है कि आप जानते हैं विविध भारती पर मनचाहे गीत कार्यक्रम में आती हैं ढेर सारी चिट्ठियां, वो पोस्ट कार्ड जिनमें बहुत ही आत्मीयता की ऊष्मा होती है। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जो बहुत ही सजीली चिट्ठियां लिखते हैं, स्केच पेन से, रंगीन स्याही से सुंदर सुंदर आकृतियां, फूल पत्तियां बनाते हैं, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी बात लिखते हैं, अपना नाम, गाने के बोल, पता। बचपन में हम सभी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में सजीली चिट्ठियां भेजने की कोशिश करते थे, कभी ग्रीटिंग कार्ड बनाते, कभी जन्मदिन की बधाइयां, तो कभी कुछ और, लेकिन ये चिट्ठियां बहुत सजीली बनाने की कोशिश करते थे। आखिरी बार सबसे ज्यादा सजीली चिट्ठी आपने किसको और कब लिखी थी?

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये प्रेम पुजारी फिल्म का गाना है, 1970 में ये फिल्म आई थी। नीरज के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत है। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ एक गीत नहीं, प्रेम की वो खूबसूरत इबारत है जिसमें प्रकृति भी बोलती है और मन भी बोलता है। फूलों के रंग जैसे भावनाओं के रंग बन जाते हैं। इस गीत को सुनना जैसे किसी पुराने खूबसूरत खत को पढ़ने जैसा है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग कुछ चिट्ठियों को सजाकर तरह तरह की रंग वाली स्याही से लिखते थे, पर हम तो अपनी स्कूल कॉलेज के दिनों में जो नोट्स तैयार करते थे, जो फाइनल कॉपी तैयार करते थे, उसमें सुडौल अक्षरों से लाल या ग्रीन पेन से उसकी हेडिंग लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही हैं कि शादी से पहले अपने मायके में गर्मियों की छत पर सोते थे, तब 7 तारों का एक समूह देखकर अपने परिवार के सभी लोग उस समूह को जोड़कर देखते थे, क्योंकि हम परिवार में 7 लोग थे। ये जो यादें हैं ये बहुत याद आती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विविध भारती पर मेरी चिट्ठी तो नहीं शामिल हुई, लेकिन फेसबुक के जरिए डिजिटल चिट्ठियां शामिल हो जाती हैं। एक और श्रोता वही याद लिख रहे हैं कि कैसे बचपन में छत पर सोते थे और सप्तऋषि ढूंढा करते थे, तब तारे बहुत स्पष्ट नजर आते थे और बहुत सारे, लेकिन आज तो कृत्रिम रोशनी ने जैसे तारों को लील लिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमने विविध भारती के मनचाही गीत कार्यक्रम में चिट्ठी लिखी है, लेकिन आज तक शामिल नहीं हुई है, हमें इंतजार है। इतनी सारी चिट्ठियां आ रही हैं और हर रोज इन चिट्ठियों को छांटा जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी चिट्ठी शामिल हो जाएगी। एक एक चिट्ठी हमारी टीम मिलकर छांट रही है, ये बहुत गजब का काम है और सब लोग कर रहे हैं मिलकर। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत पर नहीं बल्कि चारपाई पर खुले आसमान के नीचे सोते थे और तारों को गिनते हुए पता नहीं कब नींद आ जाया करती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे बारिश पसंद है, बारिश की फुहारें भी पसंद है, पर इतनी ज्यादा बारिश पसंद नहीं है कि सैलाब आ जाए और जान माल की आंधी हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब तारे टूटते थे तो कुछ विश मांगा करते थे, 5 फल का नाम जल्दी से लेते थे, तरह तरह की विश्वास थे टूटे हुए तारों को देखने को लेकर। इसके अलावा कुछ और इतने सारे श्रोता हैं जिन्हें सप्तऋषि तारामंडल देखने का शौक था और बचपन की उनकी याद जैसे आज के इस कार्यक्रम के जरिए ताजा हो गई है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में माँ से पूछते थे कि कितने तारे हैं, तो माँ हमेशा जवाब देती थी आसमान में कुल 3000 तारे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि बादलों में नीला आसमान सफेद बादलों की चित्रकारी करता है और आकृति कुछ ही सेकंड में बदल जाती है। इसके अलावा बादलों के बारे में कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं और बहुत सारे श्रोता हैं जो ये इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बहुत सारी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। हर दिन यूं होता है कि कभी न कभी पुराने किसी वक्त की याद आती है या गुजरे दौर के किसी व्यक्ति की याद आती है। आज सुबह से आपको किसकी याद आ

एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में विविध भारती पर मिली फिल्म का विज्ञापन आया करता था और उसमें कहा जाता था अमिताभ बच्चन को जया भादुड़ी मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम हमेशा की तरह बहुत शानदार है, आज की इबारत बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली है। और इसके अलावा उन्होंने एक गाने की फरमाइश भी की है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुबह से मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, कल 15 अगस्त को उनका जन्मदिन है, आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, बता दे तेरी यादें किस कोने में सुखाऊं, बारिश बाहर भी है और अंदर भी। इसके अलावा एक और श्रोता है लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैंने फेसबुक खोली, टेक्स्ट देखा तो उसमें यूनुस जी का नाम था, बस काम करते करते फटाफट जोरदार कमेंट पढ़ने वाले यूनुस जी की याद आ रही थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुबह से मुझे अपने भारत देश की याद आ रही है, अपने देश में नहीं हूं और स्वतंत्रता दिवस के माहौल को याद कर रहा हूं। एक और श्रोता लिखती है कि राखी का त्यौहार आ रहा है और मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हमें तो बस आपके कार्यक्रम की याद आती है, लिखते हैं और पोस्ट आए और कुछ लिखें। एक और श्रोता अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 45 साल पहले कितना बढ़िया समय था, हाथ का पंखा होता था, कोई रिश्तेदार आता था तो छत पर ही लेटा करता था और तारे गिनते थे। एक और श्रोता कहते हैं कि बचपन में हम पोस्ट कार्ड को कबूतर का आकार देकर अपने चाचा को भेजा करते थे। एक और श्रोता है जो आसमान में तारे देखना पसंद करती रही हैं और उनका कहना है कि मुझे लगता है कि एक दूरबीन लूं और सितारों की रहस्यमय दुनिया की तरफ चली जाऊं। एक श्रोता है जो आसमान में ध्रुव तारे को हमेशा देखती और ताकती रही हैं। तो ये सब बातें हमारे श्रोताओं की हैं। एक और श्रोता का कहना है कि आज सवेरे अचानक पापा की याद दिल पर छा गई, उनको गए 7 साल हुए, पापा को कॉल करके बात करूं ऐसा एक पल के लिए हुआ पर फिर संभल गई, मन भारी हो गया जैसे काले बादल छा गए। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गानों के बीच की लाइन देखकर पढ़कर गाना जरूर याद आता है पर कई बार उसकी पहली लाइन में गड़बड़ हो जाती है, दूसरे किसी गाने से मिक्स हो जाता है। जब आप कार्यक्रम में गाना सुनाते हैं तो पता चलता है अच्छा ये गाना था। और ये हमारे तमाम श्रोताओं के कमेंट्स और अब एक बहुत ही मजेदार अद्भुत गाना, ललित गाना आ रहा है। इस गाने के गीतकार का नाम आपको बताना है। जगजीत सिंह के फिल्मी गानों में आपका सबसे प्रिय गीत कौन सा है और जगजीत सिंह की गजलों में आपके दिल के करीब कोई एक गजल कौन सी है।

भाई जगजीत सिंह के बारे में पूछा एक श्रोता है, उन्होंने पंकज उदास के बारे में बताया ये क्या हो रहा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि होश वालों को खबर क्या, ये बहुत पसंद है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, ये बहुत पसंद है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि जगजीत सिंह की गजलों की किताब मैंने 2012 में कानपुर रेलवे स्टेशन से खरीदी थी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये गजल बहुत पसंद है और मुस्कान के पीछे छिपे हुए दर्द को बताती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका कहना है कौन कहता है मोहब्बत की जबां होती है और झुकी झुकी सी नजर उन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें होठों से छू दो को तुम पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें पसंद है कोई पास आया सवेरे सवेरे और कोई ये बता दे कि वो तन्हा क्यों है। एक और श्रोता है जिन्होंने मेरी आंखों ने चुना है तुझे देखकर, ये वाली रचना पसंद है। इसके अलावा कई और श्रोता हैं, तुमको दिखा तो ये ख्याल आया, कोई फरियाद, ये सब पसंद हैं। ये दौलत भी ले लो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये सब अलग अलग श्रोताओं को पसंद हैं।

उसके अलावा एक पंजाबी गीत है सावन का महीना, ये कुछ श्रोताओं को पसंद है। तो देखिए कितने सारी गजलें, कितने सारे नगमे जगजीत सिंह के लोगों ने एकदम से बताए हैं, और आप सभी जिस तरह से जगजीत के दीवाने हैं, ये कमाल की बात है। चलिए पुराने दौर में ही रहते हैं, और अब मुझे ये बताइए कि मैंने प्यार किया और कयामत से कयामत तक, ये दोनों फिल्में आप में से सबसे ज्यादा बार किसने देखी हैं? आज तो पता चल जाएगा। आप दोनों बताइए कि मैंने प्यार किया और कयामत से कयामत तक, ये फिल्में आपने कितनी कितनी बार देखी हैं? जरा देखते हैं कि हमारे श्रोताओं में कौन है चैंपियन जिसने सबसे ज्यादा बार ये फिल्में देखी हैं।

भाई एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि मैंने प्यार किया उन्होंने 100 बार देखी और कयामत से कयामत तक जो है 20 बार देखी। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कहती हैं कि हॉल में एक बार देखी और दूरदर्शन पर आई तब भी देखी, यानी उन्होंने कम बार देखी है। उसके अलावा 10 बार कयामत से मैंने प्यार किया देखी एक श्रोता ने, और कयामत से कयामत तक 2 बार देखी है। और इसके अलावा 30 दिन तक लगातार एक श्रोता ने देखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि इंदौर की एलोरा टॉकीज में कयामत से कयामत तक देखी थी। 9 बार मैंने प्यार किया देखी है एक श्रोता है उन्होंने, और मैंने प्यार किया एक और श्रोता है उन्होंने 11 बार देखी है, और कयामत से कयामत तक 2 बार देखी है। 20 बार एक श्रोता ने देखी है। मुझे लगता है कि सब

से ज्यादा तादाद यही है क्या? अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। 20 बार देखी, ये सबसे ज्यादा है भाई। मेरी तादाद कम रह गई, मैंने तकरीबन 7 बार देखी। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने में महिला स्वर किसका है? महिला स्वर किसका है ये बताइएगा।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

बहुत सारे श्रोताओं ने पहचान लिया कि ये सुलक्षणा पंडित की आवाज है और हेमा मालिनी पर ये गाना फिल्माया गया है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि मेरी लिस्ट का चौथा गाना शामिल हो गया आज के इस कार्यक्रम में, और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि इन सब बातों को छोड़िए, जब मैं पांचवी में थी तो लव स्टोरी 25 बार देखी थी और अपनापन तो जिस दिन लगी थी उसी दिन 3 सप्ताह 25 पैसे की टिकट में देखी थी। भाई वाह वाह वाह। तो एक श्रोता और हैं जो कहते हैं कि मैं सबसे टॉप पर हूं, मैंने प्यार किया एक बार देखी, कयामत से कयामत तक आज तक नहीं देखी। हाँ भाई आप टॉप पर हैं। उसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं। मेहसाणा जिले के वीजापुर में भाग्योदय थिएटर में ये फिल्म देखी थी जब वो 6वीं क्लास में थे। तो भाई एक श्रोता है जिन्होंने 100 बार फिल्म देखी है, अब क्या कहा जाए, सेंचुरी मार ली है इन्होंने, ये तो गजब की बात है। इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं की बातें हैं। अब जो गाना आ रहा है वो वक्त की बात करता है। हमें ये बताइए कि किन लोगों के साथ आपको ऐसा लगता है कि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, और क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आपको लगता है कि ये वक्त बीत क्यों नहीं जाता, किन लोगों के साथ वक्त की रफ्तार तेज लगती है और किन लोगों के साथ धीमी।

एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि रेडियो सुनते सुनते वक्त ही नहीं कटता। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्रोग्राम जब आप करते हैं तो पता नहीं चलता कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं पुणे से अपने गांव भुसावल जाता हूं माता पिता के साथ। ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर जाना चाहिए लेकिन बिजली की फुर्ती के साथ बीत जाता है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मेरी छोटी बहन है बातूनी दादी अम्मा उसके साथ समय का पता नहीं चलता और यूनुस जी आप शताब्दी एक्सप्रेस हैं आपके साथ समय बहुत तेजी से बीत जाता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि पतिदेव के साथ समय पंख लगाकर उड़ जाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम सुनते हुए मुझे लगता है कि वक्त थम जाए। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ 1:50 पर ये हम ऐसे कैसे कह सकते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, अभी बहुत सारे गाने सुनाएंगे, एटलीस्ट 2-3 गाने तो आपको सुनाएंगे, उसके बाद ही हम कहीं जा रहे हैं। पर इस गाने का इस्तेमाल आम बातचीत में आप कब करते हैं और पिछली बार कब किया था ये जरूर बताइएगा। और इस मौसम में कहां पिकनिक मनाने जाने का मन कर रहा है आपका? कुछ इस तरह।

बहुत सारे श्रोता हैं जिनका मन पता नहीं कहां कहां जाने का कर रहा है। किसी श्रोता को जाना है कोंकण, किसी को मुंबई आना है। कोई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें इछावर के पास कालिया देव की एक बहुत बड़ी नदी है, वहां पिकनिक मनाने का मन कर रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वहां श्रोता सम्मेलन हो रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं, अरे अरे इतनी जल्दी 2 बज गए क्या? अरे नहीं, अभी नहीं बजे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और अभी तो कुछ गाने सुना रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि उन्हें सब लोगों का कहीं ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है और यहां स्टूडियो में मैं आपको सुना रहा हूं ये गाना। मुकेश की आवाज है। बताइएगा ये गाना किसने लिखा है।

ये देखिए, ये गाना बज ही रहा था कि हमारी एक श्रोता कहती है आज बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था लेकिन अभी जोरदार बारिश शुरू हो गई है तो वो रुक गई है। मुझे शकील आजमी का एक शेर याद आ रहा है कि खुद को ना यूं बचाया कर, बारिश आए तो भीग जाया कर। और ये किस फिल्म का गाना है जिसके जरिए मैं आपसे साइन ऑफ करूंगा, इजाजत लूंगा, बताइए।

भाई हम कहीं नहीं जा रहे, 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे। और अभी तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी जाता कहाँ है दीवाने वाला गाना हम पर लागू नहीं हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। आज की ये इबारत दो लोगों की रूमानी बातचीत वाली इबारत थी। हमें उम्मीद है कि इबारत और उसमें बने हुए गाने आपको पसंद आए हैं। अब नमस्ते।

ये किस फिल्म का शीर्षक गीत है जो हम बजा रहे हैं? किस फिल्म का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम बजा रहे हैं?

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 41वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में श्री अरविंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक उत्तम शिक्षक, क्रांतिकारी और संगठक, साथ ही प्रखर राष्ट्रवादी लेखन करने वाले लेखक संपादक के रूप में श्री अरविंद की ख्याति बढ़ी थी। इस काल में उनका योग मार्ग और अध्यात्म का अध्ययन भी चल रहा था, परंतु 1908 में अलीपुर की जेल में बंदी रहने के दौरान अरविंद का अध्यात्म की ओर झुकाव और भी अधिक बढ़ गया। 6 मई 1909 को अरविंद रिहा हुए। श्री अरविंद घोष से योगी अरविंद की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई, परंतु धर्म नामक बांग्ला और कर्मयोगिन नामक अंग्रेजी ऐसे दो नए साप्ताहिक पत्र शुरू करके श्री अरविंद ने अपना प्रखर लेखन जारी रखा। 4 अप्रैल 1910 को गुप्त रूप से चंदन नगर, जो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश था, वहां श्री अरविंद जाकर रहने लगे और आगे चलकर कुछ ही समय में पौंडिचेरी में स्थायी रूप से बस गए। वंदे मातरम का एक प्रचार केंद्र ठंडा पड़ गया। लोकमान्य तिलक का मंडाले कारावास और श्री अरविंद का

0: पांडिचेरी चले जाना। इन कारणों से गरम दल आंदोलन काफी धीमा पड़ गया। अंग्रेजों की राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई।
1: लोकमान्य तिलक की रिहाई के बाद एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ और सभाओं में फिर से वंदे मातरम की गर्जनाएं होने लगी। सड़कों पर, न्यायालयों में, कारागारों में वंदे मातरम का नारा लगाते समय जनता को किसी का भी भय नहीं रहा। 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद गांधी युग का उदय हुआ। देशव्यापी आंदोलन को अलग स्वरूप मिला। स्वयं गांधी जी वंदे मातरम के प्रेमी थे, पर कुछ समय बाद उनके विचार बदल गए। ये अलग बात है। अहिंसक आंदोलन के काल में भी देश के विभिन्न प्रांतों में क्रांतिकारियों की सशस्त्र गतिविधियां रुकी नहीं थी। 1927 के 18 सितंबर को राजेंद्र लाहिड़ी, 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और 20 सितंबर को रोहन सिंह को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। इन चारों पर लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने का आरोप था। काकोरी षड्यंत्र के नाम से ये क्रांतिकारी हमला प्रसिद्ध है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कवि थे। सरफरोशी की तमन्ना, ये प्रसिद्ध गीत उन्हीं का है। वंदे मातरम शब्दों वाला उनका एक और गीत भी प्रसिद्ध है।
0: कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम।
1: जेल में रहते हुए उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी वो बाद में प्रकाशित हुई और उस पर तुरंत ही अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। एक प्रखर क्रांतिकारी और कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए ही फांसी स्वीकार की।

काकोरी षड्यंत्र की तरह ही एक और चर्चित षड्यंत्र है वर्तमान बांग्लादेश में स्थित चिटगांव शस्त्रागार पर हमला। बंगाली क्रांतिकारी सूर्यसेन दा और अनंत सिंह के नेतृत्व में 17-18 वर्ष के युवक युवतियों ने चिटगांव में अंग्रेजी फौज से युद्ध ही किया। क्रांति के लिए पैसा तो लगता ही है, पर हथियारों की कमी पूरी करने के लिए ही अंग्रेजों के शस्त्रागार पर हमला किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। इस छोटे युद्ध में कुछ क्रांतिकारी शहीद हुए तो बहुत से पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाकर सूर्यसेन दा, तारकेश्वर और कल्पना दत्त को फांसी की सजा सुनाई गई। उनमें से कल्पना दत्त की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। 12 जनवरी 1934 की रात सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाया जा रहा था। दूसरे दिन सुबह उनकी फांसी की सजा को अंजाम दिया जाना था। सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाते समय आसपास के राजबंदियों ने वंदे मातरम का जयघोष किया। सूर्यसेन दा भी वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इससे भड़के हुए अंग्रेज अधिकारियों ने सभी को बेरहमी से पीटा, पर वंदे मातरम का घोष बढ़ता ही गया। उस पिटाई के कारण सूर्यसेन दा बेहोश हो गए। उसी बेहोशी की अवस्था में सूर्यसेन दा को फांसी पर चढ़ाया गया। ये तो अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सूर्यसेन दा की फांसी के बाद बंगाल में सर्वत्र जन आक्रोश उमड़ पड़ा। वंदे मातरम के शहीदों में एक और क्रांतिकारी का पुष्प अर्पित हो गया।

0: 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक अनेक छोटे बड़े संघर्ष या आंदोलन खड़े हुए, उनमें से कुछ सशस्त्र तो कुछ निशस्त्र आंदोलन थे। होम रूल आंदोलन, असहकार आंदोलन, नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन शांतिपूर्ण निशस्त्र लड़ाइयों में भी मुख्य नारा वंदे मातरम ही था। क्रांतिकारी आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे आगे आए, तथापि भगत सिंह ने 26 अप्रैल 1929 को दिल्ली कारागार से पिता के नाम भेजे पत्र में प्रणाम शब्द की जगह वंदे मातरम शब्द लिखे थे। लाला हरदयाल, आचार्य काका कालेलकर, जमनालाल बजाज, महादेवी वर्मा, आचार्य विनोबा भावे, इनके पत्रों में भी वंदे मातरम शब्द सबसे ऊपर होते थे। चंद्रशेखर आजाद के पत्रों में भी आरंभ में वंदे मातरम लिखा होता था। असहयोग आंदोलन के बाद के खिलाफत आंदोलन के काल में भी वंदे मातरम के नारे लगते ही थे। खिलाफत के मंच से मुस्लिम नेताओं का भी वंदे मातरम को कोई विरोध नहीं था।
1: आनंद मठ उपन्यास में मुस्लिम विरोधी वर्णन नवाब के अंधाधुंध निरंकुश शासन के बारे में और किसी भी प्रकार के अनुशासन को न मानने वाले मुस्लिम सैनिकों के इतिहास के संदर्भों को लेकर ही किए गए थे। बंकिम चंद्र जी के मन में मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में कोई भी पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण नहीं था। बंग दर्शन के 1874 के पौष माह के अंक में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में उन्होंने लिखा था,
2: बंगाल केवल हिंदुओं का प्रदेश नहीं है, वो हिंदू मुसलमानों का प्रदेश है। आज हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो गए हैं, वे मन से भी एक नहीं है, पर बंगाल की भलाई के लिए हिंदू मुस्लिमों में एकता होना आवश्यक है। जब तक उच्च वर्ग के मुसलमानों में बांग्ला उनकी भाषा नहीं है, वे किसी परदेश में रह रहे हैं, ऐसी भावना रहेगी तब तक वे बांग्ला न लिखेंगे और न सीखेंगे, केवल उर्दू फारसी में ही वे काम चलाते रहेंगे। तब तक एकता नहीं हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की नींव ही भाषा की एकता है।
1: बंकिम चंद्र जी की यह भविष्यवाणी 1905 के बंगाल के विभाजन के आंदोलन के समय सच साबित हुई। बंकिम बाबू को अपेक्षित हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में दिखाई देने के कारण ही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन सफल हुआ। 1905 में थोपा गया बंगाल का विभाजन बाद में 6 वर्षों के भीतर अंग्रेजों को इसी एकजुट लड़ाई के कारण रद्द करना पड़ा।
0: प्रारंभिक काल में वंदे मातरम के प्रति आदर होने के कारण वंदे मातरम के उर्दू में भी अनुवाद हुए। काजी अब्दुल गफ्फार, सीमाब अकबराबादी, कवि भानु जैसे अनेक लोगों के उर्दू में किए गए अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। उनमें से एक उर्दू अनुवाद ये है।

0: जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
1: ये थी वंदे मातरम एक जय घोष इस लघु रूपक श्रृंखला की 41वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
5: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम

0: पर आगे चलकर परिस्थिति बदल गई। वंदे मातरम का दबे स्वर में ही सही विरोध होने लगा।
1: आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है।

0: जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देशभर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव

0: करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
2: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं, सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
3: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ

0: खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केवंझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती से बोल रहे हैं सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मजाज लखनवी की रचना

तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के

0: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन रही हैं। अब उजाला फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: शैलेंद्र की बोल थी शंकर जयकिशन की तर्ज मनाडे और साथियों की आवाज दी। फिल्म का नाम था उजाला।
1: रॉक, रॉक,
0: और अब दिल देखे देखो फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें। मजू सुल्तानपुरी की बोल संगीत उषा खन्ना का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ तो पहले आप अपना नाम बताइए और अपने शहर का नाम बताइए।
1: मेरा नाम है कल्याणी सुर्वे, मैं वसई से हूँ।
0: अच्छा, आप वैसे ही से बोल रही हैं। तो बताइए कल्याणी
1: हाँ
0: जी, आप कुछ जॉब करती हैं या आप घर पे रहती हैं?
1: हाँ मैं जॉब पे हूँ।
0: अच्छा, तो आप बताइए
1: घर
0: आपके घर में कौन कौन है?
1: में हम 3 जने हैं, मेरे हस्बैंड पेशावर में,
0: अच्छा, तो बेटा छोटा है कि बड़ा?
1: नहीं बड़ा है,
0: बड़ा।
1: कॉलेज जाता है।
0: अच्छा, आपकी कुछ यादें होंगी 15 अगस्त की कि आप किस बेटे को जब भेजती थी स्कूल, तो जब 15 अगस्त होता था तो आप किस तरह से तैयारी
1: हाँ।
0: करती थी, उसकी कुछ यादें हैं आपकी, या फिर आपकी अपनी खुद की यादें हो?
1: या मेरी खुद की यादें थी कि स्कूल में 15 अगस्त को जाना बहुत अच्छा लगता था, कि
0: हाँ।
1: वो एक अलग ही ये रहता था माहौल। टीचर्स बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां वाइट कलर की पहन के आते थे, फिर
0: अरे वाह।
1: जो भाषण होते थे, फिर पोइट्री स्कूल बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। यानी कि आज भी 15 अगस्त की याद आती तो पहले स्कूल की याद ही है।
0: तो आप भाग लेती थी या आपने पार्टिसिपेट किया इन सब चीजों में, जो भी अगर कुछ फंक्शंस में?
1: नहीं इतना तो नहीं, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता था बोलने से।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, आपके पसंद का कोई गीत?
1: मुझे क्या हुआ तेरा वादा गाना सुनना, तो
0: अच्छा,
1: हम किसी से कम नहीं मिले।
0: अरे वाह, ठीक है, चलिए मैं आपको आपके पसंद का गीत सुनवाती हूँ।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हाँ, मैं सोनू वर्मा बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल से बोल रही हैं आप। आपके घर में कौन कौन है पहले बताइए तो।
1: हाँ, घर में मम्मी पापा हैं और हस्बैंड है, बच्चे हैं।
0: बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: हाँ, मेरा एक ही बेटा है, बड़ा है।
0: अच्छा, तो आप कुछ अपनी यादें आप बताएंगे 15 अगस्त की, जो 15 अगस्त आ रहा है।
1: आप 15 अगस्त में बचपन में बहुत उत्साह रहते था स्कूल जाने का, क्योंकि वो जो पीले वाले लड्डू जो मिलते
0: मुझे मुझे
1: थे
0: यही सुनना था, वो पीले वाले लड्डू की मुझे बहुत, क्योंकि ना उसके उसके बना के वो पीले लड्डू मिलेंगे, वो 15 अगस्त आ रहा है, हमें जाना जरूरी है।
1: जी, वो 15 अगस्त पे ही उसका बहुत ज्यादा वो रहता था। उसके लिए क्या है कि जरूर तैयार होते थे कि आज लड्डू मिलेंगे, और दो मिलते थे। तो
0: हाँ, वो लड्डू बहुत ज्यादा कीमती
1: एक
0: होते थे ना।
1: जी बहुत ज्यादा कीमती और बहुत अच्छे होते थे। जो टेस्ट उस समय रहता था, बाकी नहीं मिलता था टेस्ट में।
0: बिल्कुल, चाहे हम बाद में कितनी भी मिठाई खा लें, लेकिन वो जो एक स्वाद था ना, वो एकदम मन में
1: जी
0: बस जाता था, है ना। और
1: जी
0: साथ ही वहां पे जाके जब देश गान होता था ना, तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते थे ना,
1: हाँ,
0: जब
1: बहुत अच्छा
0: जनगणमन
1: लगता
0: शुरू
1: था
0: होता
1: उस
0: था।
1: समय की। जो 15 अगस्त थी बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत उत्साह रहता था, एक खुशी रहती थी कि साहब 15 अगस्त आ रही है।
0: हाँ, जाना
1: उस
0: है
1: चीज
0: हमें।
1: की यूनिफॉर्म गंदी रहती थी, तो रात को इसको

0: धोना है, सुखाना है, ताकि सुबह साफ ड्रेस पहन के जाएं।
1: हाँ बहुत अच्छा लगता था एकदम, देख के माहौल पूरा एकदम दिल खुश हो जाता था, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा मैं उसी समय पे पहुंच गई हूँ।
1: देखिए आप अपने बचपन वाले 15 अगस्त से पहुंच गई ना बात करते करते।
0: जी, मम्मी से सीखा है मैंने रेडियो सुनना, मेरी मम्मी आज भी रेडियो सुनती हैं।
1: अरे वाह बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ उन्हें बहुत पसंद है रेडियो, जब भी रेडियो पे अच्छा गाना सुनती है तो मुझसे बोलती है कि तुम भी फोन लगाना, ये गाना सुनना। मैंने हाँ बिल्कुल सुनूंगी, और मेरी मम्मी को बहुत खुशी
1: जी
0: होती है अगर हेलो शैली में मेरी बात होती है तो। जी
1: बहुत अच्छी बात है। आप बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
0: कुमार शानू की आवाज है, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने
1: हाय
0: की।
1: क्या गीत सुना है आपने, बहुत
0: जी
1: बढ़िया। चलिए आप सुनाते हैं, आपको
0: मेरी
1: पसंद
0: मम्मी
1: आप।
0: का नाम ले लूं,
1: हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
0: मेरी मम्मी का नाम है सोहरम बाई, और ये गाना जिसके लिए है उनका नाम है संजय महेश्वरी।
1: अच्छा ठीक है, तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कितने

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो पहले तो आप बताइए अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं उज्जैन से भारती भटनागर बोल रही हूँ।
0: अच्छा भारती जी, तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: हाउसवाइफ
0: अच्छा, तो ये बताइए
1: हूँ।
0: कि आपको क्या करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: मुझे किचन में खाना बनाना और साफ सफाई करना बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आपको साफ सफाई अपने घर में रखना बहुत पसंद है।
1: हाँ बहुत
0: तो
1: पसंद है
0: किचन
1: मेरे
0: में
1: को।
0: आपको खाना बनाना पसंद है, तो कोई ऐसी बहुत ही अच्छी सी जो डिश आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाती हैं, कौन सी है वो?
1: दाल चावल बहुत अच्छे से बनाती हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे
0: हाँ जी,
1: पोते को भी दाल चावल बहुत पसंद है इसलिए।
0: अच्छा, तो आपका पोता है कितना बड़ा?
1: वो 13 साल का है।
0: 13 साल का है, यानी 15 अगस्त की
1: जी
0: तैयारियां चल रही होंगी, है ना, स्कूल में।
1: जी इसीलिए तो मेरा नाम भारती है, मेरा भी जन्मदिन 15 अगस्त को है ना।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: बहुत
1: 15 अगस्त
0: बढ़िया,
1: को
0: और आपका
1: दिया
0: नाम भी शायद इसीलिए भारती रखा गया है।
1: भारती रखा गया है। हाँ इसीलिए भारती रखा गया है।
0: बहुत बहुत बहुत
1: हाँ
0: बधाई हो आपको,
1: बहुत खुशी
0: जन्मदिन
1: हुई
0: की अग्रिम
1: अचानक से मेरे को फोन
0: बधाइयाँ।
1: लगा, इतनी खुशी हुई।
0: तो आप बताइए आज
1: हाँ
0: हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं जो आपको पसंद हो?
1: मुकेश दत्ता की आवाज में कभी कभी वाला लगा, कभी पिक्चर लगाना।
0: अच्छा, कभी कभी वाला गाना।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं राजगढ़ शहर से बोल रही हूँ। नाम है लक्ष्मी वर्मा।
0: तो बताइए लक्ष्मी
1: हाँ,
0: जी, आपको क्या करना बहुत पसंद है?
1: हमको बहुत पसंद है, हर चीज पसंद है। और ये जो सावन का महीना चलता है ना,
0: सावन बहुत पसंद है आपको, है ना?
1: बहुत पसंद
0: सावन का
1: है।
0: महीना पसंद है, यानी आपको बारिश बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत बारिश पसंद है। और अब तो बहुत सारा पानी गिरा तो ऐसा लगता है कि दिन भर पानी में भीगो तो और अच्छा लगता
0: यानी भीगना पसंद है आपको, है ना?
1: हाँ, भीगना बहुत अच्छा लगता है ना, पानी में भीगो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत सहेली
0: बिल्कुल।
1: की भी आज अपन को महसूस होती है, यार आज अपनी सहेली रहती तो कितना अच्छा लगता है साथ
0: हाँ,
1: में।
0: हर मौसम को हम उसका आनंद उठाना चाहिए ना, लेकिन आनंद सावधानी के साथ उठाना चाहिए।
1: आपको मेरी सिस्टर का नाम बताने चाहती हूँ मैं।
0: बिल्कुल बताइए।
1: हमारी सिस्टर का नाम है सोनू वर्मा, भैया का नाम है उसका, एक तो रोहित है, और जीजा का नाम है संजू वर्मा।
0: अरे वाह,
1: हम गाना सुनने चाहते हैं, कहो ना प्यार है।
0: ठीक है, चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: पहले बताइए अपना नाम और फिर बताइए अपने शहर का नाम।
1: मैं वसई से उज्ज्वला नीलेश भरत बोल रही हूँ। मैं वसई में रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आप उज्ज्वला जी
1: हाँ
0: बोल रही हैं, तो ये बताइए उज्ज्वला जी आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, दोनों सब लोग हैं।
0: अच्छा, तो बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरी बेटी कॉलेज में जाती है, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है,
0: अरे वाह,
1: और बेटा 8th स्टैंडर्ड में है।
0: यानी पढ़ाई चल रही है अभी। तो 15 अगस्त
1: पढ़ाई
0: आने
1: चल
0: वाला है,
1: रही है,
0: कैसी तैयारियां चल रही हैं?
1: अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग बिल्डिंग में भी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स करवाते हैं छोटे बच्चों के।
0: अच्छा, आपकी सोसाइटी में भी होता है ये सब चीजें?
1: हाँ।
0: तो स्कूल में तो एक अलग तरीके से होता होगा ना, तैयारियां भी आप अच्छे तरह से करते होंगे, और साथ ही बच्चे के स्कूल में है तो उसने किसी में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है किसी चीज में?
1: नहीं, इस साल तो उसने किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है।
0: लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा
1: जाना
0: ना।
1: जरूर पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: क्योंकि
1: हाँ
0: वहां पर जाके जो माहौल देखते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि अपने देश का
1: बहुत
0: त्योहार है
1: अच्छा,
0: ये।
1: बहुत अच्छा लगता है सच।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: अभी सावन का महीना चल रहा है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं धनु जायसवाल बोल रही हूँ, झांसी से। हाँ
0: अच्छा, झांसी से बोल रही हैं आप। तो
1: जी,
0: बताइए आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है।
1: हमको घर का काम करना अच्छा लगता है, हाउस वाइफ है, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको गाना सुनना अच्छा लगता है। आपको थोड़े से बचपन में आपके ले जाते हैं। आप जब छोटी रही होंगी तो आप 15 अगस्त जैसे अभी आ रहा है तो आप कैसे मनाती थी उसे।
1: तो मैडम हम तो बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे हम, तो हमारे 15 अगस्त हमारे स्कूल में मनाया जाता था। टीचरें सबसे गाना गवाती थी, झंडा
0: अच्छा,
1: उठता था और
0: हाँ
1: नाश्ता वाश्ता मिलता था, बहुत अच्छा लगता था।
0: वो पीले लड्डू की याद है आपको।
1: हाँ, पूरे पीले लड्डू हमारे यहाँ, तो हम यहाँ
0: हाँ
1: के हैं ना, मिर्जापुर के हैं, तो हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह से सब कुछ बांटते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे मैडम।
0: और
1: हाँ,
0: झंडा
1: लड्डू
0: फहराया
1: बांटते,
0: जाता था, है ना।
1: झंडा फहराया जाता था। सुबह सुबह चले जाते थे हम लोग, कोई स्कूल सुबह 7 बजे का रहता था, मगर उस दिन बहुत जल्दी जाते थे।
0: हाँ, सुबह सुबह जाके वहां पे कितना अच्छा लगता था ना, जब जब देश गान होता है ना उसके बाद कितना अच्छा लगता है सुन
1: हाँ,
0: सुन के।
1: बहुत अच्छा। अभी भी कभी कभी जब गाने आते हैं रेडियो में, कभी कभी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं मैडम।
0: बहुत अच्छा लगता है। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज।
1: हम गाना सुनना चाहते हैं, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: जरा ध्यान से सुनिए। अरे स्टूडियो का फोन लगातार बज रहा है, आपके संदेश हम तक पहुंचा रहा है। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी सी है। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022-28-67-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना मत भूलिएगा। और हमारे जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाला प्रयास कभी भी असफल नहीं होता, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती,
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है अब गम नहीं।
2: जिंदगी एक कहानी ही तो है। हम आसपास जो देखते हैं हमारी कलम से शब्द बनकर वर्कों पर बिखर जाता है। कहानियां जीवन में न जाने कितने रंग लेकर आती हैं, है ना? कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपके चेहरे पर मुस्कान है? नहीं है तो चलिए ना, सजा देते हैं आपके चेहरों पर मुस्कान। जानती हूं मैं कि जीवन की आपाधापी में बहुत कुछ छूट जाता है। ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम मिस करते रहते हैं, जैसे बचपन में सुनी हुई कहानियां जो हमने दादा दादी से सुनी होती हैं, नाना नानी से सुनी होती हैं। हमने न जाने कितनी कहानियां पढ़ी हैं, जातक कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, और ये सब कहानियां सुनकर पढ़कर हम सब उनमें डूबने उतराने लगते हैं ना। जी हाँ, देशभक्ति से जुड़ी भी ना जाने कितनी कहानियां हैं। अब 15 अगस्त आ गया है तो सोच रही हूँ क्यों ना इस अवसर पर आपके साथ वीरों की बातें हों, उनके परिवारों की बातें हों, उनकी वीरता की बातें हों, उनके आंसुओं की बातें हों, उनके मुस्कान की बातें हों। तो आज मेरी मानस पार्टनर कथा आपको कहानी सुनाएगी। करें कहानी शुरू। दोस्तों, मेरा नाम कथा है। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि किसी आर्मी वाले से शादी करूं। किसी फौजी की फोटो देखते ही एक जोश भर जाता था। ऐसा लगता था बस अब जो कुछ करना है फौज में जाकर ही करना है, फौज के साथ ही करना है। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ मेरे साथ तो नहीं होता ना। सेना और शौर्य की बातें सुनकर आप सब भी गर्व से भर जाते हैं ना। एक अलग सा जज्बा, एक जोश, एक ओज हमारे भीतर आ जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं अनहद आनंद मिलता है। बहुत से गाने ना, जैसे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे वतन के लोगों, ए वतन ए वतन। तो चलिए ना, क्यों ना आज इस मौके पर फिर से हम उस देशभक्ति के रंग में रंग जाएं और सुने इस सुंदर से गाने को।

दोस्तों, जब वीरगति पाने के बाद शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर आता है, तो क्या केवल उसके परिवार वाले रोते हैं? ये देखते हुए क्या आप दुखी नहीं होते? आप गमगीन नहीं होते? आपके भी आंसू बहते हैं ना? कितना खराब लगता है जब हम ये देखते हैं कि कुछ वीर शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, कोई छोटे से बच्चे को छोड़कर, तो कोई बूढ़े माँ बाप को रोता छोड़कर शहीद हो जाता है। उनका बलिदान कितना कुछ कहता है। हमेशा हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस माहौल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जुबां के हद से रिहा होकर हमारी आंखों से अता हो जाता है ना? बहते हैं ना हमारी आंखों से आंसू? क्या रिश्ता होता है उनका हमसे? क्यों वे हमारी सुरक्षा के लिए

अपनी खुशी, चैन, सुकून सब कुछ बलिदान कर देते हैं, और न जाने क्यों तिरंगे में लिपटे उन वीरों को देखकर हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है तो कुछ रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता है एक देशवासी का अपने फौजी से। कितना दुख होता है ना जब समझ में आता है जाते जाते भी शायद वे हमसे ऐसा कह रहे।

दोस्तों, आर्मी वाले से शादी करने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो सोचा चलो क्यों ना पत्रकारिता के जरिए उनसे जुड़ जाऊं, उनके लिए कुछ इस माध्यम से कर पाऊं। और अपने इस प्रोफेशन के जरिए अक्सर मैं उनके बीच जाती रहती हूँ, कहीं से आंसू तो कहीं से गम बटोर कर अपनी झोली में भरती हूँ। बहुत सी कहानियां हैं उन वीरों की, उनमें से बहुत सी कहानियां मेरे दिल के पास हैं, क्योंकि मैं उनके परिवारों में उनके साथ रही हूँ, उनके पास जाकर उनसे बातें की है। आज आपको उन कहानियों में से दो कहानियों से आपको मिलवाती हूँ। जी हाँ, मेजर अर्शदीप चोपड़ा और कर्नल दीक्षित के परिवार से आज आपको मिलवाना चाहूंगी, और मिलवाऊंगी मैं आपको हमारी मन्नू से। मन्नू, मनु, मानविका, मानू, बहुत सारे नाम है उसके, बड़ी प्यारी है वो। हाँ, बताऊंगी आपको उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको मिला देती हूँ मेजर अर्शदीप चोपड़ा से। एक बार मैं रिपोर्टिंग के लिए कहीं गई थी, वहां मेरा मिलना मेजर चोपड़ा से हुआ। 6 फीट हाइट, गोरे चिट्टे, जिंदा दिल, आकर्षक व्यक्तित्व। उनसे मैं बातें करने लगी, वो भी मुझसे बहुत सी बातें करने लगे। तब मैंने उन्हें कहा, सर, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बड़ी होकर आर्मी से जुड़ूं, आर्मी ऑफिसर से शादी करूं। सच बहुत प्रभावित होती हूं आप सबके जज्बे से। मैं बातें करती जा रही थी, उनकी तरफ देखा नहीं था, अचानक जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा शायद शायद मेरी किसी बात से उनको दुख पहुंचा है। मैंने कहा, सॉरी सर, अगर मैंने कुछ गलत कहकर आपको दुखी कर दिया है तो। नहीं नहीं कथा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, आज तुमने ये बात छेड़कर बहुत अच्छा किया। आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया, न जाने क्यों तुम मुझे अपनी अपनी सी लग रही हो। मेरी कोई बहन नहीं है, बनोगी मेरी बहन? सर, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस बात पर उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा, उनकी आंखों के आंसू मेरे माथे पर टपक गए। न जाने क्या था कि मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रुला दिया कथा? नहीं, भाई की आंखें रोएंगी तो बहन की आंखों तक तो आंसू पहुंचेंगे ना सर। कथा, भाई का है तो सर क्यों कह रही हो? अब उनके चेहरे की मुस्कान फिर लौटने लगी थी। तो इस बहन को नहीं बताएंगे ये उदासी किस लिए? शायद मैं किसी काम आ सकूं। अच्छा चलो, बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। वो देवदार का पेड़ है ना, मुझे बहुत सुकून देता है, वहां चलकर बैठकर बातें करें। जी भैया, जरूर। अच्छा, मेरे थर्मस में कॉफी है, निकाल लेती हूँ। पसंद है आपको कॉफी? हाँ, बहुत पसंद है। कॉफी का मग हाथ में लेकर भी बोले, पता है रूनू को भी मेरे जैसे कॉफी बहुत पसंद है। कहकर भी चुप हो गए, जैसे किसी सोच में डूब गए। लेकिन ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए थे। सर, नहीं नहीं भैया, रूनू कौन है? रूनू? कथा, रूनू मेरी बेटी है, मेरी और शुभा की बेटी, जो अब

साल की हो गई है। मैंने हमेशा चाहा था कि हमारे घर में ना एक प्यारी सी परी सी बेटी आए। वो आई, बहुत खुश थे हम दोनों। मैं उसकी नेपी सेंध करता था, उसे लोरियां गाकर सुनाता था। नन्ही परी सोने चली, ना जाने कितनी लोरियां। उसके उसके लिए मैं एप्पल मैश करता था, क्या क्या नहीं करता था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था मुझे। मैं और शुभा साथ में उसका हर काम करते थे। बिल्कुल एंजल सी लगती थी मेरी परी। उसके पास से मुझे हटने का दिल ही नहीं होता था। उसे मैं देखता ही रहता था और इंतजार था कि कब अपनी तोतली जुबान से वो मुझे पापा कहेगी। पर क्या भैया कथा, आज तक उसने मुझे पापा नहीं कहा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके समझदार होने पर मैं उसके साथ कभी नहीं रह सका। मेरी पोस्टिंग होती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहां। और एक बार मैं सरप्राइज देने के लिए उन लोग के सामने यूनिफॉर्म में चला गया। बहुत छोटी सी थी वो। मुझे यूनिफॉर्म में देखकर वो अपनी मम्मा के पीछे दुबक गई। पता नहीं ऐसा उसने क्या देख लिया था, क्या समझ लिया था कि यूनिफॉर्म से डरने लगी थी। मेरी परी मुझे देखकर डर गई थी। डरती है मेरी परी मुझसे। अभी तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ। काश कभी तो वो मुझे पापा कहे। ये कहते कहते अचानक एक कॉल भी आ गया था और उन्हें उठकर अचानक जाना पड़ा था। और आंसुओं के बीच इससे ज्यादा शायद अब वे और कुछ कह भी नहीं पाते। मैं समझ गई थी, उनके भीतर एक ऐसा गम है जिन्हें अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। मैंने एक निर्णय ले लिया था। इसके बाद मैं एक बार उनके कमरे में गई। मेजर चोपड़ा वहां नहीं थे क्योंकि उन्हें फ्रंट पर जाना था। टेबल पर एक डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कहानियों की डायरी जो तूने कभी नहीं पढ़ी मेरी रुनू। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू टपक गए थे। भाई, इन अधूरी कहानियों को अब मैं मुकम्मल करूंगी। एक बहन का वादा है फौजी भाई से। इस घटना के 3 महीने बाद मेजर चोपड़ा फ्रंट से अभी अभी बंकर में आए थे। गहरे घाव थे, दर्द था। अचानक उन्हें एक वीडियो कॉल आया। उस वीडियो कॉल में ऐसा क्या था कि उनका सारा डर चला गया? जी हाँ, उनकी रूनू कह रही थी, पापा पापा आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। मेजर चोपड़ा को लगा ये तो सपना है, लेकिन दोस्तों वो सपना नहीं, सच था। उनकी बेटी रूनू आज उनसे कह रही थी वो जो मेजर चोपड़ा सुनना चाहते थे, जो पापा सुनना चाहते थे अपनी एक बेटी से। पापा पापा, इस बार मैंने एनुअल डे पर आप रहेंगे ना हमारे साथ? मेरी मैम ने भी कहा है, दुश्मनों को याद दिला दी तुम्हारे पापा ने। मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, सचमुच आप कितने अच्छे हैं पापा। मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाऊंगी। और ना पापा, मुझे एक स्टोरी भी लिखनी है पापा के ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है पापा, मेरी स्टोरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है ना। जब मेरी बाकी फ्रेंड्स कहती थी ना अपने पापा के बारे में, पापा ऐसे करते हैं, पापा वैसे करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं अपने पापा के बारे में क्या कहूंगी। लेकिन अब मैं बताऊंगी, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, उनके पापा मेरे पापा जैसे नहीं।

मेरी परी, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मेरे लिए? आपके मुंह से पापा सुन रहा हूँ। फिर बोलो पापा, बोलो मेरी बच्ची, पापा कहो, कहो मुझे पापा। रूनू ने कई बार कहा पापा पापा पापा।

मेरे पापा, आई लव यू पापा। उनकी पत्नी शुभा के चेहरे पर भी खुशी थी, मेजर चोपड़ा की आंखों में खुशी के आंसू थे और एक प्रश्न भी था, आखिर ये हुआ कैसे? ये देखकर शुभा ने और रुनू ने कैमरे को कथा के चेहरे पर किया। मेजर सब समझ गए। रुनू ने कहा, पापा वैसे बड़ी अच्छी बुआ ढूंढी है आपने, बहुत क्यूट है कथा बुआ। कथा बुआ ने मुझे आपके बहुत सारे वीडियोस दिखाए, तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। कितना दुख दिया ना मैंने आपको, आई एम रियली सॉरी पापा। नहीं नहीं बच्चे, नो सॉरी। मेरा बच्चा अब तो खाली खुश रहने की बातें कर, मैं जल्दी आऊंगा अपनी परी के पास। अरे कथा, तेरी आंखों में आंसू क्यों बहना? भैया ये आंसू भी ना मौका नहीं देखते, दुख में भी बहते हैं और खुशी में भी, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं। मैं कैसे कुछ कहूं कथा, तुझे क्या कहूं, तूने क्या कर दिखाया मेरी बहन। सच अब कोई गम नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा तेरे लिए, कुछ कर सकता हूं? भैया रक्षाबंधन पर हिसाब बराबर कर लूंगी बहुत सा प्यार लेकर। सोचता हूँ अब अपनी बहन के लिए आर्मी ऑफिसर ढूंढ ही दूं। क्यों? नहीं भैया आप लेट हो गए, अब मैंने एक जर्नलिस्ट को ही पसंद कर लिया है। तो दोस्तों ये कहानी थी मेजर चोपड़ा की, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मंजर था उस दिन, हम सब बहुत खुश थे, मन में गाना जैसे बज रहा था, खुशियां ही खुशियां हो आंगन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियां

तो दोस्तों, इस कहानी के बाद आपको एक और फौजी परिवार में लेकर चलती हूँ। वहां भी हैं कुछ आंसू, कुछ मुस्कान। आइए, भावनाओं के सागर में डूबते हैं। ये कहानी है कर्नल दीक्षित, उनके प्रिंसिपल पत्नी जानवी और प्यारी सी बेटी मानविका की। मैं उसको आपकी कहानी बताऊं, उससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि मानू, मानविका, मन्नू, जी हाँ, वो खुद आपको अपनी कहानी कहे, आपसे सीधी बातें करें। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मानविका मुझे मिली कहाँ और कैसे मिली। बात तब की है जब मैं चैनल की ओर से एक इवेंट कवर करने के लिए नैनीताल जा रही थी। काठ गोदाम से बस में नैनीताल की ओर हम जा रहे थे। मैं मेरी सीट पर अकेली बैठी हुई थी, बहुत कम लोग थे उस बस में, और वो मेरी बगल वाली सीट पर अकेले बैठी हुई थी, हौले हौले मुस्कुरा रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी वो, न जाने क्या था उसमें जो मैं उसे देखने लगी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज के किशोर जब फोन की रील्स बनाने में व्यस्त होते हैं, ये लड़की प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए कितनी खुश हो रही है, कुछ लिख रही है। कितनी सुंदर लग रही है वो प्रकृति को वर्कों में उतारते हुए। उसके सलोने चेहरे पर सपने संजे हुए दो बड़ी बड़ी आंखें थी, गालों में डिंपल पड़ रहे थे। न जाने क्यों मेरा मन उससे बहुत सी बातें करने को होने लगा। अचानक

आगे जब बस रुकी, हम नीचे उतरे, उसने जूस लिया और मैंने चाय। पैसे देने के समय उसे पता चला कि उसका वॉलेट किसी ने निकाल लिया है। वो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, परेशान मत हो। मैंने उसके रुपए भी दे दिए। फिर हम दोस्त बन गए। हम एक सीट पर साथ में बैठ गए। बातें करते हुए नैनीताल पहुंचे। न जाने कितनी बातें, पहली बार मिले थे पर हमारे बीच इतनी सारी बातें आ कहां से रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। हम उम्र ना होकर भी हम बहुत करीब आ गए। इस बात से शायद और ज्यादा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। जी हाँ, हमारी मानू भी आर्मी बैकग्राउंड से है। कुछ समय पहले तक जो दो अनजाने थे, कितने अपने से हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम पहली बार मिले हैं। हमें पता चला कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास में हैं। उसके बाद कई मौकों पर हम मिलने लगे। मानू को मेरे मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद आती थी, तो जब भी मेरे घर खीर बनती, मम्मी कहती, मानू के घर खीर जरूर जाएगी। और मानू के घर जब भरवा बैंगन बनते, तो आंटी यानी मानू की मम्मा मुझे जरूर बुलाती। मैं मानविका से उम्र में कुछ साल बड़ी हूँ, पर वो अपनी सारी बातें मुझसे साझा करने लगी। मैं उसके लिए दोस्त, बहन, न जाने क्या क्या बन गई। वो कहती, कथा दी, मेरा कोई सिबलिंग नहीं था ना, इसलिए भगवान ने आपसे मिलाया। इसके बाद अक्सर वो कई बार मेरे स्टूडियो आ जाती, कई बार मैं उसे अपने साथ आउटडोर पर ले जाती। कभी कभी मैं भी उसके पापा के साथ आर्मी के किसी प्रोग्राम में चली जाती। जब वो ये कहती ना कि भगवान जी ने मुझे आपसे मिलाया, बड़ी प्यारी लगती। उसकी इस मासूमियत पर मैं उसका माथा चूम लेती। आप उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं? तो जानिए भाई, हक है आपका। तो क्यों ना मानू यानी मानविका से ही सुन ले आप कहानी, उसी की जुबानी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि डायरी लिखती है मानू, तो अब आगे की कहानी हमारी मानविका और उसकी डायरी के पेज ही आपको बताएंगे। मानविका डायरी में लिख रही है, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे पन्नों पर मेरे सभी जज्बात दर्ज हैं। जब मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी उल्टा सुल्टा लिखती थी, तो तुम्हारे पन्नों पर तब भी तो मैं लिखती थी, कभी कुछ ड्रॉ कर देती थी। आज तुम्हारे साथ अपने पापा को एक लेटर लिख रही हूँ। पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको उसी लेटर पैड पर लेटर लिखूं जो आपने मुझे मेरे सेकंड बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। पिंक बैकग्राउंड, गोल्ड एंड पिंक फेडीज वाला, जिसमें चिड़िया और परियां बनी हुई हैं। आपको याद है ना, मुझे हर चीज पिंक चाहिए होती थी। आइसक्रीम पिंक, ड्रेस पिंक, स्लीपर पिंक, शूज पिंक, हेयर बैंड पिंक। पापा, मेरे भाई नहीं है ना, तो आपको ही तो मैं राखी बांधती हूँ ना। पिछले रक्षाबंधन पर मैं आपसे गुस्सा हो गई थी, आपसे और मम्मा से, पता है ना क्यों? आप लोगों ने मुझे व्हाइट आइसक्रीम जो दे दी थी। लेकिन आप दोनों भी कम नहीं है, कुछ प्लान कर लिया था और आइसक्रीम में पिंक कलर डालकर उसे पिंक कर दिया था और मुझे खुश कर दिया। लेकिन मैं जानकर गुस्सा रहने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों का और ज्यादा प्यार मिलता। और तब आप दोनों मुझे प्यार करते हुए गाने पर मेरे साथ नाचने लगे।

मैं रोते रोते हंस दी थी। मुझे हंसता देखकर आप दोनों कितना खुश हो गए थे, जैसे आपके घर आने से मैं खुश हो जाती हूँ। पापा आपने कहा था ना जल्दी आओगे, कब आओगे पापा? जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पेरेंट्स डे आता है ना, तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। सबके पेरेंट्स आते हैं ना, आप नहीं होते। और पापा, हर संडे ना मेरी दोस्त ना अपने अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह पाते ना। पापा जब आप आएंगे ना, तब हम गार्डन में झूला झूलेंगे, आपके साथ मैं बाइक पर घूमूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके साथ क्या क्या करना है, जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा आप जहाँ रहते वहां गुड़िया मिलती है ना, मेरे लिए लाएंगे आप आंख मटकाने वाली गुड़िया? याद है बचपन में हम गाना गाते थे, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छा ठीक है पापा, मेरा 9th बर्थडे आने वाला है, आपने मुझसे वादा किया था ना आप मेरे बर्थडे पर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे बर्थडे को केवल कुछ ही दिन तो बाकी हैं। आप तो अपनी मन्नू को कभी दुखी नहीं देख पाते ना, याद है ना? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत हो, डोंट बी सैड। हाँ मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि ना अब मुझे समझ में आ गया है कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हमारे पास। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत से मन्नू हैं, अगर मेरे यानी मन्नू के पापा फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे तो उन सब मन्नू के पापा उनके पास नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ ना, वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप पढ़ लेना। हाँ और मम्मा ने ना मुझे वो गाना दिखाया था जिसमें चिट्ठी पढ़कर ना सारे सोल्जर्स ये गाना गाते हैं।

0: पापा, अब जो मुझे समझ में आया ना कि आप मेरे बर्थडे पर हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, तो कहना चाहती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। कोई बात नहीं है, मेरा बर्थडे मैं आपको वीडियो कॉल करके मना लूंगी, ठीक है? अच्छा पापा, आपको पता है आपकी मन्नू ने क्लास में टॉप किया है और कथक डांस में भी ना मैंने लेवल 1 कर लिया है। पापा, मैं भी आपके जैसे सोल्जर बनूंगी। और कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, अब तो जानते हैं ना आपकी मन्नू हर प्रोग्राम का हिस्सा होती है। आप सोचेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। पापा, मैं सोल्जर बन के परफॉर्म करने वाली हूँ अपने इस फेवरेट गाने पर, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। अरे पापा, आपको ये भी तो बताना है कि मम्मा ने मेरे ऊपर एक और कविता लिखी है, और जब भी मुझे याद आती है ना आपकी, मैं उदास होती हूँ ना, मम्मा मुझे गले लगाकर बहुत सा प्यार करती है, फिर एक नई कविता सुनाती है और फिर मुझे खुश कर देती है। आपको पता है आपके मन्नू भी ना मम्मा जैसे थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करने लगी है। आप आएंगे ना तब मैं आपको सुनाऊंगी मैंने क्या लिखा है। लगता है मम्मा कॉलेज से आ गई हैं। मुझे मम्मा से बहुत सारी बातें करनी, वो भी बहुत सी बातें बताएंगी, और मैंने जो कविता लिखी है ना मम्मा को पहले सुना देती हूँ। आप आएंगे तब आपको सुनाऊंगी। सॉरी पापा, चिट्ठी बीच में छोड़कर गई, लेकिन मम्मा को कविता सुनानी थी, मम्मा थक कर आई थी, उन्हें पानी देना था, ग्रीन टी बनानी थी। मैं ना धीरे धीरे किचन का काम सीख रही हूँ, जब आप आएंगे ना आपको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी, ओके? पता है पापा, मेरी कविता सुनकर मम्मा बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सा प्यार किया, मुझे कहा जूही की कली, चांद की किरण, पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा, आज मेरा 9th बर्थडे है, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, मम्मा मुझे आज गर्ल्स ऑर्फनेज लेकर जाने वाली हैं, हम ना गर्ल्स के साथ में वहाँ अपना बर्थडे मनाएंगे। पता है आज मैंने पहली बार नमकीन बिस्किट का स्नैक्स बनाया उन बच्चियों के लिए, और मम्मा ने केक घर पर बनाई है। उन्हें पता है ना मुझे मलाई वाली केक बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगती है ना? 2 केक बनाई है, एक हम ऑर्फनेज में काटेंगे और एक हम घर आकर वीडियो कॉल करेंगे आपको, तब काटेंगे। ओके पापा, अभी फिलहाल इतना, फिर बाद में बात करते, बाय। आज 1 महीने बाद आपको चिट्ठी लिखने का फिर से मन कर रहा है पापा। उस ऑर्फनेज की बच्चियों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन लोगों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, एक प्रेयर भी की थी, हमने उनके साथ बैठकर खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आपके साथ वीडियो कॉल पर बात करनी थी तो वो एक्साइटमेंट भी था। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, हमारा ड्राइंग रूम भी सजा हुआ था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा था अचानक। अरे मम्मा तो मेरे साथ गई थी, ये सब पीछे से किया किसने? और तभी सरप्राइजिंगली आप बाहर निकले थे, आपके साथ बहुत सारे आर्मी वाले अंकल भी आए थे। पापा, अपना वो बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती, मम्मा भी मेरा बहुत ध्यान रखती, लेकिन आपके आने से ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, एक अधूरापन खत्म हो जाता है। आप सबने कितना सुंदर डांस किया था, हम सब कितनी मस्ती कर रहे थे ना, कितना अच्छा लगा था हमें उस दिन।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू और

0: पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू।
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: सच्ची पापा, आई एम द लकीस्ट डॉटर। आप दोनों मुझे कितना प्यार करते हैं ना। एक दिन की छुट्टी मिली थी, आप मेरे लिए घर आ गए थे। कितना प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए। और आप लोगों ने मेरी गलती के लिए मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। याद है एक बार दादी हुई थी, उस दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, मैं मुंह फुलाकर बैठ गई थी और तब आपने मजेदार एक्टिंग करते हुए गाना सुनाया था, आलू कुचालू कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। मैं खिलखिलाकर हंस दी थी लेकिन भेल खाने की जिद पकड़ ली। दादी ने कहा, विश्वा बड़ा सिर चढ़ा लिया तुमने बिटिया को, इसे दूसरे घर जाना, इतने नखरे ना चलने वाले। और तब आपने कहा था, आसमान में उड़ेगी, आसमान की परी है हमारी बिट्टू, शादी करेगी तो करेगी, ना मन होगा तो ना करेगी। अरे अम्मा गुस्सा छोड़ो, चलो मोटर में बैठ के चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे। हम चौपाटी से भेल खाकर आ गए थे, बहुत मस्ती की थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं 13 साल की हो चुकी थी। दादी की इस बात ने मुझे बुआ की बात याद दिला दी जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी। भैया भाभी, आपके तो बस एक बेटी है, कैसे वंश चलेगा आप लोगों का। तब आपने कहा था, जिज्जी यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है, आप देख लेना जिज्जी, मेरे जैसे देश की सेवा करेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी मेरा। इसका नाम मानविका है लेकिन हम मनु कहते हैं, लक्ष्मीबाई का नाम मनु था ना, हमारी मनु हमारी राजकुमारी है, हमारा राजकुमार भी। मैंने उदास होते हुए पूछा, पापा मैं आप लोग का बेटा बन के पैदा क्यों नहीं हुई। बुआ कह रही थी ना, बेटे से वंश का नाम चलता है। तब आप दोनों ने मुझे प्यार से गले लगाकर नैनी वाली काकी के बेटे के बारे में बताया था। कितनी मन्नत के बाद उनके घर 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि उसने घर ही बिकवा दिया। पापा आपने मुझे आर्मी में जा रही लड़कियों के बारे में बताया, तो मम्मा ने मुझे वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें लड़कियों ने लड़कों को एजुकेशन में पीछे छोड़ दिया था। माँ ने अपनी एक कविता की लाइन के साथ मुझे गले लगाकर कहा था, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है। अपने आगोश में समाते हुए आपने मुझे कहा था, मेरा अभिमान है मेरी बेटी। कितना प्यार किया था तुझे।

मैंने आपको सल्यूट करते हुए कहा था, पापा आपकी तरह मैं भी देश की सेवा करूंगी। अगले हफ्ते आपको फ्रंट पर जाना था, 3 साल बाद आप घर आने वाले थे। जब आप आए, एनडीए का ब्रोशर लेकर आए थे, उसे देखकर मैं खुश नहीं हुई थी। बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। आपने एक बार कहा था ना, मन होगा तो शादी करेगी, ना होगा तो ना करेगी। लेकिन अब मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ, साथ में पढ़ने वाला एक लड़का मुझे अच्छा लगने लगा है। पढ़ाई में पहले की जैसे मन नहीं लगता, प्यार के गीत सुनने में अच्छा लगता है। अक्सर ये गाना मेरे दिल में बसता रहता है।

आप पहले आते थे ना, तो मैं आपके आसपास मंडराती रहती थी, लेकिन न जाने अब बहुत कुछ बदल सा गया मेरे भीतर। आप 3 साल बाद आए और मैं कमरा बंद करके बैठ गई, डायरी में रखा हुआ निशीत का कार्ड निकालकर देखने लगी, उसकी बातों को याद करने लग गई, भूल गई कि आप घर आए हैं। निशीत को फोन लगाकर बात करने लगी। मम्मा ने 2 बार आवाज दी। मैंने निशीत से कहा बाद में बात करेंगे, दरवाजा खोला और चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जल्दबाजी में मैंने डायरी में कार्ड वैसे ही छोड़ दिया। मम्मा कमरे में आई, मैं जब ड्रेसिंग से निकली मैंने देखा वो मेरी टेबल के पास से जा रही हैं, शायद उन्होंने वो कार्ड देख लिया था। मम्मा को चुप देखकर मैंने आवाज दी, मम्मा। उनके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे, लेकिन उन्हें वो वैसे ही लेकर चली गई। केवल इतना कहा, पापा खाने पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। कुछ देर में जब मैं खाने की टेबल पर पहुंची, आप दोनों हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं लग रहे थे। मुझे लगा था अब आप लोग एनडीए की बात करेंगे, या ऐसे ही किसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी कि आपने कहा था मानविका। आप आगे कुछ कहते उसके पहले ही मैंने कहा था, पापा आपकी मन्नू अब मानविका हो गई। हाँ बेटे, हमारी मन्नू बड़ी हो गई है, हम उसे बच्चा ही समझते थे, लेकिन अब मानविका बन गई है भाई वो। तुम पे कोई प्रेशर नहीं, तुम जो चाहो करियर चुनो। मैं कहना चाहती थी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, पर कह नहीं सकी। एक उदासी सी पसर गई थी घर में। रात को जब मैं अकेली हुई, मुझे लगा मम्मा कितनी दुखी हुई होंगी, पापा कितने दुखी हुए होंगे मेरे फोकस को हटे हुए देखकर, और वो भी टीनेजर बेटी के फोकस को हटे हुए देखकर। मैं आप लोगों के कमरे में आ गई थी, फिर से वही छोटी सी मन्नू बनकर आपकी गोद में सर रख कर रोने लगी थी, पापा आई एम अ बैड गर्ल। क्यों बेटे, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैंने आप लोग को दुखी किया है ना, लेकिन अब वही करूंगी जो आप लोग कहेंगे। मम्मा ने लाड़ से कहा, पल्ले मेरा बच्चा बड़ा सयाना हो गया। बच्चू तू हमें दुखी नहीं करना चाहती, पर हम ही गलत थे शायद, तुझे बेटी की तरह देखना ही बंद कर दिया था हमने, बेटा समझने लग गए थे। तेरी अपनी भावनाएं और इमोशंस है बेटी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तेरी डायरी पढ़ ली थी, कार्ड देख लिया था। तुझे भी तो हक है अपने जीवन में सपने देखने का, अपने राजकुमार के सपने देखने का। कब मिलवाएगी अपने राजकुमार से? ये बातें करते हुए हम कितने भावुक हो गए थे।

मैं आप लोग के साथ वहीं सो गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी 10 बज गए थे, रविवार था। मम्मा ने बैग टी देते हुए कहा, कथा का 2 बार फोन आ चुका है। चाय पीकर मैं अपने कमरे में गई। बालकनी में जाकर मैंने कथा दीदी को फोन लगाया, उन्हें सारी बातें बताई। कथा दीदी ने कहा, मानू मैं तो यही कहूंगी, तू प्रेम वेम के चक्कर में पड़ने के लिए भी बहुत छोटी है, इनफैटुएशन भी तो हो सकता है ना ये, और तेरे आर्मी में जाने के सपने का क्या जो तूने बचपन से पाल के रखा था। निशित अच्छा दोस्त है, उससे बात कर। कथा दी की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पापा अचानक आपको ज्वाइन करने जाना पड़ा था, मैं आपसे कुछ और बात करती उसके पहले ही मेरे कॉलेज से लौटने के पहले आप चले गए थे। मैंने जब निशित से कहा, उसने कहा था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। आपका लाया हुआ एनडीए का फॉर्म हाथ मिले मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मम्मा की चीख सुनी, उनके हाथ से फोन लिया। ज्ञानी अंकल कह रहे थे, भाभी तुरंत आप लोग पहुंचे। मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे, पर बहुत सुकून मिला था जब आपको पूरे होश में बात करते देखा। बाद में पता चला आतंकी हमले में आपका दायां हाथ घायल होकर बेकार हो चुका है। मैं लगातार रोती गई थी। आपने मुझे खुश करने की कोशिश में कहा, निशित कैसा है? जवाब में मैंने एनडीए का फॉर्म आगे कर दिया। पापा मेरा सपना तो ये है अब, मेरी मनु कहकर

आप अपने कटे हुए हाथ का गम भूल गए थे। इस बात को 6 महीने बीत गए। अगर मैं कभी उस आतंकी घटना का जिक्र करती, दुखी होती, तो आप कहते, क्या हुआ, फ्रंट पर नहीं लड़ सकता, ट्रेनिंग तो दे सकता हूं ना। और आपने सीना चौड़ा करते हुए कहा था, बेटा सैनिक की जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है, मैं कम से कम तुम लोग के साथ तो हूँ और पुरानी बातों को लेकर दुखी नहीं होते। याद है ना वो गाना।

हाँ पापा, जो बुरा है उसे याद नहीं रखना, जो अच्छा है उसे जीना है। आप लोगों ने कहा ना, मेरा सपना है आसमान में उड़ना। जी हाँ, अब मैं जूंगी अपने सपने को। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया, पता ही न चला। मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया। जिस दिन मेरा सिलेक्शन एनडीए में हुआ, आप कितने खुश थे, मम्मा कितनी खुश थी। मम्मा ने नारियल की बर्फी बनाई थी, वो एल्बम निकाले थे जिसमें मैं पंछी बनी हूँ, परियों जैसे उड़ रही हूँ। मैं बचपन में कहती थी ना, मुझे भी चिड़ियों जैसे उड़ना है, परियों जैसे उड़ना है। उसके बाद मैं देवलाली ट्रेनिंग पर गई थी। पापा, मैंने आपको बताया था ना, देवलाली ट्रेनिंग से लौटते वक्त मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रिमझिम बारिश को देख रही थी, कसारा घाट को देख रही थी, नीचे ट्रैक पर काम करते लोगों को देख रही थी, दरवाजे पर खड़ी सांप के जैसे मुड़ती हुई ट्रेन को देख रही थी, कैमरे में उस खूबसूरती को कैद कर रही थी। तभी अचानक अंदर से तेज आवाजें आने लगी थी। अंदर कुछ गुंडे पैसेंजर्स को परेशान कर रहे थे, सब डर कर चुप बैठे थे। मुझे अचानक लगने लगा, ये वही आतंकवादी जिनके कारण आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा था। मेरे अंदर की झांसी की रानी ने कहा, अगर आज मैं चुप रह गई तो आपका विश्वास टूट जाएगा और मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला सकूंगी। आपकी झांसी की रानी मन्नू ने तब सचमुच में झांसी की रानी बन करके वो लड़ाई लड़ी थी। उन गुंडों को मैंने छठी का दूध याद दिला दिया था। 1 महीने आप सबके साथ रहने के बाद मुझे ज्वाइन करने जाना था। प्लेन उड़ाते हुए मैं आपके सपने को जी रही थी, अपने सपने को जी रही थी, सोच रही थी, अगर मैंने इस सपने को छोड़ दिया होता तो कितना कुछ मिस करती मैं, कितना अधूरा सब कुछ रह जाता है ना। अब तो बस इंतजार है कि देश सेवा का बड़ा मौका मुझे मिले। मुझे और उड़ने जाना है तो मेरे साथ मेरी डायरी भी जाएगी, इसलिए मैं अब उड़ने जा रही हूँ। कथा दीदी से आगे आप कहानी सुने। जय हिंद।

अब गम नहीं। ये थी अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग सौरव घारू का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोक का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, दरहोरा, सिमई, खरसोता, परमेश्वरपुर, सतकोना, मेंड्रा, प्रेमनगर, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये कनकपुर, रामपुर, लुर्गी, महावीरगंज, पेंडारी, मेंढारी, कोटराही, मदनपुर, धंधापुर, उधवा कटरा, कुंदी कला, रेवतपुर, छलकू पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये असकला, दोरना, जरहाडी, जोरी, बिल्मा, रघुपुर, ढेकी डोली, नवापारा, गिरहुल डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, वन कोम्बो, सारंगडांड, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारूढाब, देवडांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 64 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये बैगामार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधी बहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये बंगूरसिया, चक्रधरपुर, धुमाबहाल, पूंजी पथरा, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, कमतरा, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, नवागांव, तालदादर, कौहा बहरा, छताल डबरा, मुरुम डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं। हाथियों से सामना

0: हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आप सुन रहे थे, अनुप्रसारित किया जा रहा था आकाशवाणी रायपुर से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। उदित नारायण की आवाज़ में जावेद अख्तर गीतकार हैं, संगीतकार हैं जतिन ललित।

फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म सिम्बा से अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज़ों में। रश्मि विराग गीतकार हैं, संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

फिल्म वीर ज़ारा का गीत अभी आपने सुना, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथ ही आवाज़ थी गुरदास मान की। जावेद अख्तर गीतकार थे, संगीतकार थे मदन मोहन। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म राजी से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं। फिल्म कभी खुशी कभी गम से उषा उत्थुप की आवाज़ में संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य।

आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं। फिल्म केसरी से बी प्राक की आवाज़ में मनोज मुंतशिर हैं, गीतकार संगीतकार हैं आरको।

फिल्म केसरी का गीत अभी आपने सुना बी पराग की आवाज़ में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 5:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत।

तो साथियों नमस्ते, आदाब, जय जोहार और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका युवा साथी मनीष, आपकी खिदमत में हमेशा तैयार। युवा जगत के आज के कार्यक्रम में मैं करता हूं आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल। मानिए ना मानिए दोस्तों, बिलासपुर की आज की शाम बारिश में धुलकर उतनी ही खुशनसीब हो गई है जितनी 15 अगस्त 1947 की एक शाम पहले थी। सभी के दिलों में धड़कन एक साथ आजादी का गा रही थी, सांसों में आजादी की महक और आंखों में अगले दिन भारत के नीले खुले आसमान में हमारा लहराता हुआ तिरंगा ध्वज। ठीक वैसे ही शाम आज की है, तो दोस्तों फिर इंतजार किस बात का। आइए चलते हैं और करते हैं हमारे इस कार्यक्रम का आगाज, जहां सुरों से सजती है हर महफिल, दीवाने होके थिरकते हैं दिल, सुरों के सबाब पर हर एक पे छाता है, जिसे सादगी से सुनने हमारा ये प्यारा बिलासपुर शहर आता है। दोस्तों आजादी सिर्फ तारीख नहीं, आजादी सिर्फ तिरंगा नहीं, आजादी तो वो चेतना है जो कहे मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आज की बात में हम याद कर रहे हैं उस महापुरुष को जिसने भारत की आजादी को केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि अपनी आत्मा की मुक्ति माना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज महर्षि अरविंद जी की, जिनके शब्दों में आग थी, विचारों में तूफान, भारत माता के लिए समर्पित था उनका हर अरमान। उन्होंने कहा, गुलामी केवल बेड़ियों के नाम नहीं, गुलामी तो उस सोच का नाम है जिसमें आजादी का पैगाम नहीं। 15 अगस्त 1872 को जन्मे अरविंद घोष ने विदेश में शिक्षा पाई, लेकिन दिल में बसाया भारत। भारत लौटे तो अंग्रेजी शासन की चमक नहीं, उन्हें दिखाई दी भारत की पीड़ा। उन्होंने युवाओं में चेतना जगाई, वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवादी पत्रों के माध्यम से निर्भीक विचारों की मशाल जलाई। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्र शिक्षा के आंदोलन को उन्होंने नई वैचारिक धार दी। उनका संदेश मानो आज के युवाओं से भी कहता है, जागो युवा समय पुकारे, देश तुम्हारे हाथ सवारे, कल का भारत कैसा होगा निर्भर है तुम पर आज तुम्हारा। महर्षि अरविंद के लिए स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर करना नहीं था, वे चाहते थे एक ऐसा भारत जो कि आत्मविश्वासी हो, जागृत हो और अपनी संस्कृति व शक्ति को पहचानता हो। और फिर आया 1908 का अलीपुर बम कांड, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। जेल की दीवारों के भीतर भी उनका चिंतन रुका नहीं, बाद में वे सक्रिय राजनीति से दूर होकर आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़े, लेकिन उनका राष्ट्रवाद और भारत के भविष्य का स्वप्न उनके विचारों में जीवित रहा। तो साथियों इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा जब आसमान में लहराए तो सिर्फ सलामी मत देना, अपने भीतर के भारत को भी जगाना, क्योंकि तिरंगा कहता है ऊंचा उड़ो और भारत कहता है आगे बढ़ो। और अरविंद की वाणी को याद करो, राष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाओ। युवा साथियों आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी रक्षा और उसके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस से पहले एक संकल्प लें, सोच में स्वतंत्रता, कर्म में ईमानदारी और दिल में भारत बसाएं, क्योंकि देश वही महान बनता है जहां युवा जागता है। भारत का भविष्य वही है जहां युवा भागता नहीं बल्कि अपने संघर्षों से जूझता है। तो इसी के साथ अब सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मैरी कॉम से।

तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे गाना फिल्म मैरी कॉम से, जिसे गाया है विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट ने, और संगीत है शशि सुमन का। तो इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की ओर, और लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा संदेश।

0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए। आपकी रक्षा में पूरी।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवा

0: आते हैं, और बहुत जरूरी चीज़ें होती हैं कि वो इसके बारे में इन्फॉर्म रहें और थोड़े अवेकन भी रहें। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें पहले चेंजेस होती हैं आप हमें ये बताएं।
1: जी मनीष, प्यूबर्टी को लेके शरीर पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि लड़कों और लड़कियों पे कुछ अलग होते हैं। बट जो कॉमन चेंजेस है वो ये हो सकता है कि लड़कों में आवाज़ भारी होना और उसी प्रकार लड़कियों में आवाज़ का पतला होना, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जन्नांगों का बड़ा होना, मूंछों का आना, दाढ़ी का आना, अंडर आर्म्स से बालों का आना और लड़कियों पे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, ये सारी चीज़ें होती है जो प्यूबर्टी के बाद देखी जाती है।
0: जी सर, और युवावस्था का जो पहला चरण जो हमारा टीनेज अवस्था है, और उस दौरान हमारे बहुत सारे हार्मोन्स और शरीर में बहुत सारे बदलावों के कारण एक आपस में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होना, ये भी एक आम हो जाता है।
1: जी जी बिल्कुल, ये सारा कुछ आपके हार्मोन्स की वजह से ही होता है, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है।
0: तो सर, इसी हार्मोनल चेंजेस, या फिर जिसे हम अपनी फिल्मी भाषा में केमिकल लोचा भी कहते हैं, तो इस केमिकल लोचा को संभालने के लिए, और जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसमें हमारे बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत सारे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्या होता है कि हार्मोन्स पे चेंजेस सडन हो रहे हैं, तो हार्मोन्स में सडन चेंजेस की वजह से आपके बिहेवियर पे चेंजेस, जैसे कि छिड़छिड़ापन या शॉर्ट टेम्परनेस होना या बातों बातों पे पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है।
0: जी, तो और इसी तरह अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन भी होना
1: बिल्कुल
0: इसमें शामिल है।
1: बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी और इंटीग्रल पार्ट है इसका।
0: जी
1: हार्मोन्स की वजह से अट्रैक्शन होना बहुत कॉमन चीज़ है।
0: जी तो जिस तरह प्रकृति ने हमें ये सब चीज़ें हमें वरदान के रूप में भी दिया है, अगर उसे हम सही डायरेक्शन में अगर लेके जाएं और उसे सही तरीके से अगर हम लोगों को एजुकेट करें, तो ये हमारे लिए कितना ही अच्छी बात भी हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो इससे लेकर बहुत सारे मिथ्स होते हैं, लोगों के मन पे डाउट होता है, वो सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और आज हम उसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं।
0: जी सर, जब मैं युवावस्था में से आने से पहले, जब मैं भी टीनेज अवस्था में था, तो एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब चीज़ें मेरे साथ भी हुई, तो उस वक्त हम होता ये है कि हम अपने किसी बड़े भैया या फिर किसी अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं। तो कभी कभी ये जो सलाह और मशवरा, क्योंकि उस वक्त उन्हें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, और उसके कारण हमें कई सारी भ्रांतियाँ को हम क्या बोलते हैं एक्सेप्ट करने लगते हैं, और बाद में वो जाकर एक भयानक डिजास्टर या फिर हमारे जो फिजिकल क्या बोलते हैं कोई डिसऑर्डर के रूप में भी या फिर कुछ बीमारियों के रूप में भी जन्म ले लेती हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए और इनसे कैसे आज हम जाने, यह इसके बारे में आप हमें बताएं।
1: बिल्कुल, तो जैसे कि आपने सुना, प्यूबर्टी के बाद बहुत सारे शरीर पर बदलाव आते हैं। इन बदलावों पे जैसे अपोजिट जेंडर को लेकर अट्रैक्शन है, उसके साथ साथ लोग सेक्सुअली एक्टिव भी होते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती है। तो आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपके लिए सेफ़ है, क्या चीज़ें सेफ़ नहीं है, तो हम इसी के बारे पर चर्चा करेंगे।
0: सर, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये STI और STD क्या होते हैं, और युवाओं को इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है।
1: STI और STDs एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, या जिसे हिंदी पे हम यौन संचरण बीमारियां भी कहते हैं, और STIs जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, ये सेक्स के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं।
0: सर, तो क्या हर STD के लक्षण दिखाई देते हैं, या कभी-कभी व्यक्ति को संक्रमण होने के बावजूद भी पता नहीं चल पाता?
1: मनीष जी, इसके बारे पे हम एक वर्ड बोलना चाहेंगे जिसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो समय होता है जब व्यक्ति पहली बार इन्फेक्ट होता है, और इन्फेक्ट होने के बाद जब उसके शरीर पे बीमारी के लक्षण दिखने शुरू होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हो सकता है, ये 3 दिन से लेकर 90 दिन तक भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फेक्ट हो रहे हैं उसके तुरंत बाद आपको बीमारियों के लक्षण दिख जाए, कभी कभी ये कई महीने के बाद भी आपके शरीर पर दिखते हैं।
0: बोल
1: हम
0: देता
1: आपको
0: हूँ।
1: लक्षण बताते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन STD जो होता है HPV, HPV पे आपको गुप्तांगों पे मस्से दिखते हैं। ये मस्से स्किन कलर के भी हो सकते हैं या हल्के से सफ़ेद रंग के हो सकते हैं, और यूजुअली इन पे कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, जैसे कि इन पे खुजली नहीं होती है, इन पे दर्द नहीं होता है, जस्ट ये मस्से होते हैं। इसी प्रकार मोलस्कम कंटाजियोसम के इन्फेक्शन पे आपको गुप्तांगों पे सफ़ेद रंग के दाने दिख सकते हैं, और ये भी यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि इनके साथ कोई भी लक्षण एसोसिएटेड नहीं रहता है। इसके बाद अगर हम दूसरे STDs देखें, जैसे कि आपके सिफिलिस हो गया, आपका क्लेमाइडिया या और भी STDs, इनमें आपको गुप्तांगों पे छाले या छालों के अलावा आपको गुप्तांग में दाने भी दिख सकते हैं, जो कि यूजुअली पीरियड पेन के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है, बट कुछ कंडीशंस पे ये पेनफुल भी हो सकता है।

0: एट द सेम टाइम हर्पीज पे आपको गुप्तांगों पे छाले दिखते हैं जो कि तेज जलन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कभी कभी ये पानी भरे फोड़े के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं। अभी हम आते हैं गोनोरिया पे। गोनोरिया में आपको गुप्तांगों में पानी का आना जो कि सफ़ेद रंग का पानी होगा और पानी से तेज बदबू आएगी। कभी कभी ये पानी थोड़ा अमाउंट पे हो सकता है, कभी कभी ये पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इस प्रकार के रिसाव हो सकते हैं गुप्तांगों से।
1: बिल्कुल सही कहा सर। और जब वो एसटीडी की लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो सबसे पहला रिस्पॉन्स जो हमारा रहता है वो पैनिक का ही होता है। और ऐसे में जब हम अपने किसी अपने दोस्तों को या फिर अपने बड़ों को जब हम इसके बारे में बताते हैं तो उसके बारे में हमें सही जानकारी भी नहीं मिल पाती है। तो हमें किस तरह इस गलतफहमियों या फिर जितने भी हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कौन कौन से है और उन्हें दूर करना भी ज़रूरी है।
0: एसटीडीज से रिगार्डिंग, सबसे पहले तो अगर आपके गुप्तांग पे कोई लक्षण दिख रहा है एसटीडी का या कोई भी छाल या किसी भी प्रकार का रिसाव है तो घबराए नहीं, सबसे पहले शांत हो जाएं। शांत होने के बाद जो कंसर्न सलाहकार हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लें। कभी भी एसटीडीज के लिए आप किसी अनऑथोराइज पर्सन या किसी सीनियर्स के पास या किसी क्वैक्स के पास ना जाएं, हो सकता है ये आपकी बॉडी को बुरी तरीके से हार्म कर दे।
1: तो सर, इन एसटीडी से बचाव के लिए युवाओं को किन सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहारों को भी अपनाना चाहिए?
0: जी मनीष जी, जैसे एसटीडीज एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे प्रकार की बीमारियां होती है जो आपके बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से भी हो सकता है। इनमें जो मुख्यतः जो कॉमन एसटीडीज हैं वो आपका है एचपीवी वायरस से इन्फेक्शन, जो कि हमें जननांगों पे मस्से के प्रकार पे दिखता है, मोलस्कम कंटाजियोसम। इसके बाद आपका होता है हर्पीज, हर्पीज के बाद सिफिलिस, गोनोरिया। एचआईवी भी एक प्रकार का एसटीडी ही है। इसके साथ साथ आपका हेपेटाइटिस बी और सी, ये भी एसटीडीज के अंदर ही आते हैं।
1: जी, तो यानी कि इतनी सारी बीमारियां हैं जो कि इन सब एसटीडीज के अंदर आती हैं और इनसे हमें अवगत होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीष जी, तो क्या होता है कि जैसे कि हमने सुना कि एसटीडीज के लक्षण तुरंत ही नहीं आते हैं, कभी कभी हो सकता है कि ये लक्षण दिखे भी ना और हो सकता है कि बड़े बीमारी के रूप पे कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको रूटीनली हेल्थ चेकअप लेना चाहिए, जैसे कि आप हर 6 महीने से 1 साल के बीच पे सेक्सुअल हेल्थ चेकअप ले सकते हैं और आपको प्रिकॉशंस भी यूज करने चाहिए।
1: और ये प्रिकॉशंस क्या-क्या हो सकते हैं?

0: क्या क्या हो सकते हैं?
1: तो मनीष जी, एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम जो प्रिकॉशन होता है, जो स्टिग्मा और टैबू इस वर्ड के साथ एसोसिएटेड है, वो है कॉन्डोम।
0: जी
1: ये एक प्रकार का बैरियर मेथड होता है जो आपके एसटीडीज को आपके पार्टनर को फैलने से रोक सकता है, और ना ही आपके पार्टनर को अपितु ये आपको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एसटीडीज से।
0: जी यानी कि एक सुरक्षित कदम हमें भविष्य में होने वाली बहुत सारी ढेर सारी बीमारियों से बचा सकता है, और जो मानसिक तनाव जिससे हम स्टडी में जो प्रभावित होते हैं उनसे भी ये हमें एक सुरक्षा दे सकता है।
1: बिल्कुल मनीष जी, जैसे हम जानते हैं कि सारी एसटीडीज के लिए टीका उपलब्ध नहीं है, हमारे पास जस्ट कुछ ही बीमारियां हैं जिनके लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन कॉन्डोम एक ऐसी चीज है जो आपको लगभग सारे प्रकार के एसटीडीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे पे चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे पे डिस्कशन होना चाहिए और ये यूज भी करना चाहिए।
0: तो सर, जिस तरह भी हमने एसटीडीज के बारे में भी आपसे बात की, एक और एक सोशल टैबू या फिर जैसे स्टिग्मा है जिसके बारे में बहुत सारे हमारे भ्रांतियां हैं, तो आप हमें यह बताएं कि क्या मास्टरबेशन भी करना क्या सही होता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी तो मनीष, इसके बारे पे आइए डिस्कस करते हैं। मास्टरबेशन करना कोई गलत बात नहीं है, बस ये आपको ध्यान पे रखना है कि कोई भी चीज़ अधिक में करना शरीर के लिए नुकसानदायी होता है, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, लेकिन ये कोई बुरी चीज़ नहीं है।
0: अच्छा सर, अगर हमें एसटीडी अगर हो जाए तो क्या उसका इलाज भी संभव है?
1: जी, सामान्यतः जितनी भी एसटीडीज होती है सबके काफ़ी कारगर इलाज संभव है, बट कुछ एसटीडीज होती है जिनको पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन दवाइयों के सहारे आप बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं।
0: सर, हमने कई बार ये देखा है कि जब हम कभी इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं तो हमारे एक टैबू या फिर शर्म या सामाजिक डर के कारण डॉक्टर से हम बात करने से हिचकिचाते हैं और मेडिकल असिस्टेंस लेने से भी घबराते हैं। तो ऐसे में कई बार हम जो सड़क किनारे जो दवाई व उपचार के विज्ञापन देखते हैं तो हम उनके प्रति ही चले जाते हैं, तो उनसे हम कैसे बचें और इस तरह की भ्रांतियों को कैसे तोड़ें सर?
1: जी, तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो कि किसके पास आपको जाना है। अगर आपको गुप्तांग पे कोई भी रीजन दिख रहे हैं, कोई भी प्रकार का संक्रमण दिख रहा है, तो उसके लिए आप हमेशा त्वचा रोग विशेषज्ञ, जो कि गुप्त रोग और यौन रोग के उपचार के लिए विशेषज्ञ होते हैं, उनसे सलाह करें, संपर्क करें।
0: सर, आपके पास तो ऐसे क्लिनिक में बहुत सारे केसेस आते होंगे जो जिन्होंने पहले कहीं बहुत जगह दिखाया होगा और थक हारने के बाद आपके पास आते होंगे, उनके बारे में भी आप हमें कुछ शेयर करें।
1: बिल्कुल मनीष जी, ऐसा ही एक केस कुछ दिनों पहले हमारे पास आया था। उस इंसान को गुप्तांग में मस्से थे और गुप्तांग के मस्सों का इलाज बहुत कारगर और बहुत अच्छा होता है, और एक से दो बार पर ही गुप्तांग के सारे मस्से ठीक हो जाते हैं। तो उस इंसान ने क्वैक के पास जाकर लगभग 10 से 20 हज़ार खर्चा किया और उसको कोई राहत नहीं मिला, मोर ओवर उसका लीजन और बढ़ गया।
0: जी
1: तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो कि किसके पास आपको जाना है। अगर आपको गुप्तांग पे कोई भी रीजन दिख रहे हैं, कोई भी प्रकार का संक्रमण दिख रहा है, तो उसके लिए आप हमेशा त्वचा रोग विशेषज्ञ, जो कि गुप्त रोग और यौन रोग के उपचार के लिए विशेषज्ञ होते हैं, उनसे सलाह करें, संपर्क करें।
0: तो सर, आपसे हमने बहुत ही एक महत्वपूर्ण चर्चा की उस विषय में जो कि हमारे युवाओं से बहुत जुड़ा हुआ है और जो कि हमारे स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है, और जिसका अगर हमें नॉलेज ना हो तो इसके कारण हमें बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो सर, इसी के साथ हम आ चुके हैं कार्यक्रम के अंत में, और अब हम जानना चाहते हैं आपसे आपका हमारे युवाओं के लिए संदेश।
1: जी, तो मनीष, जैसे हम बाकी बीमारियों के बारे पे अवेयर होते हैं, उसके बारे पे कंसर्न्ड होते हैं, उसी प्रकार हमारा सेक्सुअल हेल्थ या यौन स्वास्थ्य भी हमारे जीवन का एक अभिन्न और अहम पहलू है। इसके बारे में बात करनी चाहिए, ये कोई टैबू और स्टिग्मा नहीं है, और अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो इसे आप इग्नोर ना करें और शांत होकर दोबारा सोचें कि क्या है क्या नहीं है। और इसके साथ ही साथ जो भी आपके नियर बाय स्किन स्पेशलिस्ट या यौन रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे संपर्क करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। घबराए नहीं, यौन रोग भी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, इट्स जस्ट कि आपको टाइम पे प्रेजेंट करना पड़ेगा।
0: जी, तो इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपसे मुलाकात होगी किसी और क्रम में।
1: जी, थैंक यू मनीष जी।

तो दोस्तों आज की शाम ढलने तो दोस्तों आज की शाम को ढलने देते हैं और लेते हैं देशभक्ति का खुमार। हमारा और आपका साथ ऐसे ही रहे बरकरार, जिम्मेदार युवा बने, सशक्त युवा बने और हिंदुस्तान को विश्व पटल में सबसे आगे लेकर जाए, क्योंकि युवा है तो हम सब कुछ है। इसी के साथ हम सुनते हैं अब हमारा अगला गीत।

भारत माँ के आगे हम सभी हैं नतमस्तक, उनके चरणों में ही कुर्बान है ये सारा जहान, और ऐसे ही आगे हजारों वर्षों तक शीर्ष पर रहे ये हिंदुस्तान। इसी के साथ दीजिए अपने साथी मनीष को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।

कार्यक्रम युवा जगत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं। आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी आपसे साझा कर लेते हैं कार्यक्रम विवरण में। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश आप सुनेंगे। आज शाम 7 बजे अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से, और इसके बाद आप आनंद लेंगे।

कार्यक्रम ग्राम सभा का, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण की सुविधा और स्वतंत्र भारत में आत्मनिर्भर किसान। और आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, जिसमें दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान से बछिया कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बिलासपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय अग्रवाल ने। कार्यक्रम का संचालन करेंगे मांगू भैया। ईमेल करें, गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम रूपक, लहरें तिरंग ध्वज अपना, आलेख वचन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, संगीत संयोजन श्री मनीष दत्त का, और गायक कलाकार होंगे काव्य भारती कला संगीत मंडल से। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:15 पर हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। कल प्रातः 6:05 पर कार्यक्रम आराधना सुनेंगे आप। 6:30 पर कार्यक्रम खेती की बात। सामूहिक सुझाव में कल का विषय होगा मिर्चा के उन्नत खेती, वाचक होंगे नंद कुमार यादव। 6:35 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। 6:45 पर कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में कल का विषय होगा आदमी और भौतिक संसाधन, आलेख होगा सुरेश तिवारी का। सुबह 7 बजे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण सुनेंगे आप। अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। और 8:30 पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश, अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी रायपुर से। कल सुबह 10 बजे देशभक्ति गीत आप सुनेंगे चतुर राम साहू और साथियों की आवाज़ों में, और जीडी मानिकपुरी और साथियों की आवाज़ों में कार्यक्रम अमराई में। नए फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे आप कार्यक्रम नए तराने में सुबह 10:30 पर। और विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम रिले करेंगे सुबह 11 बजे। कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, और उसके बाद पुलिस परेड ग्राउंड बिलासपुर में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे कल शाम 5:05 पर। प्रस्तुतकर्ता होंगी मोनाली ठाकरे, संयोजन होगा डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का, और रिकॉर्डिंग सहयोग होगा पवन थवाइत और माइकल एक्का का। कल रात्रि 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित समारोहों की समन्वित रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित की जाएगी कल रात्रि 8:15 पर। ईमेल करें, गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5:35 पर और 6:20 और 7 बजे भी। 9:15 पर हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।

0: अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। पहले सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। काली मनाए जाही 80वां स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री ह लाल किला मा तिरंगा झंडा फहरा के देश लकर ही संबोधित। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आए, ये मौका मा देश ह विभाजन के बेरा अपन प्राण गवैया मन ल देवत हे श्रद्धांजलि। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ह अबले थोरकिन देर बाद संझा 7 बजे देश के नाव संबोधन करही।

0: अब समाचार विस्तार ले। काली हमर देश ह 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाही। ये मौका मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला मा तिरंगा झंडा फहरा के देश ला संबोधित करही। एति छत्तीसगढ़ मा स्वतंत्रता दिवस के मौका मा राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड मा आयोजित करे जाही, जिहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तिरंगा फहरा के परेड के सलामी लिही। उहे बिलासपुर मा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग मा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बस्तर मा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा झंडा फहराही। एति विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव मा ध्वजारोहण करही। प्रदेश के आने आने जिला मुख्यालय मा मंत्री सांसद और विधायक मन झंडा फहराही और सबो मन मुख्य अतिथि मन ये मौका मा मुख्यमंत्री के संदेश वाचन करही। बता दन की स्वतंत्रता दिवस समारोह ले पहली खेल और युवा कल्याण विभाग डहर ले आज आने आने जिला मा स्वतंत्रता दौड़ के आयोजन करेगी। इही बीच छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड हा राज्य भर के जम्मो मस्जिद दरगाह और मदरसा मन मा घलो तिरंगा फहराए के अपील करीस है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राजा बताइन कि 15 अगस्त के पर्व देशभक्ति एकता भाईचारा और संविधान के प्रतीक सम्मान के संग मनाया जाना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौका मा विधानसभा भवन काली नागरिक मन बर बिहनिया 10 बजे ले संझा 5 बजे तक खुले रही। स्वतंत्रता दिवस के मौका मा राज्यपाल रमेन डे कहा प्रदेशवासी मन ला शुभकामना देइन हे। ओमन देश के स्वतंत्रता बर अपन सर्वस्व न्योछावर करैया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के रक्षा करत शहीद होए वीर जवान मन ला नमन करिन हे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संझा देश के नाव संबोधन करही। राष्ट्रपति के संबोधन अबले थोरकिन देर बाद संझा 7 बजे आकाशवाणी के सबो राष्ट्रीय चैनल मा प्रसारित करे जाही। एहा दूरदर्शन के सबो चैनल मा हिंदी मा प्रसारित होही, जेखर बाद एकर अंग्रेजी संस्करण घलो प्रसारित करे जाही। हिंदी अंग्रेजी मा संबोधन के प्रसारण के बाद एकर क्षेत्रीय भाषा मा प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल मा करे जाही। केंद्र सरकार हा स्वतंत्रता दिवस के मौका मा पुलिस अग्निशमन सेवा होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के संग सुधार सेवा के 1057 कर्मी मन ला वीरता और सेवा पदक दे बर घोषणा करे हे। गृह मंत्रालय आज वीरता पुरस्कार के 301 पदक मन के सूची जारी करी से एमा पुलिस कर्मी मन बर 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मी मन बर 29 पदक शामिल हे। छत्तीसगढ़ पुलिस के 141 अधिकारी मन ला वीरता पुरस्कार ले सम्मानित करे जाही। प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मा बर ये जवान मन के प्रदर्शन और साहस के सेती ये सम्मान दे जाही। ऐसो देश भर में सबले ज्यादा वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ पुलिस ला मिलत है। एकर अलावा पुलिस उप महानिरीक्षक मोतीलाल कोटवानी ला उखर विशेष सेवा बर राष्ट्रपति पदक प्रदान करे जाही। संगे संग राज्य के 10 जन पुलिस अधिकारी मन ला घलो उखर सहरौक सेवा बर राष्ट्रपति पदक ले सम्मानित करे जाही। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अगुवाई में मुंगली जिला के लोरमी इलाका के गांव और नगर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। मोटरसाइकिल ले निकाले गए ये तिरंगा यात्रा लोरमी के पुराना बस स्टैंड ले शुरू होके दाव कापा पहुंची। उन्हें नगर में मानस मंच ले शुरू हुए तिरंगा यात्रा मुंगली चौक हटरी चौक नवा बस स्टैंड और पुराना बस स्टैंड ले होके गुजरीस। ये दौरान श्री साव स्वतंत्रता सेनानी और वीर शहीद मन ला नमन करत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण मा हर नागरिक के भागीदारी के संकल्प लेन। उन्हें तिलदा की तिरंगा यात्रा में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुई। ये बेरा ओमन तिरंगा के महिमा और देश के गौरवशाली इतिहास ल सोरियावत कहिन कि तिरंगा के हरा रंग शांति खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक आए। उन्हें अशोक चक्र सरलक प्रगति के संदेश देते तिरंगा हमर एकता और अखंडता के प्रतीक है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।

0: अब आगुबार्थन बांची समाचार को ती आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आए। ये मौका मा देश हा बछर 1947 के विभाजन के बेरा अपन प्राण गवैया और पीरा झेलैया जम्मो लोगन ला श्रद्धांजलि देवत हे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौका मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा विभाजन ले प्रभावित सबो लोगन के साहस ला सुरता करिन। सोशल मीडिया पोस्ट मा प्रधानमंत्री हा कहिन कि हमन विभाजन ले प्रभावित सबो लोगन के साहस ला सुरता करथन। इतिहास के वो क्षण जेहा कतकोन जिंदगी ला तहस नहस कर दिस, अपन सगा संबंधी दुरियागे और असहनी पीरा घलो सहल परिस। श्री मोदी हा कामना करिन कि ये दिन हा हमर देश मा सद्भाव और भाईचारा ला बनाए रखे के संकल्प ला और मजबूत करही और हम सब मिलके विकसित भारत निर्माण के दिशा मा आगू बढ़बो। एति छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग डहर ले आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौका मा राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन करेगी। राजधानी रायपुर मा आयोजित कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होइन। ये बेरा मुख्यमंत्री ह घलो विभाजन के पीरा ला सोरियाइन। कार्यक्रम ला प्रख्यात फिल्मकार और अभिनेता चंद्र प्रकाश द्विवेदी ह घलो संबोधित करीन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सुरक्षा बल के क्राइम ब्रांच रायपुर और नागपुर के टीम हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस ले करीबन 1,96,00,000 रूपया के विदेशी सोना बरामद करे है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच नागपुर ला मिले सूचना के आधार मा रायपुर और नागपुर के टीम हा डीआरआई के संग मिलके रेलगाड़ी मा जांच अभियान चलाइस। इही बेरा भंडारा और नागपुर के बीच रेलगाड़ी के B12 कोच मा 2 संदिग्ध यात्री पकड़े गिन। तलाशी के बेरा उनखर तीर ले करीबन 1,242,000 विदेशी सोना बरामद होइस, जेमा 7 सोना के बिस्कुट और 1 सोना के छड़ मिलिस। उत्तराखंड के चमोली जिला मा निर्माणाधीन मायापुर पीपल कोटी टनल मा काली संझा कुन अचानक पानी भरे ले छत्तीसगढ़ और झारखंड के 7 मजदूर मन की मौत होगीस। उन्हें टनल ले 22 मजदूर मन ला सुरक्षित निकालेगीस। हादसा मा 11 घायल बताए जावत हैं। इमा झारखंड के 5, बिहार के 2, छत्तीसगढ़ के 2, पंजाब और हिमाचल के 1 मजदूर शामिल हैं। 6 मजदूर अभी घलो लापता बताए जावत हैं। इति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चमोली के सुरंग हादसा में श्रमिक मन के मौत पर दुख जताई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू हा नगरी प्रशासन और विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा के खिलाफ करीबन 1500 पन्ना के चालान रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश करीस। मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा ऊपर बछर 2019 ले 2023 के दौरान पद के दुरुपयोग और कथित अवैध कमीशन के रूप में फायदा पाए के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत ले आने आने नगरी निकाय में निविदा कारज देवाए बर और बिल के भुगतान के एवज में कथित 25% कमीशन के मांग करे गए रहिस। ईओडब्ल्यू की जांच में कुल 1,76,00,000 रूपया ले ज्यादा के फायदा पाएगीस। वे जसपुर जिला के कुनकुरी में 21 बछर जुन्ना चाउर घोटाला में ईओडब्ल्यू है करीबन 40,000 पन्ना के चालान जसपुर के विशेष न्यायालय में पेश करी से। ये मामला मा बछर 2005 मा कुनकुरी के छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के गोदाम में भंडारित चाउर के कमती ले जुड़े है। जांच मा गोदाम के वास्तविक स्टॉक और अभिलेख मा दर्ज चाउर के मात्रा मा भारी अंतर पाएगीस। विस्तार ले जांच मा गोदाम मा 22,198 क्विंटल ले ज्यादा चाउर के वास्तविक कमी निर्धारित करेगी। एकर ले सरकार ला करीबन 2,50,00,000 रूपया ले ज्यादा के आर्थिक नुकसान होना पाएगीस। और आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। काली मनाए जाही 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री लाल किला मा तिरंगा झंडा फहरा के देश ला कर ही संबोधित। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। ये मौका मा देश सा विभाजन के बेरा अपन प्राण गवैया मन ला देवत है श्रद्धांजलि। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा अबले थोड़किन देर बाद संझा 7 देश के नाव संबोधन करही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: ईएम आकाशवाणी
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनाते हैं फिल्म

हम सब उस्ताद हैं से किशोर कुमार की आवाज़ में, असद भोपाली गीतकार हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाड़कर, सरिता प्रिंस एकांश गौहाड़कर, सेक्टर 67, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल राजेश, पटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रम मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्जाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय, हैप्पी राय, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, काले गांव जफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली और सरवद देशमुख का भी हमें ईमेल आया है, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, कर्मा चौक लोहारी डी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरो मन, पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, नरवेला महाराष्ट्र से पी एस नौहरकर, निर्मला, विशाल नौहरकर, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा ने भी हमें ईमेल किया है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने, अभी आप सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म लक्ष्य से शंकर महादेवन और सोनू निगम के साथ में हरिहरन की आवाज़ों में। जावेद अख्तर गीतकार हैं, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय, और इस गीत के लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और माया कुमार ने। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और कमरजीत कौर। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली, पूर्वेश साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कीर्ति, परी, स्वाति और प्रयाग चौधरी। बाग बहरा बदरसी से पन्ना लाल सेन, खुशी तारा, कौशल सेन, फर्जी फजीलका। पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लाड्डी, चलानी, तिवांशी, वाणी और आरवी खेरा ने। पांडर कौड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी कश्मीरा, सोमाय राय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा। जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़ और कमल साहनी ने। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवा राम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश, नेहा, वान्या सिंगरौल। पैठर से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, जिया जाधव। पुरानी भिलाई तीन चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जीशान अहमद, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुकर और आरव के साथ में है अर्पिता। बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल। रजौनी जिला महोबा बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग। भूत कछार लुरमी से दुर्ग

मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव और देवशंकर जमादा, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सुनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, दिल्ली से बाल लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून का भी हमें ईमेल आया है, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्वा सिंह, अनुपम राकेश, नागर कोहरा, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुनी देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रुपेश सिंघई, महेश प्रज्ञेश, प्रीतेश सिंघई, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्वनी, अमरदीप, पशुपति, टीकू मुस्कान, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, ओम प्रकाश सुरलकर, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी का भी हमें ईमेल आया है, सहारनपुर से आशु का भी हमें ईमेल आया है, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाविया, आरव और एसपी पप्पी, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन का भी हमें ईमेल आया है। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, जिसके लिए हमें फरमाइशी ईमेल लिख भेजा है नानघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत ने, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबीहे, राधिका अनिष्का तन्मय गजबीहे, कुरावती से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी राहुल, विनीत सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, जलंधर से संदीप जातोदिया, मुंबई से आदिबा नाज, फातिमा नासरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कराटे, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू पप्पी भाटिया, ओरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा मोनिशा साहू, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, भाटापारा से ही बचकामल, मोतीलाल यादव, सिया राम, चोआ राम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, यवतमाल पंजाब से पंजाब राम टेके, यशोधरा श्राव्या राम टेके, बिलासपुर से छन्नू लाल श्रीवास, अनीता पुष्पा अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मराज धर्मदास वाधवानी, जलंधर से मीना कौर और मन्नत नूर का भी हमें ईमेल आया है, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, अहमद निफरा नवाज चाहत का भी हमें ईमेल आया है, देरलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का भी हमें ईमेल आया है, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, फ्रांसी हिस्सर से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूधी, महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलहत फरहत, नुसहत सिया, साजिया शाहीन, नाज नाजिया नूर नाज का भी हमें ईमेल आया है, हिंगोरी महाराष्ट्र से शाहजी बाखड़े, नंदा बाखड़े, हनुमान और उत्तम जमदाड़े का, भूचो कैचनिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनप्रीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल

और पूजा परिहार, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, टोरोवाल, जिला नावा शहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी और वामिका के साथ में हैं वाणी थांबी, पहांदा पलारी से दिनेश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी और गणेश राम मिस्त्री, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और सलाम राइन का भी हमें ईमेल आया है, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, सरगुजा मेन पार्ट से अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, समडिल नवापारा से मुकेश कुमार, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंशु, राघव गुप्ता, दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विनी, मंगलाबेन राजेंद्र शाह, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि आनंद पटेल और समृद्धि पटेल का भी हमें ईमेल आया है, रायगढ़ राजगढ़ बिहार से उमा राज, पवन संजय दीपक और कमल उमा का भी हमें ईमेल आया है। इसी गीत की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह अंतिम गीत।

0: फिल्म
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री फहराएंगे तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस के 152 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया। आज मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। अब समाचार विस्तार से। देश कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दुर्ग में उप मुख्यमंत्री

0: मंत्री अरुण साव और बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्री, सांसद और विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। सभी मुख्य अतिथि इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इस बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने राज्य भर की सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में तिरंगा फहराने की अपील की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि 15 अगस्त का पर्व देशभक्ति, आपसी एकता, भाईचारे और संविधान के प्रति सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन नागरिकों के लिए कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमण डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा देश की सीमाओं की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों को नमन किया है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता पुरस्कार के 301 पदकों की सूची जारी की। इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस के 152 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। 141 अधिकारियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वीरता पदक के लिए चुने जाने वाले प्रमुख अधिकारियों में बस्तर रेंज के आईजी रहे सुंदरराज पी, आईजी इंदिरा कल्याण एलेसिला, एसएसपी संदीप पटेल और एएसपी रॉबिन्सन गुड़िया शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस उप महानिरीक्षक मोतीलाल कोटवानी को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा। साथ ही राज्य के 10 पुलिस अधिकारियों को भी उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभाजन के समय विभिन्न समाजों को विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी थी।
1: विभाजन की विभीषिका है, हर साल पूरा देश स्मरण करे, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम के नाते हमारे आने वाली पीढ़ी को जो विभाजन की विभीषिका हमारे समाज ने, विशेषकर सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज ने जो कष्ट झेला है उसको याद करते रहेंगे।
0: कार्यक्रम को प्रख्यात फिल्मकार और अभिनेता चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति के इस महाअभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर तिरंगा यात्रा आज बीजापुर जिले में स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न हो गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति, शांति और विकास का संदेश दिया। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे। बीते बुधवार को नारायणपुर से शुरू हुई ये यात्रा 3 दिनों के दौरान बारसूर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। यात्रा का जगह जगह नागरिकों ने स्वागत किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन मायापुर पीपलकोटी टनल में कल शाम को अचानक पानी भर जाने से छत्तीसगढ़ और झारखंड के 7 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं टनल से 22 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसे में 11 श्रमिक घायल

बताए जा रहे हैं। इनमें झारखंड के 5, बिहार के 2, छत्तीसगढ़ के 2 और पंजाब और हिमाचल के 1-1 मजदूर हैं। 6 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में श्रमिकों की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में कोंडागांव के श्रमिक भी असमय काल कवलित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। लापता श्रमिकों की तलाश के प्रयासों पर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा के विरुद्ध करीब 1500 पृष्ठों का चालान रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया है। भागीरथी वर्मा पर पद का दुरुपयोग और कथित अवैध कमीशन के रूप में 1,76,00,000 रुपए का लाभ प्राप्त करने का आरोप है। वहीं जशपुर जिले के कुनकुरी में 21 वर्ष पुराने चावल घोटाला प्रकरण में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने करीब 40,000 पृष्ठों का चालान जशपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम

0: वहीं जशपुर जिले के कुनकुरी में 21 वर्ष पुराने चावल घोटाला प्रकरण में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने करीब 40,000 पृष्ठों का चालान जशपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम ब्रांच रायपुर और नागपुर की टीम ने हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से करीब 1,96,00,000 रुपए कीमत का विदेशी सोना बरामद किया है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना के आधार पर भंडारा और नागपुर के बीच ट्रेन में दो संदिग्ध यात्रियों को पकड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री फहराएंगे तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस के 152 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया। आज मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी रायपुर से, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। स्वतंत्र

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी

गरीब राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय,
शिक्षा

महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलबत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक

भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे, गुजुक कान अबुआ जति धरम दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक तो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारे गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के
समय

मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे
मनुष्य लोए।

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश अभी आप सुन रहे थे, अनुप्रसारित किया जा रहा था आकाशवाणी दिल्ली से। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:55 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जमो किसान भाई बहनी मल्ला वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम जय जोहार संगवारी हो और आप मल्ला भैया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामना आप सब स्वस्थ रहो अच्छा रहो खेती खार के काम बुतल करते रहो और देश की तरक्की में अपन हिस्सेदारी निभात रहो और अब संगवारी हो आप मल्ला बड़ा सुघर आज के दिन सुनाथन होनिंग कार्यक्रम के माध्यम ले बड़ा सुघर गोड बात आज विषय है दुधारू पशु मां कृत्रिम गर्भधान ले बछिया कैसे प्राप्त करें या कर सकत हन और बताते विषय मां डॉक्टर

अजय अग्रवाल जी इमान है पशु कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बिलासपुर और इंखर से गोट बात ला चलाते हमार मंगू भैया और आप मन के फोन आए तो चलो सुन लेते हैं ये कार्यक्रम।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: किसान भाइयों, फोन इन कार्यक्रम में आप जम्मू संगवारी मन के स्वागत हवे। महबूब भैया के राम राम, जय जोहार। फोन इन कार्यक्रम के आज के विषय हवे, दुधारू पशु मन में कृत्रिम गर्भाधान ले बच्चा कैसे प्राप्त करें। ये विषय ले संबंधित जो भी फोन आई हमारे किसान भाई मन के, पशुपालक मन के, जेकर समस्या के समाधान करे खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हवे डॉक्टर अजय अग्रवाल जी मन, जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बिलासपुर में पदस्थ हवे। आवाओ उनकर सो गोट बात करी। पहली कालर हमारे जुड़त हवे, गोट बात तो करते रहो। आवाओ एक कालर उठा लेते हैं। हेलो, कौन बोला था, कहाँ बोला था जी?
3: हाँ, मैं मंगला से बोला था, श्री कौशिक।
2: अच्छा अच्छा, आप मन के स्वागत हवे हमारे फोन इन कार्यक्रम में। का जानना चाहा था, का पूछना चाहा था हमारे डॉक्टर साहब अभी लाइन में हवे?
3: मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन का है।
4: बने सवाल पूछे है आप मन। देखा जी, मैं बताऊँ कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में, जब भी हमारे किसान भाई के घर में कोनो गाय या भैंस गर्भित होते तो ओखर ललक रहते कि बछिया हो ही कि बछवा हो ही। लगातार दो बार तीन बार कहूँ बछवा पैदा हो गए तो किसान के नुकसान हो जाते, काबर की आजकल मशीनी युग में नर बछड़ा के या भैंसा के उपयोग कम हो गए है। और कहूँ ओखर जगह यदि बछिया पैदा हो गए तो ओखर घर में एक ठे दुधारू गाय या भैंस के व्यवस्था हो जाते। आप मन पूछे कि सेक्स सॉर्टेड सीमन का होते। देखा, जैसे कि आप मन पता है कि कोनो भी गाय जब गर्भित होते और नर की वीर माँ जब उन शुक्राणु होते, उनमें दो प्रकार के शुक्राणु होते। एक होते एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु, एक होते वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु। तो जो एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु होते ओखर गुण होते कि वो बछिया बनाते, और जो वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु होते ओखर गुण होते वो बछवा बनाते। और एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु के वजन वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु ले 4% अधिक होते। तो हमर पशु चिकित्सा विज्ञान इतका तरक्की कर लिए है कि वैज्ञानिक विधि से वो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु अलग अलग कर देथन, और एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु ट्यूब में भर के फिर ओला अलग लिक्विड नाइट्रोजन में रखे जाते, और ओखर माध्यम से जब कृत्रिम गर्भाधान होते तो बछिया पैदा होए के उम्मीद 90% से ज्यादा होते। तो ये हो गए सेक्स सॉर्टेड सीमन।
3: सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग बढ़ावा देगा सरकारी योजना है?
4: बने पूछे है आप मन। देखा कि ज्यादा से ज्यादा बछिया पैदा हो ही तभी जाकर के अच्छा गुण के गाय भैंस हमर किसान के खूटा में बन सकी और दूध उत्पादन बढ़ सकी। तभी हमर मोदी जी की कल्पना जो 2047 तक हमर हर किसान के जो आमदनी है दोगुना हो जाए वो सफल हो सकी। तो एकर बढ़ावा दे बर हमर प्रधानमंत्री जी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से, और अलग अलग राज्य सरकार भी अलग अलग योजना के माध्यम से अलावा बढ़ावा दे बर भारी छूट के प्रावधान किए है। अभी हमर छत्तीसगढ़ राज्य में भी मात्र 250 रुपया दे करके सेक्स सॉर्टेड सीमन के माध्यम से अपन गाय भैंसीला गर्भित कराया जा सका था। 250 रुपया दे के बाद में भी इतका प्रावधान है कि यदि दो बार टीका लगवाए के बाद भी कभी गलती से बछुआ पैदा हो गए या गाय या भैंसी रिपीट हो गए तो 250 रुपया पूरा के पूरा वापस किए जाए के प्रावधान है। तो किसान मंडला एमा डरे के कोनो बात नहीं है, ओखर कोनो आर्थिक नुकसान नहीं हुए। 100% उम्मीद करथन हमन और प्रयास करथन कि आप मन के काम सफल हुए और आप मन के घर में एक सुगर अच्छा दुधारू गाय या भैंस आपके खूंटा में बन सके।
2: हाँ, तो
3: धन्यवाद।
2: हाँ, बहुत बढ़िया, आप मन के प्रश्न रही सब है उत्तर दे हैं। जहाँ तक आप मन के जो समाधान हो गए हो ही है ना भाई, आप मन फोन करत रही हो ऐसा नहीं, आप मन जो फोन करे है आज एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये अपन जो सेक्स सॉर्टेड सीमन के बात करत हन तो एकर बढ़ावा दे खातिर औ का बात के जानना हमर किसान बहन बहुत जरूरी।
4: तो जैसे आप मन कहत रहा कि कैसे का सावधानी बरते ना जरूरी है, तो एमा सबसे पहली तो देखा है कि गाय एकदम सुगर देसी ना होए, एकदम छोटा ना होए, मीडियम कदकाठी के होए, ओखर वजन कम से कम 3 क्विंटल हो जाए, उम्र 2.5 साल 3 साल के हो जाए, और प्रजनन रूप से वह शुद्ध हो चाहिए, मतलब कोनो प्रकार के गंदा डिस्चार्ज ओमा ना होए, बार बार

0: रिपीट वाली गाय ना होए,
1: अच्छा,
0: तो ये बात की सावधानी बरते का है। जब कृत्रिम गर्भाधान कराए की बारी आए तो वो एक कोनो सुघर योग्य पशु चिकित्सक के देखरेख में कृत्रिम गर्भाधान होए।
1: अच्छा।
0: और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कृत्रिम गर्भाधान के समय, तो कृत्रिम गर्भाधान के समय की चुनाव ये करे का है कि जब आप मतलब पता हो ही कि जब गाय गर्मी में आते तो गाय स्वयं या दूसर गाय ओखर ऊपर चढ़े की कोशिश करते। यदि सही गर्मी में नहीं है तो गाय एती ओती भागा थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: सही समय के पता ये बात से चलते कि यदि दूसर गाय ओखर ऊपर चढ़ा थे तो गाय एती ओती नहीं भागे, ओला कहते स्टैंडिंग हीट।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे समय में यदि गाय माँ बीज के रोपित किए जाए तो फले के चांस ज्यादा होते। दूसरा है कि पोषण आहार वाला संतुलित मिले चाहिए।
1: अच्छा।
0: कि उमा सही मात्रा में प्रोटीन हो, ऊर्जा हो, वसा हो, मिनरल हो, विटामिन हो, तो ऐसे गाय के फले के संभावना ज्यादा होते। अब तुमन खाली पैरा पैरा खिलैया और सोची है कि बने सुघर बच्चिया पैदा हो जाए, तो ऐसे नहीं हुए।
1: अच्छा अच्छा।
0: संतुलित आहार खिलाए की जरूरत है। यदि हरा चारा है तो हरा चारा खिलावा, मिनरल मिक्सर देवा, विटामिन देवा, तब जा करके एक अच्छे बच्चिया की उम्मीद कर सका था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो दुधारू पशु में कृत्रिम गर्भाधान के जो बच्चिया ही प्राप्त करें, ये योजना कब ले लागू हुई से, अब ये का कारण लागू हुई से थोड़ा सा
0: देखा। एक पीछे कई ठीक कारण है। पहले के समय में का हुए की बछुआ की या भैंसा जोड़ी की जुताई माँ, बैलागाड़ी माँ और तरह तरह के वजन बोझा ढोए में उपयोग हो जाए, लेकिन अब मशीनी युग में उपयोग खत्म हो गए।
1: ट्रैक्टर के खास करके आए के समय तो कहाँ संपर्क करें, कहाँ कहाँ एकर वो है कहे जाए तो।
0: बने सवाल आप मन पूछिए। देखा एक बार दो तीन जगह है। एक तो गांव-गांव में हमन पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से प्राइवेट एआई वर्कर रखे हैं, मतलब प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान रखे हैं। उनकर लिखा भी सेक्स सॉर्टेड सीमन है। अभी जिला पंचायत के माध्यम से केंद्र सरकार की योजना से गांव-गांव में पशु सखी घलो आगे है।
1: अच्छा,
0: जिनका जिला पंचायत के माध्यम से कुछ मानदेय के प्रावधान है उनला दिए जाते, उनला सूचना दे करके भी आप मन ये योजना के लाभ ले सका था। नजदीकी गाँव में यदि कोनो पशु चिकित्सा केंद्र है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र है, वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करके आप इमन योजना के लाभ ले सका था। बस ध्यान एक बात का रखे का है कि गाय यदि सवेरे गर्मी में आए तो संझा एआई करवावा वाला, और संझा एआई में आए तो सवेरे एआई करवावा, लेकिन समय पर संबंधित व्यक्ति ला, हमारे पशु सखी ला, या हमारे प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता ला, या हमारे नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर ला समय पर सूचना देवा, ताकि वो समय पर आकर के गाय में बीज डाल सके।
1: तो ये जैसे न आपके ये योजना चला था भाई, तो इसमें किसान भाई बन जौन भी हैं, ओ मल्ला का पशु ला बांध के रखना हो ही कि फिर गर्भित करे के बाद ओला छोड़ना हो ही, कुछ दिन तक बांधना।
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन करे है आप मन।
1: सुरक्षा खातिर
0: हमारे किसान ये गलती कर देते, काबर की घर के बाहर में एक सांड खड़े है, गाय गर्मी में आईस ओला हार्मोन्स के माध्यम से खुशबू पहुंच गए है, वो घर के आगू पिछू रेंगेला शुरू कर देते। कोनो गाय गर्मी में है ओला बांध के रखा बीज डलवाए के बाद, दूसर दिन भी बांध के रखा कि कोनो कोनो गाय में 24 घंटे से ज्यादा भी हीट होते। यदि बीज डल गए है, अच्छा वाला बीज डल गए है, ओखर बाद में आप मन छोड़ दिया और गांव के देसी सांड ओमा लग गई, तो ओखर बच्चा आही ना कि तुम्हारे सेक्स सॉर्टेड सीमन के। काबर कि सेक्स सॉर्टेड सीमन में जो हम ट्यूब में शुक्राणु भरे हैं ओखर संख्या मात्र 3 से 4 मिलियन है।
1: अच्छा।
0: और प्राकृतिक रूप से जो निषेचित होकर वो जो प्राकृतिक रूप से जो सांड गाय की गर्म वीर लड़ाल ही ओमा शुक्राणु की संख्या कई मिलियन ज्यादा होते, वो 30 मिलियन 40 मिलियन तक होते।
1: अच्छा।
0: ओखर ले भी ज्यादा हो सका थे, और चूंकि वो ताजा है ओखर चाल ज्यादा होते, दौड़ ज्यादा होते, तो अंडाणु तक जल्दी पहुंच जाते थे वह।
1: अच्छा।
0: तो उखर निषेचन करने के क्षमता ज्यादा होते। तो मोर आग्रह है किसान भाई मनला, यदि आप मनला अच्छा बच्चिया पाए का है और अच्छा नस्ल की पाए का है, और यदि आप मन बीज जलवाए हा, तो कम से कम 2 दिन तक ओला बांध के रखा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। कोनो के फोन आवा थे, उठा लेते। हेलो
2: हेलो। राम राम मांगू भाई।
1: राम राम। राम राम। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
2: मैं भाटा पारा दतरंगी ले हीरू राम साहू बोलत रहे मांगू भाई।
1: हाँ हीरू राम साहू जी, आप मन के हमारे फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत हवे। का जानना चाहता, का पूछना चाहता, बतावा।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते।
2: बताओ ना भाई, अच्छा बीज डाले के लिए नस्ल का बच्चा हमला भैंस में डलाना है?
0: हाँ जी देखा, अभी अभी अभी आप मन जो गाय ला भैंसी ला गर्भित करा था, तो सांड ले करा था कि बीज डलवा था?
2: सांड से करा था भैया।
0: हाँ, तो देखा सांड से कराए में दो प्रकार के नुकसान है। एक तो नुकसान ये है कि कभू आपके सांड में कोनो प्रकार की बीमारी हो गई, खास करके ब्रुसेला बीमारी, तो वो

0: बिसला बीमारी आपकी भैंसी में आ जाही, सांड है तो गाय में आ जाही, और वो बिसला बीमारी के दूध ला यदि कोनो गर्भवती महिला पी ली तो ओखर एबोर्शन हो जाते, कोनो पुरुष पी ली तो ओखर अंडकोष में सूजन हो जाते। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है प्राकृतिक गर्भाधान ले। दूसर कि उमा जैसे गुण सांड मा है उतके गुण बछिया मा ही। आप मन सोचा कि हमार भैंसी 8 लीटर के है और 8 लीटर वाले भैंसा ले ओला क्रॉस करवा के और 12 लीटर वाले मैं पड़िया पालू तो ऐसा नहीं हो सके। ओखर पर जरूरी है कि बीज ला बदलेगा। दूसर कि सांड से जब क्रॉस करिए तो उमा पड़वा या पड़िया पैदा हुए के आधा आधा चांस है, 50% के चांस है। लेकिन जौन में बात करता हूँ आप मन ले कि सेक्सोटेड सीमन की उपयोग करा उमा 92% तक चांस है, 95% तक चांस है कि पड़िया ही पैदा हो ही।
1: अच्छा,
0: अब आज के समय में तुमन चाहिए कि तुमन चाहा कि नहीं कि पड़िया पैदा होए?
1: भैया पड़िया होना चाहिए भैया।
0: है ना
1: जी?
2: कैसे लगी भैया?
1: अच्छा लगी महू भाई।
2: चल पड़िया पड़िया फिर हो ही अब आपके है नहीं। चला आप मन फोन करे है एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। संबंधित जोन भी हमारे किसान भाई पशुपालक मन के फोन आई जिन समस्या के समाधान करे हैं हमारे स्टूडियो में आए हैं एक बार डॉक्टर अजय अग्रवाल जी आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपो मल्ला धन्यवाद महंगू भैया।
2: एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग में सहयोग रही सवय इस लकड़ा के ई संग फोनिंग कार्यक्रम ले दो विदा महंगू भैया के राम राम जय जोहार।
3: किसान भाई बहनी हो बड़ा ध्यान से सुने है ना भाई कि कैसे हमला बढ़िया दुधारू पशु मा कृत्रिम गर्भाधारण करा के बढ़िया बछिया प्राप्त करे के उपाय ले बताए इन्हें आप सुनो और एला बताते हैं डॉक्टर अजय अग्रवाल जी और आज के कार्यक्रम के जिन संचालन करते इस मंगू भैया सुनो सुन के लाभ जरूर ले हो।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: आपकी रक्षा में पूरी।
2: किसान संगवारी हो, अब देखो काली लहर लहर लहराए तिरंगा, देश की आजादी के बड़का तिहार। कल मनाबो संगवारी हो तो तैयारी तो आप मन खूब कर लिया हो, मगर हम मन तैयार हन ये गीत के माध्यम ले आवा सुन लेन ये राष्ट्रीय गीत आने के जेन हाँ कह जाए देशभक्ति गीत लहर लहर लहराए तिरंगा, सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान के स्वर में।

तो संगवारी हो गीत लस्वर देहरे ने सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान। हमार देश आजादी के बाद बहुत क्षेत्र में आगे बढ़ी सवे, खेती में भी बहुत बदलाव आई सवे। पहली किसान मुख्य रूप ले परंपरागत साधन के भरोसा में खेती करत रही। आज किसान आधुनिक कृषि यंत्र, बेहतर बीज, सिंचाई सुविधा, मौसम संबंधी जानकारी और बैंकिंग सुविधा के उपयोग करके अपन उत्पादन बढ़ाए की कोशिश करत हवे। कहे जाते ना, मेहनत हमार ताकत है, माटी हमार पहचान है, किसानी हमार सम्मान है, किसानी हमार सम्मान है, आत्मनिर्भर किसान भारत के अभिमान है। तो अब जय जवान जय किसान वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम।

कार्यक्रम ग्राम सभा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपक, लहरें तरंग ध्वज अपना। आलेख वाचन और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। संगीत संयोजन है श्री मनीष दत्त का। गायक कलाकार होंगे काव्य भारती कला संगीत मंडल से।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आज के इस विशेष कार्यक्रम में लहरे तिरंग ध्वज अपना। और कार्यक्रम का आगाज भी कवि सोहनलाल द्विवेदी की इसी रचना के साथ, लहरे तिरंग ध्वज अपना जिसने सत्य बना दिखलाया आजादी का सपना, लहरे तिरंग ध्वज अपना।

जी हाँ, हमारी आन बान और शान, हमारा तिरंगा पूरी गरिमा के साथ आकाश में लहरा रहा है। याद दिला रहा है हमें सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और लाखों लोगों की बलिदान की दास्तां को, जो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। जी हाँ, हमारी आन बान और शान, हमारा तिरंगा पूरी गरिमा के साथ आकाश में लहरा रहा है और याद दिला रहा है हमें सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान की दास्तां को, जो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। आजादी के तरानों ने आजादी के दीवानों में जोश और उमंग भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग एक शताब्दी तक चले संघर्ष में देश का शायद ही कोई कस्बा या गली कूचा होगा जहां ये तराने न गूंजे हों। हिंदी और उर्दू के अलावा देश के हर प्रदेश की भाषा में, हर बोली में इन तरानों ने आजादी की अलख जगाई। शायर साहिर लुधियानवी का ये कलाम किस तरह आजादी के दीवानों में जोश और आक्रोश भरता है।

स्वतंत्रता संग्राम के 100 वर्षों में सारे मतभेद भुला जन जन का एक ही लक्ष्य था स्वराज्य, और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने हमें तोड़ने की बहुतेरी कोशिश की, उसका एक दुख भरा पक्ष भी रहा। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देने वाले वीरों का सिर्फ एक ही धर्म था और वो था भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। आइए सुने सुभद्रा कुमारी चौहान की इस प्रसिद्ध रचना को।

उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, इस देश का कण कण और इस देश का हर नागरिक ऐसे सूत्र में बंधा है जो हमारे देश की विभिन्नता में एकता की विशेषता को चरितार्थ करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कितने सारे धर्मों के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं। हिमालय हो या सह्याद्री, विंध्य हो या मलय, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, सभी जीवनदायिनी नदियाँ, पठार हो या रेगिस्तान, ये सभी भाग भारत की अभिन्न पहचान है। इन सब से मिलकर ही हमारा प्यारा

इस गीत के रचयिता हैं इस अंचल के कवि और साहित्यकार डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा। सिर हमारा झुका है नमन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए।

सभी धर्मों में समाहित मानवीय मूल्य ही उन्हें श्रेष्ठ बनाते हैं। कुछ स्वार्थी तत्व हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर हमें गुमराह करते हैं और सांप्रदायिकता और धर्मांधता को हवा देते हैं। हजारों वर्षों से अक्षुण्ण रही हमारी संस्कृति समय के इन सारे थपेड़ों को निश्चित ही झेल पाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि यहाँ का हर नागरिक अनेकता में एकता के अटूट बंधन से जुड़ा है। और आजादी के इस महापर्व के दिन हम ये प्रण करते हैं कि हम इस बंधन को टूटने नहीं देंगे। हमें विश्वास है युग बदलेगा और जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण सरल अपनी कविता में कहते हैं,

0: इस कार्यक्रम में शामिल सभी प्रसिद्ध रचनाओं को सुरों में ढाला है बिलासपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी और काव्य भारती कला संगीत मंडल बिलासपुर के संस्थापक श्री मनीष दत्त जी ने। गायन पक्ष के कलाकार थे
1: श्रीमती रत्ना मिश्रा, श्रीमती रीमा पाल, लता दास, अचिंत्य बोस, ऋत्विक पाल, श्रुति सोनी, शांभवी पागे, सुखविंदर कौर और ऋत्विक पाल। वादन शिरीष पागे, विष्णु सोनी और राजू नायडू।
0: आलेख, वाचन और प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। और इसी के साथ ही स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर इस विशेष कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। सुप्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: कार्यक्रम रूपक लहरें तरंग ध्वज अपना, अभी आप सुन रहे थे। आलेख, वाचन और प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। संगीत संयोजन था श्री मनीष दत्त का। गायक कलाकार थे काव्य भारती कला संगीत मंडल से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी से ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। महाकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की इन पंक्तियों में निहित प्रार्थना के साथ स्वागत करता हूँ आप सभी श्रोता साथियों का और शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर की।

जनाब उमर अंसारी साहब का एक कलाम आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उमर अंसारी जी कहते हैं, सब एक हो के नगमे आज़ादियों के गाएं, सब एक हो के नगमे आज़ादियों के गाएं, पिछली मुसीबतों को अब दिल से भूल जाएं, भारत की पाक देवी मिलने को आ रही है, आज़ादियों का झंडा हम राह ला रही है, अंदाज वालियाना एकदम जा फिजा है, हर दर्राए चमन अब बेदार हो गया है, मानिंद रंग बू हैं हम हिंद के चमन में, मानिंद रंग बू हैं हम हिंद के चमन में, कितनी ही मिन्नतें हों हम एक हैं वतन में, हम सब एक हैं वतन में। इस तरह आज़ादी के तराने कहे जाते थे, गूंजते थे। है अभी तैयार मर मिटने को मस्ताने बहुत, लिखे जाएंगे हमारे खून से अफसाने बहुत, एक भगत सिंह और दत्त ही नहीं पर मौकूफ कुछ हिंद में हैं, शम्मे आज़ादी के हैं परवाने बहुत। उस वक्त की बात कहूँगा जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और फिल्में बन रही थी, समाज का मनोरंजन तो कर ही रही थी, साथ ही साथ देश की आज़ादी के लिए लोगों में देश प्रेम की भावना जगा रही थी। जब हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया आलम आरा से, 1931 में हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया था, ये वही समय था जब आज़ादी के परवाने प्रभात फेरी में गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कूचे कूचों में नरसी भगत के भजन गाते थे, वैष्णव भजन। 1930 के बाद एक फिल्म आई थी जिसका नाम था व्रत। उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो बापू जैसा दिखता था और लोगों से जब मिलता था तो सदचरित्र की बात करता था, सदाचरण की बात करता था, देश की आज़ादी के लिए लोगों के मन में जोश पैदा कर देता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया था। इस फिल्म के अलावा एक फिल्म का और जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम था महात्मा विदुर। इसे बनाया था यशवंत जी ने। फिल्म में भी देशभक्ति और आज़ादी का संदेश था, महात्मा गांधी के विचारों पर चल रहा देश और इस देश को आज़ाद करने का संकल्प। ये वही दौर था श्रोताओं जब एक ओर भारत देश गांधी के विचारों पर चल देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहा था। विद्याधरी देवी की दो लाइनें याद आती हैं जो अपनी माता को स्वतंत्र देखना चाहती थी। देशभक्ति के गानों का ट्रेंड उन्होंने ही शुरू किया था। वो कहती थी कि चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए, चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए, कर दो जबान बंदी जेलों में चाहे भर दो, माता पे कोई होता कुर्बान रह न जाए, भारत का ना रहेगा, भारत ना रहेगा हरगिज गुलाम खाना, भारत ना रहेगा हरगिज गुलाम खाना, आज़ाद होगा आया है वो ज़माना, भारत वतन हमारा, भारत के हम हैं बच्चे, भारत के वास्ते मंजूर सर कटाना। तो ये दौर था जब हर व्यक्ति अपने अपने दिल के जज्बातों में अंदर ही अंदर आज़ादी का काम कर रहा था। आज मेरे मुल्क का हर आदमी, ये हमारे मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध कवि राजेंद्र अनुरागी जी की दो लाइनें कहूँगा कि वो कहते थे कि आज मेरे मुल्क का हर आदमी लाम पर है, जो जहाँ भी है वतन के काम पर है। काश इस हिंद में ऐसे ही लोग हमेशा होते रहें। यही प्रार्थना इन्हीं कामनाओं के साथ दीजिए अपने रेडियो साथी शांतनु कपूर को अनुमति। नमस्कार, जय हिंद। इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, सुनिएगा ज़रूर।

कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: अंधकार से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है।

0: राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का

0: उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगवीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
4: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थी

से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता

0: कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
1: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये गजल अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम था बाजार। युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत अजीज के थे। संगीत खयाम साहब का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। शब्द आनंद बख्शी के, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने के, खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर हाजिर हूं आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में आज मस्ती ही मस्ती।

जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के धूमानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे,

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
2: हम सबका दिल तो दीवाना है लेकिन वे भी कुछ कम दीवाने नहीं है।

0: नहीं देखा।
1: शम्मी कपूर इस मामले में दुनिया से निराले हैं। उन्होंने अभिनय के तमाम सीमित दायरे में बंद रहने से इनकार किया और अपने अभिनय का ऐसा जलवा बिखेरा कि नौजवानों की तूफानी भावनाओं को आंधी की सी गति मिले। अपने समय के विद्रोही सितारे कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने अभिनय, नृत्य, मनोरंजन, पूर्ण भाव प्रदर्शन की सीमाओं को बेफिक्री दी थी। अंग संचालन में कैद अदाओं और अंदाजों के दोहराव से मुक्ति दिलाई थी।

0: दोस्तों, शम्मी कपूर का जन्म 1931 में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और शोमैन राज कपूर के भाई थे। बड़े भाई पहले ही फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे और शम्मी कपूर के लिए अपनी खास जगह बनाना बड़ी चुनौती थी।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो,

पिता पृथ्वीराज कपूर के नाटक पठान में शम्मी को अभिनय करते हुए जब महेश कौल ने देखा तो उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति के लिए नायक चुन लिया और ये किरदार बड़ा ही गंभीर था। जीवन ज्योति, शमा परवाना, लैला मजनू, मिर्जा साहिबा जैसे कॉस्ट्यूम ड्रामे वाली फिल्में करने के बाद फिल्मिस्तान की फिल्म तुमसा नहीं देखा के जरिए शम्मी कपूर नए लटके छटके के साथ चुलबुले और निरारे अंदाज में आए। इस फिल्म के निर्देशक थे नासिर हुसैन।

1961 में फिल्म जंगली तक आते आते खूब परवान चढ़ी। फिल्म जंगली से शम्मी कपूर को मिली नई पहचान, शोहरत, पैसा और लोगों का प्यार। इस फिल्म ने शम्मी के फिल्मी करियर में सफलता का नया रंग भर दिया।

1961 से सन 1964 तक शम्मी कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इस दौरान आई फिल्मों पर आइए एक नजर डालते हैं। फिल्म प्रोफेसर, फिल्म कश्मीर की कली, जिसने एक बार फिर शम्मी की सफलता की बल्ले बल्ले की।

0: यूँ कहना मुनासिब होगा कि जमाना शम्मी की धुन पर उन्हीं की ताल पर झूम रहा था, नाच रहा था और गा रहा था। फिल्म जानवर इसी दौर की फिल्मों में होती है शुमार। राजकुमार
1: जाने वाले जाने वाले।

0: फिल्मालय की पेशकश थी फिल्म दिल दे के देखो, जिसके जरिए एक नए संगीतकार को मौका मिला। वो संगीतकार थी उषा खन्ना। फिल्म थी दिल दे के देखो। दिल दे के देखो युवा पीढ़ी की एक लटके झटके वाली फिल्म थी। युवा निर्देशक नासिर हुसैन अपने नए नए फॉर्मूलों को आजमाकर मजबूत बना रहे थे। शम्मी कपूर अपनी नई स्टाइल को फिल्मी दुनिया की खास स्टाइल बना रहे थे।
1: यार चुलबुला है, हसीन दिलरुबा है।

1965 शम्मी कपूर के लिए गम का पहाड़ लेकर आया। उनकी जीवन संगीनी गीता दुनिया से अलविदा कह गईं। उस गमजदा दिन शम्मी इस गाने की शूटिंग कर रहे थे।

0: क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: सन 1982 में उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार। सन 1967 में उन्होंने नीला देवी से विवाह कर लिया। एक युग समाप्त हो रहा था, सफलता की चमक धुंधली पड़ रही थी। इसी दौर में अंदाज, मनोरंजन, बंडलबाज और विधाता जैसी फिल्में आईं। सन 1987 में शम्मी कपूर को कंप्यूटर की ओर रुझान हुआ। सन 1995 में उन्होंने इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसी साल उन्हें मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर पुरस्कार। शम्मी कपूर अपने खानदान के रोशन चिराग रणवीर कपूर के साथ नजर आए इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में। ये इनकी आखिरी फिल्म थी।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के

0: अभिनेता शम्मी कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल मेरा गुस्ताख हुआ जाता है, बगावत करने को बेताब हुआ जाता है, वो न सर झुकाना चाहता है न नजरें, बस वही करना चाहता है जो उसका जी करे। अब इस गुस्ताख दिल के बेपरवाह अंदाजे बयां का रंग देखिए जनाब, ये नजरों से नजर को लड़ाना चाहता है।

आ बैठे हैं उनकी महफिल में जिनके नाम से होती है सुबह शाम। जुबां की खामोशियों का क्या कहिए, लेती हैं अब नजरें भी बस उनका ही नाम। दुनिया की रस्मों रिवाज को भुला बैठे हैं सरेआम, कर दिया है अब ये

उनकी महफिल में आ ही गए तो अब क्या सोचना कि क्या होगा अंजाम। दिल से दिल की पाती थामी, नजरों से दिया दिल का पैगाम। कभी इनकार करते हैं, कभी इकरार करते हैं, इसे कारस्तानी में किया दिल को भी बदनाम। परवाह किसे इस जमाने की, गर्म

हुई बात खिलने लगे तारे, मुस्कुराने लगी ये रात, रोशन हुई हमारे दिल की उम्मीदें, चमकने लगी है कायनात, जानते थे हम होगा यही जब मिलेंगे हमारे जज्बात।

शर्म हया के पर्दे इन निगाहों में आने लगे हैं, वो देखकर हमको पलकें झुकाने लगे हैं। कहां तो बातें हो रही थीं कि करेंगे निगाहें चार, और अब उठती ही नहीं पलकें करने को दीदार।

0: इश्क से बचने की बातें तो जमाने ने सिखाई हैं, उसी जमाने ने इश्क की कीमत भी समझाई है। क्या जाने किस मोड़ पर इस दिल के कदमों से उस दिल की आहट आई है। इश्क है तो जिंदगी है, ये जिंदगी इश्क की परछाई है।
1: जा!

छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला जामा

एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान न करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।